सुप्रभात। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन मंगलवार है, शक संवत 1947 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि। तदनुसार 14 जुलाई 2026 सुबह के 7 बज गए हैं। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: भारतीय चिंतन में पर्वतों को केवल भू रचना ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक माना गया है, स्थिरता और चेतना का प्रतीक। मेरु पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष माना गया है, इसी प्रकार भगवान शिव का वास भी हिमालय में है, जो निर्लिप्त ज्ञान और परम चेतना का प्रतीक है। सजग नेतृत्व के लिए पर्वत भी एक प्रतीक है। आइए जानते हैं कि कैसे हम पर्वत से नेतृत्व के गुण या लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं। कोई भी पर्वत वायु के प्रवाह से विचलित नहीं होता, वह पृथ्वी की गहराइयों में जड़े जमाए अडिग खड़ा रहता है। उसी प्रकार सच्चा नेतृत्व मूल्यों में प्रतिष्ठित होता है। जब संकट या भ्रम की स्थिति आती है तो हमारे सिद्धांत ही हमें दिशा देते हैं। एक टीम लीडर भी पर्वत की भांति क्षणिक लहरों से विचलित हुए बिना अपने विचार में स्थिर बना रहता है। शिखर से संसार का दृश्य भिन्न होता है, वहां से वृक्ष नहीं वन दिखते हैं। एक टीम लीडर को भी तत्कालीन समस्याओं से उठकर समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह उच्च दृष्टि अनुभव, साधना और आत्मचिंतन से प्राप्त होती है। पर्वत हमें धैर्य सिखाता है, कोई भी शिखर तक तुरंत नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार लीडरशिप क्वालिटी की परिपक्वता भी समय के साथ ही आती है। अपनी ऊंचाई के बावजूद पर्वत आकाश के आगे नतमस्तक रहता है, वो गर्व नहीं करता। ऐसे ही विनम्रता टीम लीडर में भी होना चाहिए। जितना ऊंचा कोई टीम लीडर उठता है, उतना ही अधिक उसे धरती से जुड़ा रहना चाहिए। अहंकार सम्मान को नष्ट करता है, जबकि विनम्रता उसे पुष्ट करती है। पर्वत हमें सिखाते हैं कि नेतृत्व कोई दौड़ नहीं, एक साधना है। वो टीम लीडर जो पर्वत के गुण यानी स्थिरता, दृष्टिकोण और मौन सामर्थ्य को आत्मसात करता है, वही सच्चे अर्थों में अपने टीम को लीडरशिप प्रदान करता है।
0: जीवन सौरभ।
2: आइए अब आपको बता देते हैं आज की सभा में प्रसारित की जाने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से ठीक बात सुनिएगा कार्यक्रम अक्षय निधि सूक्त 165 और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का, गोपाल गणेश आगरकर, इनकी जयंती पर होगा आज का ये कार्यक्रम। और कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। प्रकृति की पुकार, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर, प्रकृति और मनोविज्ञान विषय पर। विशेषज्ञ पारुल ऋषि से मनीषा चतुर्वेदी की बातचीत इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। सुबह 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम योग संवाद, योग विशिष्ट संसार के पदार्थों की परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी से सुनीता सिंह की बातचीत आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में। हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर और इसमें हम आपको सुनवाएंगे शिव भाई गुप्ता का निमाड़ी गायन। सुबह 10 बजे का समय होगा रेडियो रिपोर्ट और परिक्रमा का। हिंदुस्तान हमारा, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुनिए सुबह 11 बजे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर विशेषज्ञ निहारिका पंसूरिया से वार्ताकार रतनेश सोनिया ने मेरी बातचीत आज आपको सुनवाएंगे। युग प्रवर्तक विवेकानंद, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 165 से वाचन। ऋषि हैं इंद्र, मरुद्गण, अगस्त्य, मैत्रावरुणी। देवता हैं मरुद्वानिंद्र, रिपीट मरुद्वानिंद्र, और छंद है त्रिष्टुप।
1: कया शुभा सवयसः सनीडाः समान्या मरुतः सम मिमिक्षुः कया मतीकुत एतास एतेर्चन्ति सुष्मं वृषणो वसूया। एक ही स्थान में रहने वाले समवयस्क मरुद्गण किस शुभ तत्व से सिंचन करते हैं, कहां से आकर किस मति से प्रेरित होकर ये बलशाली मरुद्गण ऐश्वर्य की कामना से बल की उपासना करते हैं। कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर युवानः को अध्वरे मरुत आववर्त शीनाम इव ध्रजतो अंतरिक्षे केन महामनसा रीरमाम। सदा युवा रहने वाले ये मरुद्गण किसके स्तोत्रों को स्वीकार करते हैं, इन मरुतों को कौन यज्ञ की ओर प्रेरित कर सकता है। अंतरिक्ष में बाज पक्षी के समान विचरण करने वाले इन मरुतों को किन उदार विशाल हृदय की भावनाओं से प्रसन्न करें। कुतस्त्वमिंद्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं त इत्था संपृच्छसे समराणः शुभानैर् वोचे स्तन्नो हरिवो यत्ते अस्मे। हे महान इंद्रदेव, आप अकेले कहाँ जाते हैं, आप ऐसे क्यों हैं? हे अश्वों से युक्त शोभनीय इंद्रदेव, आपने सानिध्य में रहने वालों की आप सदैव कुशल क्षेम पूछते रहते हैं, अतः हमारे हित की जो भी बात आप कहना चाहें वह कहें। ब्रह्माणि मे मतयः शम सुतासः सूक्ष्म ईयर्ति प्रभृतो मे अद्रिहि आशासते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरि वहतस्ता नो अच्छ। इंद्रदेव की अभिव्यक्ति मननशील स्तुतियां एवं सोम मेरे लिए सुखकारी हों। मेरा बलशाली वज्र शत्रुओं की ओर जाता है, स्तुतियां मेरी प्रशंसा करती हुई मेरी तरफ आती हैं, दोनों अश्व मुझे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। अतो वयमन्तमेभिर् युजानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्वः शुंभमानाः महोभिरेताम् उपयुज्महे न्विन्द्र स्वधामनु ही नो बभूथ। हम अपने इंद्रियों रूपी अति बलशाली अश्वों से युक्त होकर महान तेजस्विता से स्वयं को सज्जित करके उनका उपयोग शत्रुओं के विनाश के लिए करते हैं। अतः हे इंद्रदेव, आप अपनी धारण क्षमताओं को हमारे अनुकूल बनाएं। क्वस्या वो मरुतः स्वधा सीद्यन मामेकम् समधत्ता हि हत्ये अहम् ह्यु ग्रस्त विषयस्तु विश्मान विश्वस्य शत्रो रनमम वधस्नैहि। हे मरुद्गणों, तुम्हारी वह स्वाभाविक शक्ति कहाँ थी जिसे तुमने वृत्र वध के अवसर पर अकेले मुझ इंद्र में स्थापित किया था? वैसे तो मैं इंद्र स्वयं ही शक्तिशाली बलवान शूरवीर हूँ। मैंने अपने शस्त्रास्त्रों से भयंकर से भयंकर शत्रुओं को भी झुकने के लिए विवश कर लिया है।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 165 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। अगर तुम सोचती हो कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़े वेतन की नौकरी करूंगा, खूब पैसे कमाकर तुम्हें अमीरी में रखूंगा, तो तुम ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैंने ये निश्चय किया है कि पढ़ाई के बाद मैं अपना पूरा समय देश और समाज के कल्याण में व्यतीत करूंगा। पैसा मुझे उतना ही चाहिए जिससे दो समय की रोटी मिल जाए। अपनी माँ को एमए की पढ़ाई के दौरान ये पत्र लिखने वाले महान देशभक्त, समाज सुधारक और पत्रकार थे गोपाल गणेश आगरकर। शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, जातिगत भेदभाव के विरोध और वैज्ञानिक सोच के प्रचार प्रसार की दिशा में उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। गोपाल गणेश आगरकर का जन्म 14 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के तेंबू नामक गांव में हुआ था। किसी समय ये परिवार अत्यंत संपन्न था, लेकिन पिता गणेश पंत की पीढ़ी तक आते आते परिवार निर्धन हो गया था। गोपाल गणेश आगरकर की आरंभिक शिक्षा उनके ननिहाल कहाड़ में हुई। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे, लेकिन गरीबी के कारण बचपन में ही उन्हें मुंसिफ की अदालत में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। रत्नागिरी में उनके एक रिश्तेदार अच्छे पद पर थे। गोपाल गणेश आगरकर ने अब उनके पास जाकर पढ़ने का इरादा किया और क्लर्क की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मुंसिफ साहब उनकी प्रतिभा से इतना अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने उनका त्यागपत्र तो स्वीकार किया ही, रास्ते के खर्चे के लिए 75 रुपए भी दिए। 16 वर्ष के आगरकर 300 मील पैदल चलकर रत्नागिरी पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि उनके रिश्तेदार का निधन हो चुका है। परिवार ने उन्हें आश्रय तो दिया, लेकिन परिवार बहुत कुछ कर सकने में समर्थ नहीं था। गोपाल गणेश आगरकर कुछ छोटे मोटे काम करते हुए पढ़ाई के लिए स्कूल भी जाते। इसी कठिनाई में एक दिन वो देर से स्कूल पहुंचे। अध्यापक ने उन्हें डांटकर कहा, तुम अत्यंत लापरवाह हो, मुझे नहीं लगता कि तुम जीवन में कुछ कर सकोगे। इस पर बालक आगरकर ने जवाब दिया, अगर मैं आपकी तरह एमए नहीं हुआ तो नाम बदल दूंगा। कठिन परिस्थितियों में 9वीं तक पढ़ाई करके वो वापस कहाड़ आ गए। इसी बीच उनके मामा का तबादला अकोला हो गया। वो बालक आगरकर को अपने साथ ले गए। मामी वहां नहीं थी, इसलिए गोपाल गणेश आगरकर खाना बनाकर मामा को खिलाते और स्कूल में पढ़ने चले जाते। इस तरह उन्होंने 19 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कठिनाइयां बहुत थीं, लेकिन गोपाल गणेश आगरकर आगे पढ़ना चाहते थे। उनके पास अपनी मेधा और दृढ़ संकल्प के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके सभी अध्यापक उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। अध्यापकों ने कुछ चंदा किया और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पुणे भेज दिया। पुणे का डेक्कन कॉलेज उन दिनों महाराष्ट्र में विद्या का प्रमुख केंद्र था। गोपाल गणेश आगरकर जब पुणे आए तो उनके हाथ में 60 रुपए थे, मन में अडिग संकल्प और आंखों में थे देश और समाज के लिए अनगिनत सपने।

गोपाल गणेश आगरकर ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान पैसों की व्यवस्था के लिए अकोला के एक समाचार पत्र को पुणे से समाचार भेजना शुरू किया। उनका वेतन था 5 रुपए महीना। इसके साथ ही उन्होंने भाषण और लेख प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना आरंभ किया और कई प्रतियोगिताएं जीतीं। जो पैसे मिले उनसे ही कॉलेज की फीस, कॉपी किताब और भोजन की व्यवस्था की। इस तरह बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब एमए की परीक्षा पास आई तब उनके पास फीस के पैसे नहीं थे। उन दिनों महाराष्ट्र में नाटकों की बड़ी धूम थी। अब उन्होंने नाटक मंडली के लिए नाटक लिखना आरंभ किया ताकि कुछ पैसे जुटा सकें। वो दिन भर पढ़ते और रात में नाटक लिखते। जब ये खबर उनके प्राध्यापक छत्रे जी तक पहुंची तो उन्होंने उनकी फीस खुद जमा करवा दी। लेकिन कॉलेज के इन संघर्ष भरे दिनों ने आगरकर जी के जीवन की दिशा तय कर दी थी। कॉलेज के दिन के 2 संयोग ऐसे हुए जिनका संबंध उनके भावी जीवन से रहा। पहला, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मित्रता, और दूसरा, समाचार पत्रों के लिए लेखन। तिलक जी के साथ उनकी मित्रता आगे भी जारी रही क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक था, लेकिन उनके काम करने के तरीके में थोड़ा अंतर था। गोपाल गणेश आगरकर का विचार था कि देश की उन्नति के लिए समाज सुधार सबसे आवश्यक है, जबकि तिलक जी का कहना था कि देश की आजादी के बाद समाज सुधार का काम आसान हो जाएगा। लेकिन दोनों इस बात पर एकमत थे कि ब्रिटिश राज में सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उससे देश प्रेम नहीं बल्कि अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति की भावना छात्रों में भरी जाती है। इसलिए दोनों ने प्रसिद्ध विद्वान विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के साथ मिलकर पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ जनता में जागृति पैदा करने के लिए तिलक जी ने 2 समाचार पत्र केसरी और मराठा का प्रकाशन आरंभ किया। आगरकर जी ने केसरी का संपादन संभाला। दोनों पत्रों में जनता की बात अत्यंत दृढ़ता के साथ रखी जाती थी। अन्याय और शोषण के विरुद्ध एक हुंकार थी इन पत्रों में। उन दिनों कोल्हापुर के महाराज पर जो अन्याय हो रहा था उसके विरोध में इन पत्रों में कई लेख प्रकाशित हुए, जिसके कारण आगरकर जी और तिलक जी पर मानहानि का मुकदमा हुआ और दोनों को जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद महाराष्ट्र की जनता ने जिस उत्साह के साथ दोनों का अभिनंदन किया उसने जनता के बीच उनकी प्रसिद्धि को सिद्ध कर दिया। सन 1884 में डेकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और फर्ग्यूसन कॉलेज अस्तित्व में आया। तिलक जी और आगरकर जी इसमें प्राध्यापक हुए। उधर मराठा और केसरी दोनों ही पत्र उनकी विचारधारा के संवाहक बने, लेकिन कुछ विशेष मुद्दों पर दोनों में मतभेद था। इसलिए आगरकर जी केसरी के संपादन से अलग हो गए। उन्होंने सुधारक नामक नया साप्ताहिक पत्र निकालना आरंभ किया। इस तरह दोनों की राहें अलग हो गईं, लेकिन दोनों एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य के लिए आजीवन जुटे रहे। दोनों की ही प्राथमिकता में सबसे पहले था भारत।

कुछ समय बाद तिलक जी ने डेकन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ दी। उधर गोपाल गणेश आगरकर फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद पर थे और वो आजीवन इस पद पर बने रहे। दरअसल आगरकर जी बड़े उदार विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया। उन्होंने अपनी पत्रिका सुधारक के जरिए छुआछूत और जाति प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोग गोपाल गणेश आगरकर को अपना गुरु और समाचार पत्र सुधारक को अपना मुख्य पत्र मानने लग गए, लेकिन आम जन के बीच उनका विरोध बढ़ता जा रहा था, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा और विधवा विवाह के विषय में उनके प्रगतिशील विचार समाज को अप्रिय लगते थे। आगरकर जी विधवा विवाह के पक्षधर थे। उनका ये भी कहना था कि लड़कों के विवाह की उम्र 20-22 वर्ष और लड़कियों की कम से कम 15-16 वर्ष होनी चाहिए। 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा और सह शिक्षा के वो समर्थक थे। उनके मन में महिलाओं के अधिकारों के विषय में चिंता बचपन से ही उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी दो विधवा मौसी और चाची की पीड़ा को बहुत पास से देखा था। इसीलिए उन्होंने स्त्रियों को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए निरंतर आवाज उठाई। जब महर्षि धोंडो पंत कर्वे ने स्वयं विधवा विवाह किया, तब आगरकर जी ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया। गोपाल गणेश आगरकर ने अंधविश्वास के विरुद्ध सदैव लड़ाई लड़ी। वो तर्क और समानता की जमीन पर जीवन को देखते थे। उन्होंने सदा नैतिकता को धर्म से अलग करके देखा। वो स्वयं अनीश्वरवादी थे, लेकिन अपनी पत्नी को कभी भी उन्होंने पूजा करने से रोका नहीं। इस तरह वो एक अत्यंत प्रगतिवादी व्यक्ति थे। उनकी विचारधारा से तत्कालीन समाज अपना सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। यही कारण है कि उन्हें हत्या की धमकी दी गई, जीते जी उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और उनके समाचार पत्र सुधारक की होली जलाई गई। लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति अटल थे। वो अत्यंत निर्भय थे। भीषण सामाजिक विरोध के बावजूद वो अपनी राह पर लगातार चलते रहे। उनका एक ही नारा था, जो उचित है वो कहूंगा और जो संभव है वो करूंगा। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और 17 जून सन 1895 को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर तिलक जी और गोखले जी तुरंत उनके पास दौड़े आए, लेकिन आगरकर जी अनंत की यात्रा पर निकल चुके थे। बस उनके सिरहाने एक पुड़िया में कुछ रुपए रखे थे और उस पुड़िया पर लिखा था, ये रुपए मेरी अंत्येष्टि के लिए रखे हैं। इस तरह एक महान आत्मा की विदाई हुई। शत शत नमन उनके तप, साधना और संघर्ष को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: एक शाही दहेज, सात द्वीपों और चाय की प्याली से बना साम्राज्य। साल 1662 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से विवाह किया। ये एक ऐसा मिलन था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस समय के दरबारियों के लिए राजकुमारी का दहेज वस्तुओं का एक अजीब संग्रह था। चाय का एक संदूक और सात चट्टानी मच्छरों से भरे द्वीपों का एक समूह जिसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। लंदन के सबसे प्रसिद्ध डायरी लेखक और गपशप के शौकीन सैमुअल पेपिस इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने बम्बई को एक बेचारा छोटा सा द्वीप कहकर खारिज कर दिया और कड़वाहट के साथ भविष्यवाणी की कि यह राजा के लिए दुख के सिवा कुछ नहीं लाएगा। उस समय इन द्वीपों की कीमत इतनी कम आंकी गई थी कि क्राउन ने अंततः इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष के मामूली किराए पर पट्टे पर दे दिया। हालांकि यही बेचारा छोटा सा द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक केंद्र बना। इसने डच और पुर्तगाली प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए एक आदर्श आधार प्रदान किया और अंततः अफीम और चाय के व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया, जिसने औद्योगिक क्रांति को गति दी। इस बीच चाय के उस एक संदूक ने एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कर दी। कैथरीन से पहले चाय एक रहस्यमयी चीनी पेय थी जो केवल विशेष कॉफी हाउसों में बेची जाती थी। उनके आने के बाद यह एक राष्ट्रीय जुनून बन गई। 1666 तक 1 पाउंड चाय की कीमत बम्बई के पूरे वार्षिक किराए के बराबर हो गई थी। इतिहास ने साबित किया कि पेप्स गलत थे, जिसे उन्होंने एक बोझ समझा था। वे वास्तव में एक वैश्विक महाशक्ति का जन्म था। इस शाही दहेज के बिना लंदन में शायद कभी चाय का स्वाद विकसित नहीं होता और बम्बई के वे मछली पकड़ने वाले गांव कभी ब्रिटिश राज के मुकुट का रत्न नहीं बन पाते। अरे होगा।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार में मैं हूं मनीषा और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर पारुल ऋषि, जो पर्यावरण मनोविज्ञान, जलवायु परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में जानी मानी शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। आप पिछले 32 वर्षों से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM में प्रोफेसर और सेंटर फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेयरपर्सन हैं। पर्यावरण और मानव व्यवहार के संबंधों पर उनके 110 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद मनीषा जी।
1: आज हम सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि अक्सर हम सुनते हैं कि प्रकृति के बीच में समय बिताने से मन शांत होता है, इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या है?
2: देखिए, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हर समय हम लोग मोबाइल और स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और उससे जो किरणें निकलती हैं वो हमारे दिमाग पर किसी न किसी तरह से प्रभाव डालती हैं। तो उसका जो प्रभाव है वो हम देखते हैं हमारे व्यवहार में। आजकल हम देखते हैं टीनएजर्स के व्यवहार में चिड़चिड़ापन, और अगर आप उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करें तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रकृति के पास होते हैं तो आप उन्हीं बच्चों का व्यवहार जब आप देखेंगे कि वो प्रकृति के पास हैं, वो पेड़ों के साथ हैं, वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यवहार आपको उनका नहीं मिलेगा। तो ये सच बात है कि प्रकृति के साथ रहने से हमारा व्यवहार शांत होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, हम एक अपनेपन की अनुभूति करते हैं कि जैसे हम अपने साथ हैं। तो मनोविज्ञान में अपने साथ होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व के साथ हैं, अपने बारे में कुछ कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, ये अनुभूति हमको प्रकृति के साथ जो है ये काफी अच्छे तरीके से होती
1: है। मैडम, माइंडफुलनेस कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि इस पर भी आजकल बहुत बातें हो रही हैं, इवन सोशल मीडिया पर हम ये चीजें बहुत देखते हैं, माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है क्या?
2: ये माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली बुद्धिस्ट फिलोसफी से आया है और इसका जो है पहले तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा था, थेरेपीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पर्यावरण से संबंधित विषयों में भी माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं। एक वैम्सलर ने स्वीडन में काफ़ी स्टडी माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट पर की है। इसका मतलब यह है कि आप जिस परिस्थिति में जहाँ हैं आप वहीं पर हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति मिला तो हम, या किसी हम परिस्थिति में हैं, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, इस तरह का जो हमारा एक इवैल्यूएटिव टाइप का, जजमेंटल टाइप का एटीट्यूड जो होता है ना, इसका ऑपोजिट इज माइंडफुलनेस, कि हम हर परिस्थिति को वैसे देखें जैसी वो है। सो तथागत का जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि इट इज एज इट इज, तो इसमें हम हर समय इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे भी होते हैं। तो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो भी परिस्थिति है उसमें खो जाएं, उसी में एब्जॉर्ब हों अपने आप को। तो नेचर में जब हम होते हैं, तो जब हम नेचर बेस्ड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं, तो उसमें हम जब पेड़ों के साथ हैं, हम जब नदी के किनारे बैठे हैं, नर्मदा के किनारे बैठे हैं, तो हम उस पूरे एनवायरनमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। तो दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट। तो इससे हमारा जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं उनसे कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है और हम लोग एक परिस्थिति में अपने आप को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं।
1: एक चीज और है कि आपकी बात से ही मुझे वो स्थिति प्रज्ञ हमारे यहाँ बोला जाता था कि स्थिति प्रज्ञ हो जाइए तो सारी स्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाती हैं। एक बात और मैडम आती है कि जब हम बहुत थक जाते हैं और ऐसे वक्त पे अगर हम ठंडे पानी में पैर डाल लें या हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें सुकून मिलता है। आजकल आप भी देख ही रहे होंगे इस चीज़ को कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि माइंड रिलैक्स करने के लिए आपको प्रकृति का संगीत सुनना चाहिए, तो ये बात सच है क्या?
2: पर्यावरण मनोविज्ञान में मेरी शिक्षा हुई है तो मेरा काफ़ी रिसर्च इस फील्ड में रहा है। तो बहुत सारी इस तरह की रिसर्च स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि आप अगर पर्यावरण के साथ हैं तो आपका अवसाद आप में कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, आप आपका स्ट्रेस रिलीव होगा, और इसीलिए लोग पहाड़ों के पास जाते हैं। क्योंकि एक स्टडी मैं आपको कोट करके बताना चाहूंगी कि एक मनोवैज्ञानिक है अल्रिच, उन्होंने एक स्टडी की थी, सर्जरी हुई थी पेशेंट्स की। सो उन सर्जरी पेशेंट्स को जब हॉस्पिटल में वो एक रूम में वो लोग थे, तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स को ऐसे रूम में रखा जहाँ खिड़की से पेड़ पौधे और हरियाली दिख रही थी, और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को रखा कि जिनको एक कॉन्क्रीट की वॉल दिख रही थी खिड़की से। तो दोनों ग्रुप्स की उन्होंने फिर बाद में उनकी मनस्थिति को और सर्जरी से उनका पोस्ट सर्जरी जो रिकवरी हुई तो उसको उन्होंने कंपेयर किया। तो उन्होंने देखा कि जो पेशेंट्स हरियाली देख रहे थे खिड़की से, उनकी रिकवरी सेम सर्जरी से ज्यादा फास्ट हुई इन कंपैरिजन को वो लोग जिनको कॉन्क्रीट की वॉल दिख रही थी। तो इस रिसर्च से उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम लोग जब नेचर के पास होते हैं तब हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ जो है और वेलबींग को जो है वो नेचर प्रमोट करती है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नेचर के साथ रहना हमारे लिए जो है वो खाली एक सुखद अनुभूति नहीं है, बल्कि ये हमारे शारीरिक रोगों को भी कम करती है, रोगों के प्रभाव को कम करती है, और हम एक अच्छी फीलिंग हमारे अंदर जो है ना ये प्रोवाइड करती
1: जी है। मैडम, दूसरी तरफ ये भी सुनने में आता है कि कोई पेड़ मान लीजिए सूख रहा है और उससे आप प्यार से जाकर उस पेड़ पर हाथ फेरने लगें या उससे बातें करने लगें, कई लोग करते भी हैं ये कि पेड़ के नीचे गए और बातें भी कर रहे हैं, क्या पेड़ों का भी कोई मनोविज्ञान होता है?
2: देखिए, इस क्षेत्र में मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मैं मनुष्यों के मनोविज्ञान के बारे में ही जानती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य जो हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। सो हम लोग जब पर्यावरण के साथ होते हैं तो पर्यावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उससे हमारी मनस्थिति जो है वो इम्प्रूव करती है। तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसा भी होता होगा कि हम अगर पेड़ों के साथ अच्छे तरह से व्यवहार करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरह की रिसर्च स्टडीज तो काफी हुई हैं। एक हॉर्टिकल्चर थेरेपी आजकल काफी पॉपुलर है। हॉर्टिकल्चर थेरेपी में यह है कि आप जब पेड़ पौधों के साथ होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बागवानी करते हैं। एनिमल्स के साथ तो हम लोग देखते ही हैं कि लोग जो पेट्स रखते हैं या गायों का जो है देखभाल करते हैं, तो ये सारा आप देखेंगे कि उनकी साइड से भी एक उसी तरह की रिस्पॉन्स आती है। तो जब हम लोग पेड़ों को प्रभावित करते हैं तो पेड़ भी हमको प्रभावित करते हैं, इस तरह की एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो बागवानी वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हॉर्टिकल्चर थेरेपी, वो यही है कि जो लोग बागवानी में जुड़े रहते हैं, पेड़ों का ध्यान रखते हैं, आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं कि माली रखते हैं तो पेड़ उतने अच्छे ग्रो नहीं करते, लेकिन अगर आप खुद भी साथ में देख रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो पेड़ों की ग्रोथ बेटर होती है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स और आपका उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है और रिलेशनशिप जो है ये पेड़ों की ग्रोथ को डेफिनेटली प्रभावित करता हूँ
1: जी। मैडम, आपने चूंकि अभी पेट्स की बात की, तो घर में अगर कोई पालतू जानवर रखते हैं तो क्या उससे भी चिड़चिड़ापन मनुष्यों में और कहीं ना कहीं अवसाद कम होता है?
2: मनोविज्ञान तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप पेट्स रखते हैं तो आप ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं कि कुछ लोग जो जिनका मनुष्यों के साथ बहुत अच्छा जो है वो बातचीत खुल के नहीं कर पाते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अंतर्मुखी उनका जो व्यवहार होता है, तो उन लोगों को लगता है कि वो अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपना पेट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, और डेफिनेटली पेट्स भी उसको रेसिप्रोकेट उसी तरह से करते हैं। तो मेरा मानता है कि डेफिनेटली ऐसा होता होगा।
1: आपने जो कहानी सुनाई कि कुछ लोगों को बंजर जमीन दिखाई गई, एक वॉल दिखाई गई, और कुछ लोगों को हरियाली, ये तो एक थेरेपी के तहत किया गया और रिसर्च के तहत किया गया, लेकिन आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स बने जा रही हैं और हरियाली कम होती जा रही है, तो आपको लगता है जो हिंसा है, जो चिड़चिड़ापन है लोगों में, क्या उसका रीजन कहीं ना कहीं प्रकृति से दूरी है, आप मानती हैं?
2: बिल्कुल है, और ये चीज रिसर्च से प्रूव हो चुकी है। आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज का भी कॉन्सेप्ट आजकल वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो जो वार्म कंट्रीज हैं वहां पर वायलेंस ज्यादा है, और आप देखेंगे कि समर मंथ्स में वायलेंस के इंसिडेंट्स जो हैं वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये वायलेंस और ज्यादा बढ़ रहा है जितना हम टेक्नोलॉजी के करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर समय तो वही 24 घंटे है, अब हम उसमें अगर ज्यादातर समय अपने मोबाइल और स्क्रीन के साथ निकालेंगे तो जो समय, और वर्क तो आपको करना ही है जो भी आप काम करते हैं, तो जो समय कम होता है वो प्रकृति के साथ रहने का ही समय कम होता है, और उसी का ही प्रभाव किसी ना किसी तरह से हमारे मनोस्थिति पर पड़ता है, और डेफिनेटली बच्चों में जो चिड़चिड़ापन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चों में क्राइम बढ़ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, मतलब माँ बाप भी बच्चों को जितना टाइम देते थे वही मोबाइल से ही वही टाइम कर्टेल हो रहा है हर जगह. तो कुल मिला के हम देखें कि आपसी रिश्तों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, प्रकृति के साथ रहने का समय कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. ये दो चीजें मुझे मनोवैज्ञानिक की उससे समझ में आ रही हैं कि हम लोग प्रकृति के साथ स्पेंड करने वाला टाइम और अपने रिश्तों को सुदृढ़ करने में लगने वाला टाइम, ये दो टाइम्स हमारे सबसे ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उसके लिए हमको बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है।
1: और यहाँ पर एक बात मैं आपकी बात में और जोड़ना चाहती हूँ कि हम प्रकृति को भी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं. कई बार मैंने जब इस तरह की बातें करूँ कि पेड़ों के पास बैठो तो मैं देखती हूँ कई घरों में बच्चे एक धीमा सा संगीत लगा लेंगे और स्क्रीन पे पेड़ आते रहेंगे या बहुत अच्छी हरियाली या पहाड़ दिखते रहेंगे. तो स्क्रीन की प्रकृति से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है.
2: बिल्कुल, स्क्रीन की प्रकृति से आप ये मान सकते हैं कि जिन लोगों को ये सुविधा नहीं है, जो ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहां पर प्रकृति उपस्थित नहीं है, हालांकि प्रकृति तो सभी जगह उपस्थित होती है लेकिन इतना आपके पास समय नहीं है कि आप स्पेंड कर सकें, तो एक सब्स्टिट्यूट की तरह से वो लोग यूज करते हैं. लेकिन जब आप एक्चुअली में प्रकृति के साथ हैं तो जो प्रकृति की सुगंध आप अनुभव करते हैं, जो पक्षियों का कलरव आप उनको साथ में देखते हुए अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें स्क्रीन से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती. लेकिन हम कह सकते हैं 10-20% कंपनसेशन उसका जो है वो स्क्रीन के थ्रू हो सकता है.
1: मैडम, आप बच्चों के बीच में बहुत, क्योंकि IFM में हैं तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे, बहुत आपका क्या अनुभव है इन चीज़ों को लेकर, बच्चों को लेकर? क्योंकि आपने पहले भी कहा कि बच्चे आजकल थोड़ा सा बात करने से बचने लगे हैं, कटने लगे. नई जनरेशन जो है उसको डील करना थोड़ा टफ होता जा रहा है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, बच्चों को आजकल आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते, ये स्थिति को आपको समझ लेना चाहिए. तो टेक्नोलॉजी के साथ ही हम उनको किस तरह से प्रकृति से जोड़ सकते हैं, यही हमको सोचना है. तो ज़्यादातर फैमिलीज में अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हो कि मॉर्निंग वॉक में कम से कम साथ में जाएं, भोपाल जैसे शहर में तो हम कह सकते हैं इस तरह की बहुत सुविधाएं हमको उपलब्ध हैं कि हम अपने घर से बाहर निकले और आपको एक बहुत छोटे से एरिया में जाके ही आपको प्रकृति के साथ आपका जो है संबंध हो सकता है. तो पेरेंट्स अगर साथ में बच्चों के साथ जाएं, प्रकृति के साथ वॉक करें, वहां पर आप बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करें. आजकल बर्ड वॉचिंग भी एक माइंडफुलनेस के लिए हम लोग एज थेरेपी की तरह से यूज करते हैं. आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं या आप किसी भी नेचुरल एरिया में, अर्बन एरिया में जा रहे हैं और वहां पर आप पक्षियों को देख रहे हैं और पक्षियों के फोटोग्राफी भी करते हैं लोग बर्ड्स की, लेकिन उसके अलावा पक्षियों को देखना, उनकी आवाजों को सुनना और उनकी आवाजों के अंतर को पहचानना, ये चीज आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है कि आप वॉइस साउंड्स में डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं कि ये एशियन फ्लाई कैचर की साउंड है, ये गोल्डन ओरियल की साउंड है, ये आउल की साउंड है. तो ये साउंड्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ये कॉग्निटिव एबिलिटी को शार्प करता है
1: जी.
2: उसके अलावा जब हम प्रकृति में होते हैं तो एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम हमको फील होती है. जैसे हम घर में होते हैं तो हम देखते हैं चारों साइड वॉल्स हैं, तो वो हमारे थॉट प्रोसेसेस को किसी तरह से लिमिट करता है कि ये हमारी बाउंड्री है. लेकिन जब हम खुला आसमान देखते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, नदी को देखते हैं, नदी के बहाव को फील करते हैं कि नदी बह रही है, तो उससे हमको लगता है कि हाँ, हम एक फ्री वर्ल्ड में जिंदा हैं और एक लाइफ में एक फ्लो हमको फील होता है. तो उससे हमारी मनस्थिति और हमारे व्यवहार और हमारी सोचने, समझने और निर्णय करने की क्षमता, इन सारी चीजों में हमारा बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है
1: जी. उन्मुक्तता भी आती है लोगों में वहां जाकर. मैडम, आपने माइंडफुलनेस की एक थेरेपी तो हमको जैसे बर्ड वॉचिंग बताई, माइंडफुलनेस की और भी थेरेपीज होती होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी?
2: एक ब्रीदिंग माइंडफुलनेस काफी ज्यादा यूज होता है. हम लोग को लगता है सांस लेना एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और हम दिन भर सांस लेते ही रहते हैं, लेकिन एक माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक टेक्निक है. तो उसमें हम लोग अपनी सांस को फॉलो करते हैं कि जैसे हमने सांस ली तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो उस सांस के साथ, हमने जैसे ब्रीद इन किया तो हमारा ध्यान भी हमारी सांस के साथ साथ जो है वो गया और फिर उसके बाद ब्रीद आउट किया. सो ये सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया के साथ जब हमारी मनस्थिति भी इसके साथ में जुड़ी होती है, सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ, तो वो एक माइंडफुलनेस थेरेपी होती है कि हमारा ध्यान इधर उधर जाने की जगह हम अपनी सांस को फील कर रहे हैं और उससे किस तरह से हमको एक ठंडक की अनुभूति हो रही है सांस को बाहर निकालते हुए और गर्माहट की अनुभूति हो रही है सांस को अंदर लेते हुए. तो इस फीलिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करना और ऐसे रिपीटिशंस करना, ये भी एक ब्रीदिंग बेस्ड बेस्ड माइंडफुलनेस जो है ये कहलाता है। इसके अलावा वॉकिंग माइंडफुलनेस भी होता है, जिसमें जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप अपने एक हर एक स्टेप को फील कर रहे हैं कि आपने जमीन पर एक स्टेप रखा, फिर आपने दूसरा रखा, तो आपका मन उस हर स्टेप के साथ आगे बढ़ रहा है। सो ये एक वॉकिंग माइंडफुलनेस कहलाता है। तो मेरी एक रिसर्च एक मेरे स्टूडेंट ने करी थी, पीएचडी स्कॉलर ने थोड़े साल पहले, तो उन्होंने इस माइंडफुलनेस थेरेपी को पेरेंट्स के साथ यूज किया था जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव थे
1: जी।
2: तो उनको मैनेज करने में उनको बहुत चैलेंजेस आते थे, तो उनको माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज के थ्रू उनको ट्रेन किया था, तो उससे उनका बच्चों के साथ जो व्यवहार था, हाइपर एक्टिव बच्चों को डील करना काफी डिफिकल्ट होता है, उनका व्यवहार बहुत इंप्रूव किया इससे, और उनके जो रिलेशनशिप बच्चों के साथ बहुत स्पॉइल हो गए थे क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे जिससे कि वो तनाव में आ जाते थे, तो वो उनका तनाव कम हो गया और बच्चों के साथ डील करने की उनकी एबिलिटी और इंप्रूव करी, और बच्चों के व्यवहार में भी उससे अंतर आया। सो माइंडफुलनेस थेरेपी मल्टीपल फॉर्म्स में जो है वो यूज होती है, और इंडस्ट्रीज में जो यूज होती है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, कि अगर आपके एम्प्लॉयज माइंडफुल हैं, उनको माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दी गई है, तो वो बेटर परफॉर्मेंस देंगे, कम समय में बेटर परफॉर्मेंस देंगे।
1: तो मैम वर्क प्लेस पे ये कैसे काम, क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे का आपका वर्क स्टेशन पे आपको रहना होता है, ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं कि उनके काम में सुधार आए, या क्या ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें।
2: देखिए वर्क प्लेस में आजकल बहुत कॉमनली एक वेलनेस प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसी वेलनेस प्रोग्राम में ही माइंडफुलनेस को उन लोगों ने इंटीग्रेट किया है। कुछ अच्छी कंपनीज जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली करवाती हैं जिसमें माइंडफुलनेस ट्रेनिंग देती हैं, तो बहुत ज़्यादा समय का इशू नहीं है ये, बहुत कम समय में इट्स अ ट्रेनिंग, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो एक पर्टिकुलर तरह से सोचने की अपनी आदत बनाए और करंट मनस्थिति में रहे। अदरवाइज तो आपने बाकी इंडियन फिलोसफी में ये बताया हुआ है कि मन एक घोड़े की तरह है, अगर आपने उसको लगाम नहीं लगाई तो वो कहीं भी भागेगा, तो वही स्थिति है। तो हम माइंडफुलनेस के थ्रू बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और उसको ट्रेन करते हैं, कंट्रोल भी नहीं करते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं कि वो जिस समय जो काम कर रहा है वो उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्व होके उसको करे। सो इससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जब वो फिर उसका रिवर्स सिचुएशन ये होगी जब वो वर्क का काम कर रहा है, जब वो अपने ऑफिस में है और ऑफिस में जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज उनको दी गई हैं वो उसमें भी ऑब्जॉर्व होकर काम करेगा। सो ये एक दूसरी परिस्थिति में भी ट्रांसलेट होता है, जब अपने फैमिली के साथ है, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहा है, तो उसमें भी वो एब्जॉर्व होकर करेगा। अदरवाइज आपका वर्क प्लेस का स्ट्रेस घर में ट्रांसफर होता है, घर का स्ट्रेस वर्क प्लेस में ट्रांसफर होता है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है।
1: मैडम आपकी ही बात में से एक बात अभी मुझे ध्यान आ रही है, और वो ये है कि पहले हम लोग कहते थे कि तेज़ी से भागो, दुनिया के साथ भागो, अभी कुछ एक चीज़ें सुनने में आ रही कि थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा धीमे चलो, थोड़ा धीमे हो जाओ, ज़िंदगी में इतना मत भागो, रुक जाओ, ठहर जाओ। ये जो स्लो का ट्रेंड आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस को करता है कि आप थोड़ा अपनी जिंदगी में थोड़े धीमे हो जाइए।
2: देखिए माइंडफुलनेस आपका स्लो और फास्ट से रिलेटेड नहीं है, इट इज जस्ट कि आप जो जैसी स्थिति है आप उसको एक्सेप्ट करें कि यही स्थिति है। जो पॉज का आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, बर्नआउट के बहुत ज्यादा केसेस आजकल सुनने में आ रहे हैं कि लोग बाग अपने बहुत अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में, जैसे हम लोग के टाइम में होता था कि ठीक है आपने जॉब ली है तो आप अच्छे से आप अपना काम कर रहे हैं और 8-10 साल आपने काम कर लिया, उसके बाद या 15 साल के बाद फिर सोचते थे कि हमको घर बनाना है या हमको कुछ कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है उनका वे ऑफ थिंकिंग है कि बहुत अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए, उनको कार लेनी है, उनको घर बनाना है, जो भी चीजें, तो एस्पिरेशंस जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं। और इसमें मैं कहूंगी कि बहुत हद तक इंटरनेट से जो एक्सपोजर हुआ है लोगों को, जो दूसरे लोगों की स्टोरीज वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरे उसने तो इतनी जल्दी ये सब कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर पाया, तो इसमें एक वो उनको लगता है अच्छा मैं कुछ और ज्यादा तेजी से कर लूंगा तो शायद मुझे भी ये मिल जाएगा। तो ये एक दौड़ने की टेंडेंसी और रशिंग टेंडेंसी लोगों में इसकी वजह से डेवलप होती जा रही है, और उसको पॉज करने की बहुत जरूरी है। हर पर्सन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बहुत अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा कमा के बहुत हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए, और आपको ये भी नहीं पता कि अगर वो पहुंच भी गया तो क्या वो वहां खुश है, क्या वो वहां संतुष्ट है, क्या हमारे मन की संतुष्टि ज्यादा जरूरी है या भागकर लाइफ में कुछ बहुत कुछ अचीव कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो उस परिस्थिति को अगर हम देखते हैं तो पॉज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा ये नहीं सिखा सकते लेकिन फिर भी जो है एटलीस्ट एक एडवांस मिडिल एज पे आके कम से कम आपको कि पॉज लेना, कि लाइफ में प्रकृति को देखना, अपने आसपास के एनवायरमेंट को एब्जॉर्व करना, उसके साथ एक खुशी की फीलिंग होना और अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करना, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी है।
1: आपका इंस्टीट्यूट आम लोगों की ज़िंदगी में इस तरह की कोई मदद कर सकता है, जो लोग चाहें कि उन्हें प्रकृति के निकट आकर अपने अवसाद को या किसी भी तरीके के तनाव को दूर करना है, तो उसमें आपके इंस्टीट्यूट की कोई भूमिका होती है?
2: देखिए, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, इसका नाम ही है कि ये वन के प्रबंध का संस्थान है और ये हमारा इंस्टीट्यूट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और जिसके आसपास काफ़ी जंगल है और हम लोगों का एक क्लब भी, हम लोगों का एक एडवेंचर क्लब भी है, एक नेचर क्लब है। तो नेचर क्लब इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करता रहता है कि जिसमें बर्ड वॉचिंग के लिए जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स आते हैं तो उनको भी बर्ड वॉचिंग के लिए उनको गाइडेड विजिट कराना फॉरेस्ट का। एक नेचर ट्रेल हमारे यहाँ बनी हुई है, नेचर ट्रेल में जाके बर्ड वॉचिंग कराना, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो बर्ड वॉचिंग के एक्सपर्ट्स हैं तो वो, और हमारी फैकल्टीज भी हैं तो वो साथ में उनको ले जाके एंड गाइडेड टूर इंस्टीट्यूट का कराते हैं। उसके अलावा और भी बर्ड वॉचिंग के ग्रुप्स हैं और नेचर ट्रेल्स के ग्रुप्स हैं तो उनके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को हम लोग नेचर के क्लोज लाना और नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स और नेचर और बर्ड्स, उनके साथ एक कनेक्ट की फीलिंग डेवलप कराना, उसमें हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, करते भी हैं और आगे और भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप चेयरपर्सन हैं, हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या है वो और कैसे काम करता है?
2: देखिए, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2018 में हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था। एक इंडस्ट्रीज़ के लिए एक जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके अंडर 2% ऑफ प्रॉफिट दे हैव टू स्पेंड इन CSR एक्टिविटीज़। तो उसमें बहुत सारी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सो उनसे लेके कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इंडस्ट्रीज़ कर सकती हैं और वो अपना 2% के अंदर उनको कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करने होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को समाज के लिए और पर्यावरण में सुधार के लिए उनको उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। सो हमारी संस्था जो हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। इतना मनी जो है वो सारे कॉर्पोरेट्स का आता है जो CSR के लिए उनको स्पेंड करना है, लेकिन क्या ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ? जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इस पैसे को लगाया उन प्रोजेक्ट्स ने एक्चुअली में सोसाइटी को कुछ इम्पैक्ट दिया या नहीं दिया? तो इसका आकलन जो है ये एक साइंटिफिक टेक्निक रहती है, सोशल साइंटिस्ट जो हैं हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। सो बहुत सारी कंपनीज के जो CSR प्रोजेक्ट्स थे सो उनके इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हम लोगों ने काफ़ी इस सेंटर में पिछले सालों में काम किया। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम करते हैं वो CSR के लिए किस तरह से इक्विप्ड हैं, उनको नॉलेज है या नहीं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, किससे सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट होगा, कैसे उनको बेसलाइन स्टडी करें कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नीड बेस्ड हों, कि जो सोसाइटी के लोग चाहते हैं उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स हों।
1: एक और आखिरी सवाल मैडम, कि कुछ बच्चों को प्रकृति के निकट रहना, बर्ड वॉचिंग, कई बच्चों को बड़ा शौक होता है, लेकिन वो इसे अपना प्रोफेशन कैसे बनाए, उसमें IFM क्या हेल्प कर सकता है या किस तरह के कोर्सेज हैं अगर आप उसके

0: एमबीए प्रोग्राम्स चलते हैं. हमारा इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी अभी 2 साल पहले हम लोग डिक्लेयर हुए थे, 3 साल पहले. तो हम लोग एक कोर्स है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एमबीए इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक प्रोग्राम है एमबीए इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, और 2 और प्रोग्राम्स हम लोगों ने नए लास्ट ईयर ही स्टार्ट किए हैं. एक है डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फिनेंस और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो ये प्रोग्राम्स जो हैं इसमें हम लोग मैनेजमेंट एजुकेशन तो स्टूडेंट्स को देते ही हैं, जो कि सारे ही मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस मैनेजमेंट एजुकेशन को हम फॉरेस्ट्री के फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं
1: जी,
0: इंडस्ट्रीज जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी के फील्ड पे कैसे अप्लाई कर सकती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या एप्लीकेशन हो सकता है. आजकल क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन फाइनेंस के बारे में बहुत बात हो रही है, तो हमारा डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस का कोर्स जो है वो मैनेजमेंट एजुकेशन बट अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी. सो इस तरह से ये 4 कोर्सेज हमारे हैं, और हमारा काफ़ी अच्छा, मैं प्लेसमेंट चेयरपर्सन भी हूँ, और काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रीज़ का रिस्पांस इसके लिए रहता है. हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल सारी इंडस्ट्रीज़ को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करना जो है वो कंपलसरी है. सो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारे एल्यूमिनाई जो हैं पास्ट के वो बहुत कंपनीज़ के, कंसल्टिंग कंपनीज़ के पार्टनर्स हैं और CEOs हैं और सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स हैं एंड चीफ ऑफिसर्स तक हैं या कंपनीज ओन करते हैं. सो बिकॉज इस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी है, 1982 का ये इंस्टीट्यूट है. सो काफ़ी अच्छा इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करने की एक हिस्ट्री रही है.
1: डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आप इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए इतना समय निकाला और हमें बहुत बहुत सरल शब्दों में ये बताने की कोशिश भी की कि किस तरीके से पर्यावरण हमारे मनोविज्ञान पर असर डालता है. और हमें दोस्तों उम्मीद है कि ये बातचीत सुनने के बाद निश्चित ही आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से भले ही आधा घंटा निकालें पर कहीं ना कहीं प्रकृति के करीब जाइए, क्योंकि जैसा आपने मैडम की बातों में सुना कि अगर आप नदी के पास जाते हैं तो आपके भीतर उन्मुक्तता का भाव आता है. जब आप अपनी 4 दीवारी के बीच में से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आप में आज़ादी की भावना आपको अच्छी लगती है और आप उसी की तरीके से जीवन जीने का प्रयास करते हैं. थैंक यू सो मच मैडम, आप यहाँ पर आए और आपने इतना समय दिया. थैंक यू.
0: थैंक यू मनीषा जी.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार. इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा. सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए.

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नादिर शाह के नौसैनिक बेड़े का विद्रोह सन 1740, विश्वासघात और बिखरते सपने। अगस्त सन 1740 की भीषण गर्मी में एशिया के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह के महत्वाकांक्षी नौसैनिक सपने अचानक खून और धोखे के दुःस्वप्न में बदल गए। वर्षों तक फारसी शासक ने अपनी शक्तिशाली सेना के बराबर एक समुद्री बल बनाने के लिए काम किया था। उन्होंने तकनीक के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का सहयोग लिया, जबकि जहाज चलाने के वास्तविक अनुभव के लिए स्थानीय अरब जनजातियों पर निर्भर रहे। हालांकि ये किराए की नौसेना रेत की नींव पर खड़ी थी, जो केवल सिक्कों और रोटी के वादे से जुड़ी हुई थी। ये संकट रणनीतिक बंदरगाह बंदर ए लाफ्ट पर भड़का। विभिन्न खाड़ी जनजातियों से भर्ती किए गए अरब नाविकों में भारी रोष था, क्योंकि उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला था और उनके राशन के भंडार खाली पड़े थे। यूरोपीय कंपनियों के अनुशासित क्रू के विपरीत, जहां कील हॉलिंग जैसे कठोर सजाओं से व्यवस्था रखी जाती थी, इन नाविकों को एक ऐसे तानाशाह की सेवा करनी पड़ रही थी जो अपने नाविकों की बुनियादी जरूरतों से ज्यादा विजय को प्राथमिकता देता था। विद्रोह कोई शांत पलायन नहीं था, ये सामूहिक हिंसा का एक विस्फोट था। नाविकों ने एक साथ उठकर अपने कमांडरों पर अपना गुस्सा निकाला। इस अराजकता में उन्होंने फारसी एडमिरल मीर अली खान की हत्या कर दी और उन सभी को मार डाला जिन्होंने उनका विरोध करने का साहस किया। जिन पुरुषों को नादिर शाह ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए रखा था, वे अब इसके सबसे खतरनाक चोर बन गए थे। उन्होंने लंगरगाह से हर संभव जहाज को अपने कब्जे में लिया और खाड़ी में गायब हो गए। इस घटना ने एक चौंकाने वाली विडंबना को उजागर किया। नादिर शाह के बेड़े का निर्माण विशेष रूप से यूरोपीय नौसैनिक प्रभुत्व को दरकिनार करने और समुद्री मार्गों पर फारसी आधिपत्य स्थापित करने के लिए किया गया था। फिर भी अपनी ही नौसेना के विद्रोह और कुशल नाविकों के चले जाने के बाद शाह को मदद के लिए वापस यूरोपीय शक्तियों की ओर मुड़ना पड़ा। फारसी अधिकारियों ने EIC और डच VOC से प्रार्थना की कि वे अपने श्रेष्ठ युद्ध पोतों का उपयोग उन्हीं जहाजों को हराने के लिए करें जिन्हें यूरोपीय लोगों ने हाल ही में फारसियों को बेचा था। इस संकट का जवाब एक हताश और तात्कालिक गठबंधन के रूप में मिला। उन्हें मदद के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उन्होंने इनकार किया तो घबराए हुए फारसी अधिकारी उन पर हमला कर सकते हैं। उन्हें बागियों की ओर ले जाने के लिए अपने ही दल को रिश्वत देनी पड़ी। अंग्रेजों ने एक ट्रांकी यानी एक छोटा तटीय जहाज प्रदान किया, जिसमें फैक्ट्री के गार्ड और अकेला तोपची तैनात था। अंग्रेज रिपोर्टों के अनुसार इन गार्डों ने डच या फारसियों की तुलना में कहीं अधिक डटकर मुकाबला किया। सन 1740 का विद्रोह शक्ति के सहयोजन की सीमाओं की याद दिलाता है। इसने साबित कर दिया कि जहां जहाज और तोपें खरीदी जा सकती हैं, वहीं वफादारी और समुद्री कौशल को इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। नादिर शाह के लिए उनके अरब नाविकों का विद्रोह एक अपमानजनक झटका था, जिसने उन्हें एक बार फिर उसी यूरोपीय ताकत पर निर्भर कर दिया जिसे वे हटाना चाहते थे।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इसका परिवर्तनशील होना। ऋतुएं बदलती हैं, दिशाओं के रंग बदलते हैं, नदियां अपना मार्ग बदलती हैं, वृक्ष पुराने पत्ते छोड़कर नए जीवन का स्वागत करते हैं। यानी जो आज नवीन है वो कल प्राचीन हो जाता है, जो आज साकार है वो एक दिन समय की गोद में विलीन होकर शून्य हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस संसार की हर चीज मानो समय के चक्र पर सवार एक यात्री है, क्षण भर ठहरती है, अपना स्वरूप बदलती है और फिर आगे बढ़ जाती है। परिवर्तन ही इसकी प्रकृति है, अस्थिरता ही इसका स्वभाव है। भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुपम ग्रंथ योग वासिष्ठ हमें इसी सत्य का बोध कराता है और बताता है कि जो मनुष्य संसार की अस्थिरता को समझ लेता है उसके भीतर वैराग्य नहीं बल्कि विवेक का उदय होता है। परिणाम स्वरूप वो क्षणिक आकर्षणों के ऊपर उठकर शाश्वत चेतना की ओर अग्रसर होता है। तो आइए योग संवाद कार्यक्रम में आज जगत के पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता विषय पर बात करते हैं और जानते हैं कि परिवर्तन के इस अनवरत प्रवाह के बीच स्थिरता का वास्तविक जो आधार है वो कहाँ है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच हमेशा की तरह उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। योग संवाद कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जगत के पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता इस विषय पर। ये दृश्य जगत जो है वो भगवान श्री राम को कैसा दिखाई दे रहा है, क्या
1: जी आपने एक सुंदर प्रश्न किया। राम जी कहते हैं अपने गुरुदेव से कि ब्रह्मन, यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप दृश्य जगत दिखाई देता है वह सब सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर है, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं है
0: जी।
1: और आप देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी आदियोगी शिव के द्वारा अपनी अर्धांगिनी को, जब शक्ति को कहा जा रहा है तो कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो राम जी कहते हैं कि ये सपने में लगे मेले के समान अस्थिर है
0: जी।
1: जैसे सपना टूटेगा उस मेले के सारे दृश्य समाप्त हो जाएंगे। वैसे भी जगत भी एक मेला ही है और हम देखें तो हमारे अनुभव में भी आता है कि हम जागृत अवस्था में जैसे जगत के इस मेले को हम देखते हैं, व्यवहार करते हैं, सो जाने के बाद इस जगत का दृश्य नहीं होता, एक और दृश्य खड़ा होता है। स्वप्न की दुनिया इस दृश्य जगत जैसी नहीं होती, वहां कुछ दृश्य होते हैं लेकिन वो जहां आप होते हैं वो दृश्य नहीं होते, कहीं और के होते हैं। और ऐसे जब नींद आ जाती है गाढ़ी नींद में तो वहां तो कोई सारे दृश्य अदृश्य हो जाते हैं। आपको अपने देह तक, जो देह दृश्य हमेशा आप देखते हैं, आपको लोग देखते रहे हैं, देह से कभी अलग आपने अपने को नहीं माना। आप याद करिए कि निद्रा में उस देह तक का ज्ञान नहीं होता
0: जी, उसका भी बोध खत्म
1: हो जाता है जी। तो ऐसे में और आप कहते हैं बड़ी अच्छी नींद आई, मुझे पता ही नहीं चला, मतलब देह के ज्ञान नहीं होने की प्रशंसा हम करते हैं निद्रा में और यहाँ देह को बनाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो मनुष्य की दशा देखिए कि वो इस अस्थिर जगत में कैसे स्थिरता को तलाश रहा है। निश्चित तौर पर ये एक प्रकार की विवेक शून्यता है। आप बुद्धिमान हो सकते हैं, जो विवेकवान पुरुष है वो कभी भी इस जगत को स्थाई नहीं देखेगा। राम जी ने तो इसको स्वप्न के मेले की तरह कहा। तो ऐसे में जिसका विवेक जाग जाएगा वहां यहाँ पर सब कुछ वो परिवर्तनशील देखेगा। आपकी अवस्थाएं बदल रही हैं, शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, रोज हमारी जागृत स्वप्न सुसुप्ति की अवस्था बदल रही है, हम सुसुप्ति से फिर जागते हैं लेकिन इस बदलाव को हम स्वीकार नहीं करते।
0: रोज देखने के बाद भी हमारी दृष्टि वो नहीं है जो श्री राम।
1: हाँ, हम मूर्छित हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, कह सकते हैं असावधान रहते हैं हमेशा कि हम लगातार बदलाव को अनुभव करने के बाद भी स्थायित्व की खोज या स्थायित्व की मान्यता में हम जकड़े हुए हैं कि हम इस जगत को चिरकाल तक, या जगत चिरकाल तक हो भी तो क्या हम चिरकाल तक हैं क्या, इस पर मतलब लगे रहते हैं। तो एक प्रकार की जो अज्ञानता का जो आवरण है जिसने हमें जीव बना रखा है, हमारे ब्रह्म स्वरूप को ढक रखा है, जैसे कह सकते हैं कि आकाश जैसे वो बादल से ढक जाए और उसकी नीलिमा कहीं चली जाए, जबकि नीलिमा कहीं गई नहीं है, वो बादल या धूल कणों का प्रवाह जो है उसको ढक रखा है। तो ऐसे ही जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं, लेकिन उसमें जो आवरण और विक्षेप जो उत्पन्न हो रहा है वो माया के प्रभाव से हो रहा है, अविद्या के प्रभाव से हो रहा है, और वो अविद्या अहंकार को जन्म दे करके इस संसार में स्थायित्व ढूंढने के लिए हमें विवश कर रही है और हम भटक रहे हैं।
0: भगवान श्री राम की जो दृष्टि है वो क्या देखती है, ये जो जगत है वो किस अवस्था को प्राप्त होता है?
1: अच्छा, ये जगत किस अवस्था को प्राप्त होता है? वो कहते हैं कि ये जगत जो है वो काठ, जल और तिनकों सहित सारा जगत विपरीत अवस्था को प्राप्त होता रहता है। मतलब वो कहते हैं कि विपरीत अवस्था को प्राप्त होता है, जहां आप सुख देखते हैं वहां पहुंचते ही आप फिर एक नए सुख की तलाश में निकल पड़ते हैं। अगर वहां सुख होता तो आप वहां सुखी हुए होते, न कि फिर सुख की तलाश में निकल गए होते। तो इसको संत लोग कहते हैं कि जैसे एक क्षितिज में आसमान और धरती का मिलना प्रतीत होता है, कहीं ये मिलन है नहीं, वैसे ही इस जगत में विपरीत अवस्थाओं का बोध होना चाहिए, न कि हम जगत में जो देख रहे हैं उसको देखना चाहिए। जो हम देख रहे हैं या जिसको हम नहीं देख रहे हैं, यानी नहीं देखने वाले में वो देखना होना चाहिए और देखने वाले में जो नहीं देख रहे हैं वो दिखना चाहिए हमको। यानी वो राम जी कह रहे हैं कि हमेशा विपरीत अवस्था का ही इसमें दर्शन होता है मुझे। तो जो भी विवेकवान पुरुष है वो जगत में विपरीत अवस्था की प्राप्ति हो रही है उसको देख रहा है। जवानी, बचपन, शरीर, द्रव्य संग्रह, ये सब के सब अनित्य और तरंगों की भांति निरंतर एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त हो रहे हैं। इस संसार में प्राणियों का जीवन हवा से भरे स्थान में रखे हुए दीपक के लौ की तरह चंचल है।
0: अच्छा, ऐसा देख रहे हैं?
1: ऐसा देख रहे हैं राम जी। हवा चल रही है और वहां दीपक के लौ की क्या स्थिति होगी? तो राम जी कहते हैं कि जो प्राणियों का जीवन है, जगत तो छोड़ें, जगत के पदार्थ तो छोड़ें, जीवन जो आपका है वो हवा से भरे हुए स्थान में दीपक के लौ जैसा है, वो कब बुझ जाएगा या कब उस लौ को हिलता डुलता रहेगा, इसका भी आपका नियंत्रण नहीं है उस पर, क्योंकि वो तो पूरा नियंत्रण वायु का है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में उसका सुख दुख है, वो प्रारब्ध वशात है, प्रारब्ध के नाते है, तो वो भी आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए आप देखिए, कभी विचार करिए कि आदमी अगर उसके नियंत्रण में सब कुछ होता तो इस जगत में तो कोई दुखी होता ही नहीं, कोई असंतोष में नहीं होता, सब शांत होते, लेकिन ऐसा है नहीं, सब अशांत हैं, सब दुखी हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ हमें सीखना चाहिए कि ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन ये बुद्धिपूर्वक हम नहीं जान सकते, ये तो अनुभव का विषय है। और जब तक आप क्रिया में नहीं उतरेंगे, जब तक आप अपने जीवन व्यवहार में उसका दर्शन नहीं करेंगे, जब तक आपको अपने जीवन का दर्शन दीपक के उस लौ की तरह नहीं दिखेगा जो हवा से व्याप्त जगत में हिलडुल रहा है या बुझ भी सकता है, तब तक इतना अनिश्चितता, जब तक इसका आपको बोध नहीं होगा, किसी के कहने और कहीं पढ़ लेने से, सुन लेने से नहीं होगा, ये तब होगा जब आपके अनुभव में आएगा।
0: अनुभव में ये बात आएगी, बिल्कुल, जैसे श्री राम के अनुभव में आई है। अच्छा, जीवन को वो देख रहे हैं कि हवा के बीच जलते एक दीपक की लौ की तरह जीवन है।
1: जी,
0: सांसारिक जो उत्सव है, जो वैभव है, उसे किस तरह से देखते हैं वो?
1: इसको राम जी कहते हैं कि हे महर्षि, उत्सव वैभव से सुशोभित होने वाले दिन, वे महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर संपत्तियां और वे बड़े बड़े कर्म, सब के सब दृष्टिपथ से दूर हो केवल स्मरण के विषय रह जाते हैं। राम जी कहते हैं कि ये जो दृष्टिपथ में जो ये उत्सव वैभव दिखाई दे रहा है, ये कल स्मरण का विषय बन जाएगा। आप देखें ना, हमारे पास सिर्फ स्मृतियां हैं। हम आज भी देखें तो खुशियों का जो हम कामना करते हैं वो पूर्व की स्मृतियों के आधार पर करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो भी हमारे स्मरण का विषय है। तो राम जी की दृष्टि कितनी पहनी है कि वो कह रहे हैं कि ये वैभव उत्सव जिसमें व्यक्ति जिसको पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, लगातार संघर्ष कर रहा है, तमाम तरह के दुख उठाता है, बेचैनियों को अपने जीवन में बुलाता है, वो सब स्मरण के विषय बन जाएंगे।
0: इस पर वो विचार नहीं करता। हर हाथ में मोबाइल है और एक एक पल को हम संग्रह की तरह संग्रह करना चाहते हैं, पलों का, है ना, इतनी स्मृतियां इकट्ठी करते हैं। लेकिन इस दृष्टि से हम कभी नहीं देखते कि एक साल बाद जब वो तस्वीरें सामने आती हैं, तो हम उस दृष्टि से नहीं देखते जैसे श्री राम देख रहे हैं।
1: हाँ, नहीं देख रहे। आप कभी देखिए, हम लोग जैसे जब जिस भी अवस्था में होते हैं, जैसे बच्चा है वो बड़ा होना चाहता है, जो बड़े हैं वो बचपन को याद कर रहे हैं, जो बूढ़े हैं वो जवानी के दिन याद कर रहे हैं। आप जिस भी दिन को याद करें, लेकिन जो वर्तमान में आपकी अवस्था है उस अवस्था को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। बुढ़ापे में जवानी के दिन को याद करके जो बुढ़ापे की सच्चाई है, क्या उससे आप अपने आप को बचा लेंगे? तो वो अंततः क्या है, आप स्मृतियों के विषय बने हुए हैं। आपने अपने जीवन को स्मृतियों का विषय बना दिया, स्मरण का विषय बना दिया, जिसको राम जी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि क्षण भर में सब अज्ञात स्थान को चले जाएंगे, लोगों के लिए केवल स्मरणीय बन जाएंगे। इसलिए हर उत्सव स्मरण का विषय बन जाता है। जी, और हम लोग मेमोरी को ताजा करते रहते हैं। जी,
0: एक साल पुरानी मेमोरी, अभी एक साल पहले की कुछ तस्वीरें,
1: जी,
0: उसे उस दृष्टि से हम नहीं देख पाते हैं। अच्छा, इसको जब मैं इसके पन्ने पलट रही थी योग वासिष्ठ के, तो मुझे एक जगह पढ़ने में आया कि संसार के जो सारे पदार्थ हैं वो विनाश के सूखे ईंधन की तरह हैं।
1: जी जी,
0: ये कहा।
1: हाँ,
0: तो क्या अर्थ है इसका?
1: आपने सुंदर कहा। राम जी कहते हैं स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी बड़वा नल के लिए सूखे ईंधन के समान हैं। सूखे ईंधन का मतलब कि विनाश की अग्नि जल रही है, जिसमें ये जगत के प्राणी पदार्थ सब नष्ट हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गीता में जब चर्चा होती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया,
0: जी,
1: तो जगत का वो विनाश दिखाया, जिस विनाश को देख करके अर्जुन युद्ध नहीं करने का संकल्प ले बैठे थे और कह रहे थे कि हम इस युद्ध से अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि इस विनाश को हम रोक लेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि विनाश की अग्नि में ये स्वर्ग से लेके पृथ्वी, वायु, आकाश, नदियां, दिशाएं, सब इसी अग्नि के सूखे ईंधन हैं जो उसको और बढ़ाएंगे। सूखा ईंधन का मतलब कि उस अग्नि को कोई शांत नहीं करेगा, बल्कि और प्रज्वलित करेगा और उसमें मतलब जलने में सहयोगी होगा। तो ये सब के सब वो कहते हैं कि विनाश के सूखे मतलब ईंधन हैं, और इससे सिर्फ विनाश ही हो सकता है। धन, भाई, बंधु, भृत्य वर्ग, मित्र और वैभव, ये सब के सब विनाश के भय से डरे हुए पुरुष के लिए निरस ही हैं। यानी जो पुरुष विनाश के भय से डरा हुआ हो, अब आप सोचिए उसको संसार का कौन सा संबंध प्रीतिकर मालूम होगा, चाहे वो भाई बंधु हो, कोई भी हो। अगर आपको विनाश का डर सता रहा हो, तो संसार के किस संबंधों के साथ आप खुशहाली महसूस कर सकते हैं या मना कर सकते हैं? तो राम जी कहते हैं कि ऐसा पुरुष खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब को विनाश के ईंधन के समान देखता है।
0: अच्छा शशिकांत जी, इतनी बार इस सत्य का उद्घाटन होता है, कितनी बार कहा जाता है, बहुत बार हम भी सुनते हैं, लेकिन दृष्टि उस तरह से खुलती नहीं है।
1: जी,
0: तो मनुष्य को मोह में किसने बांध रखा है?
1: जी, मनुष्य को मोह में जो डाल रखा है वो भ्रम ने डाल रखा है। राम जी कह रहे हैं कि मुनीश्वर, इस जगत में मनुष्य क्षण भर में ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है और क्षण भर में दरिद्र हो जाता है। आप देखें, यहां पर इशारा आपके मानसिक चिंतन का भी है कि जब कई बार आप अपने मन के अनुकूल स्थितियों को देखते हैं, तो उस समय आपको अपनी संपन्नता का बोध होता है, और वो सारी संपन्नता के बीच जो आपने इकट्ठा कर रखी है, जब आपके मन में विषाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपको दरिद्रता का बोध होता है कि आपने आप देखें, कभी कभी ऐसा होता है, मन आपके उन साधनों, जिन साधनों को बड़े प्रेम से आपने इकट्ठा किया है, उन्हीं के बीच उदास होता है, उन्हीं के बीच वो अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है कि आपने जीवन गंवा दिया। तो राम जी कहते हैं कि यहाँ क्षण भर में दरिद्र हो जाता है, वह क्षण भर में ही रोगी और क्षण भर में निरोग हो जाता है। किसी रोग के बारे में चिंता करके क्षण भर में आप उससे भयभीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रतिक्षण विपरीत अवस्था प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान मनुष्य मोहित हुए बिना रह सकता है? तो ये जो जगत का भ्रम है, जो क्षण भर में विपरीत अवस्था को प्राप्त कर रहा है, इसमें कौन है जो मोह से ग्रसित ना हो? तो ये जगत का जो भ्रम है, यही भ्रम आपको मोह में ग्रसित किए हुए है, और हम लोग उसी मोह के बंधन में बंध करके तमाम सारे दुखों को भोग रहे हैं।
0: जी।
1: मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ ये जागतिक भ्रम रूपी मोह है, जिसमें जीव तमाम तरह की बीमारियों, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, तीन तरह के ताप की बात की गई है, आज दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन तापों में वो जल रहा है, और इसका कारण है जगत रूपी भ्रम जो मोह में डाल करके व्यक्ति को इन व्याधियों में जला रहा है।
0: अच्छा, इसी में आगे मैंने पढ़ा कि लिखा हुआ है कि जगत के सारे पदार्थों की जो स्थिति है वो आकाश की स्थिति की तरह है।
1: जी,
0: इसे थोड़ा सा समझाएं आप।
1: हाँ, इसको वो कहते हैं राम जी कि आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है। आकाश देखिए पंच महाभूतों का प्रथम महाभूत है।
0: जी, जी।
1: कहते हैं कि आकाश के आकाशवत होना चाहिए। चिदाकाश शब्द भी आता है, चित्ताकाश की बात हम करते हैं। कहते हैं कि आकाश प्रथम महाभूत है और सारे महाभूतों में व्याप्त है वो, लेकिन इस जगत का कोई भी प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता। लेकिन राम जी का जो वैराग्य से पूर्ण दृष्टि है, वो दृष्टि देखिए कैसे वो देख रहे हैं। कहते हैं कि आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं। वो कहते हैं कि जैसे आकाश की स्थिति क्षण भर में आप देखेंगे तो आकाश में बादल आ जाएंगे, कभी बादलों से वो मुक्त हो जाएगा, क्षण भर में वहां उच्च स्वर में मेघों की गंभीर गर्जना होने लगेगी और क्षण में ही वह मूक की भांति नीरव हो जाएगा, क्षण में ही ताराओं की हरावली से अलंकृत और क्षण में ही सूर्य रूपी मणि से विभूषित हो जाएगा। तो ऐसे क्षण क्षण में बदलने वाले आकाश की स्थिति जो है, ऐसे ही यहाँ पदार्थ भी प्रतिक्षण बदल रहा है। तो हम नहीं सोचते क्यों क्यों बदल रहा है, क्योंकि उस पदार्थ में वो आकाश अधिकतम मात्रा में है, आकाश प्रथम तत्व है, तो उसकी उपस्थिति हर पदार्थ में है। तो जब आकाश में ये परिवर्तन हो रहा है तो फिर पदार्थ में क्यों नहीं होगा। तो इसलिए राम जी कहते हैं कि आकाश जैसी पदार्थों की भी स्थिति है कि जैसे आकाश में परिवर्तनशीलता है वैसे ही पदार्थों की भी परिवर्तनशीलता है।
0: अच्छा, इस संसार का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या देख रहे हैं भगवान श्री राम?
1: राम जी कहते हैं कि इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त इस सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता। यानी इस संसार में जीव को अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ भय मिलता है, यहाँ निर्भयता नहीं मिलती। ये अलग बात है कि हम भय को दूर करने के लिए भी संसार को ही इकट्ठा करते हैं, है ना। लेकिन राम जी कहते हैं कि जिसे आपने इकट्ठा किया है उसकी क्षणिक आयु है, वो क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। तो अंत में राम जी कहते हैं कि यहाँ कौन ऐसा पुरुष है जो भयभीत नहीं होगा, क्योंकि क्षण में स्थित और क्षण में नष्ट होने वाली ये आवागमन की परंपरा से युक्त है, ऐसी स्थिति में तो भय का होना स्वाभाविक है। तो इसलिए संसार सिर्फ व्यक्ति को भयभीत कर सकता है, भयमुक्त नहीं कर सकता। भयमुक्ति के लिए तो विवेक की आवश्यकता है। उस विवेक की दृष्टि से संसार के सत्य को, यानी उसकी क्षणभंगुरता या उसकी परिवर्तनशीलता या अस्थिरता
0: का मृत्यु को देखा जाए,
1: तब आप भय से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा संसार तो भयभीत ही करेगा।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: अच्छा, इस संसार में मनुष्य की स्थिति कैसी है, क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम?
1: इस संसार में मनुष्य की स्थिति को भगवान राम ऐसे बता रहे हैं कि भगवन, यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले कुछ और ही था और थेड़ो थोड़े दिनों बाद कुछ और हो जाता है। यहाँ सदा एक रूप रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई नहीं है। यहाँ कायर के द्वारा सूरवीर भी मारा जाता है और एक ही व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं। इस प्रकार इस संसार में अस्थिरता का दर्शन होता है। सारे जगत में विपरीत अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है, फिर यौवन की शोभा आती है और उस मद में आदमी सोचता है कि हम संसार में जो चाहें वो परिवर्तन ला सकते हैं, जबकि सच ये है कि वो अवस्था धीरे धीरे वो भी जा रही है और धीरे धीरे वृद्धावस्था। मुझे याद आता है एक प्रसंग, आपने ये कह दिया कि एक बूढ़े बाबा कहीं जा रहे थे तो कुछ युवा लोग जब उनको चलते हुए देखते थे, उनके पांव लड़खड़ा रहे थे, हाथ में एक लाठी थी, कमर झुकी हुई थी, तो उन्होंने एक उपहास बस उनको कहा कि बाबा ये तीर जो धनुष है ये धनुष कहाँ से लाए आप, यानी उनके शरीर को धनुष का जो वक्रोक्त किया उन्होंने, दंग कसा। तो बाबा जी ने कहा कि समय आने पर ये धनुष आपको भी मिल जाएगा, कभी आपकी तरह हम भी हुआ करते थे। तो जब भी विवेकवान पुरुष है, विवेकवान पुरुष ठोकर खा के नहीं गिरता, वो ठोकर देख के संभलता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और जो लोग असावधान होते हैं वो गिरने के बाद भी नहीं संभलते, वो बार बार गलतियों को दोहराते हैं,
0: बार बार ठोकर खाते
1: जी
0: हैं।
1: वो कहते हैं ना कि गलतियों को करना गलत बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना गलत बात है। तो एक गलती होती है उसके बाद आपको सावधान होना चाहिए। तो ऐसे ही ये जगत को जो देखने की दृष्टि है, अगर ये दृष्टि राम जी की जो दृष्टि हमें भी मिले तो हमारे वैराग्य को ये जागृत कर देगी और वैराग्य से विवेक उत्पन्न होता है, राग और द्वेष से विवेक उत्पन्न नहीं होता। राग और द्वेष हमेशा संसार में
2: वैराग्य चाहिए किसको?
1: हाँ, वैराग्य चाहिए
2: किसको? कहा जाए कि जी आपको विरागी होना चाहिए, वैराग्य होना
1: इसमें
2: चाहिए।
1: मैं एक चीज कहूंगा कि वैराग्य जिस रूप में हम समझते हैं क्या वो वैराग्य है? वो अर्थ है नहीं। यहाँ पर वैराग्य मतलब संसार से पलायन नहीं है, संसार में जीवन मुक्त की भांति विचरण करना है। राम जी को ये सारी बातें राम जी कह रहे हैं और वो जो गुरुजन हैं वो सुन रहे हैं, इस नाते कि राम जी के चित्त में ये जो उद्वेग उत्पन्न हुआ है विवेक से, ये शांत हो, फिर उनके अंदर जिज्ञासा खुद ही उत्पन्न होगी कि फिर किस तरीके से इस संसार में व्यवहार किया जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि भगवान श्री राम को भी तो 14 वर्ष में ये वैराग्य हुआ है।
1: हाँ हाँ,
2: लेकिन कहां उन्होंने जीवन से पलायन किया है?
1: नहीं किया है। वो जीवन जरूर वो इस समझ के लिए उन्होंने अपने को तब तक रोक रखा कर्म करने से जब तक उन्हें संसार के सत्य को बताने वाले लोग नहीं मिले। और इसलिए इन शास्त्रों की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि हम निश्चित ही संसार की उथल पुथल से, संसार की परिस्थितियों से जब तक हमारे अनुकूल हो रहा है तब तक हम आसानी से व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आती है हम अपने सारे कौशल को भूल जाते हैं और फिर हम किं कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो जाते हैं। तो फिर उस दौरान उसी संसार का जो सत्य है जिसको वैराग्य के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, वैराग्य कभी भी पलायन नहीं है। वैराग्य संसार के मतलब आभासी प्रभाव से आपको मुक्त करता है कि आप संसार के सत्य को जानें और सत्य को जान करके फिर यहाँ आप जो व्यवहार करें उस व्यवहार में राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति ना हो, शांत होकर के आप व्यवहार करें, न्यायाधीश की तरह आप यहाँ कार्य कर सकें। और न्यायाधीश कभी देखिए किसी पक्ष से प्रभावित नहीं होता, तो जब भी आपका चित्त किसी पक्ष से प्रभावित नहीं होगा तो समझिए कि वो विवेक के साथ खड़ा है।
2: तो वैराग्य की एक इच्छा हो, उसके लिए स्वीकार्यता हो, है ना, ये एक संदेश है।
1: जी जी।
2: अच्छा, इसमें एक जगह मैं पढ़ रही थी कि भगवान श्री राम ने कहा कि ये जो जगत है
1: जी
2: वो काल की क्रीड़ा स्थली है।
1: जी।
2: मैं चाहती हूँ कि इसे थोड़ा विस्तार से आप समझाएं हमारे सुनने वालों।
1: ये काल की क्रीड़ा स्थली राम जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में ये जगत काल की क्रीड़ा स्थली है, यहाँ पर काल की ही क्रीड़ा चल रही है, काल खेल रहा है और मनुष्य को लगता है कि वो व्यवहार कर रहा है, जबकि सच ये है कि आप अगर देखें तो आपके पास जो भी स्मरण है वो किसी समय का है, वो किसी समय में घटी एक घटना है जिसको आप याद कर रहे हैं, लेकिन आप समय भूल करके घटना देख रहे हैं, लेकिन जबकि ये सच ये है कि वो एक समय है, काल चक्र है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमने देखा वो काल चक्र है, जहां पर एक बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, काल की क्रीड़ा में वो धीरे धीरे जो हम देखते हैं वो बढ़ रहा है, वो युवान हो रहा है, लेकिन सच ये है कि अगर कोई काल की क्रीड़ा देखे तो वो मृत्यु के करीब जा रहा है। जिस मृत्यु से बचने के लिए वो जीवन भर प्रयास करता है, वो मृत्यु उसके करीब और मृत्यु उसके करीब जा रही है,
2: मतलब
1: मृत्यु के करीब हो जा रहा है।
2: स्वाभाविक यात्रा जो है जन्म के साथ ही मृत्यु की तरफ बढ़ने की है,
1: बढ़ने की है,
2: ये काल का खेल
1: हाँ,
2: है।
1: मृत्यु का मतलब ये हुआ कि जो चीज उत्पन्न हुई है वो नष्ट होने की तरफ और नष्ट करने वाली चीज है उसकी तरफ बढ़ रही है लगातार, लेकिन एक भ्रम इसमें हो रहा है कि जहां व्यक्ति उसमें जीवन को देख रहा है। इसी को कई संतों ने कहा भी है, सर्प के मुंह में एक मेढक है और वो काल की क्रीड़ा में माने काल के गाल में खुदी है, लेकिन वो अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी और जीव पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। वो सोचता है कि मैं अपने जीवन को बचा रहा हूं, जबकि उसका जीवन काल के अधीन है। तो कालाधीन सब कुछ है, इसीलिए इसको काल की क्रीड़ा स्थली कही गई। और ये विवेक से ही समझ में माने विवेक से समझ में नहीं आएगा, विवेक से आप इसे देख पाएंगे। और बाकी जो बुद्धि है तो बुद्धि में तो संसार की सारी क्रियाएं लीला चलेगी, उसमें आनंद उत्सव मनेगा, लेकिन आनंद उत्सव भी स्मरण का विषय क्षण भर में बन जाता है। ये राम जैसा कोई विवेकवान पुरुष ही देख पाएगा।
2: जी, जी।
1: और जब हम लोग किसी उत्सव में होते तो हम तो उत्सव को कभी भी स्मरण का विषय नहीं समझते, वो सोचते हैं कि ये उत्सव ही जिंदगी है, इसी को जी लो।
2: जी, जी, जी। अच्छा, आपने कहा कि सब कुछ काल के अधीन है,
1: जी,
2: तो मुझे याद आया कि अक्सर एक शब्द हम सुनते हैं, काल से परे, समय से परे, ये क्या अवधारणा है?
1: हाँ, समय से परे बस एक ही चीज है उसको, जिसको कालजयी कहा गया।
2: हाँ,
1: वो कालजयी है, वो चैतन्य स्वरूप जिसमें करीब कभी परिवर्तन नहीं हुआ, जो जन्म और मृत्यु से भी परे है, क्योंकि जन्म जिसका हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो तो काल के अधीन है। जन्म लेने वाला शरीर काल के अधीन है और वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जन्म लेने वाले शरीर में जो शरीरी है, जिसको मतलब कहते हैं जो चेतना है, जिसको आत्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो सुख की राशि है, जो चैतन्य है, मल से मुक्त है, अमल है, उसमें कभी भी मल नहीं आता, मलिन नहीं होती, तो वो जो है वो कालजयी है, वो काल उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो काल के अधीन जन्म और मृत्यु के चक्र में चलने वाला जो प्रवाह है उस पर काल क्रीड़ा कर सकता है, लेकिन कालजयी पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। यही भारतीय चिंतन का मूल आधार रहा है, और राम जी को ये लोग आगे उपदेश करेंगे कि आपका वास्तविक स्वरूप जो है वो कालजयी है, वो काल की क्रीड़ा से प्रभावित होने वाला नहीं है, काल की क्रीड़ा से प्रभावित देह और मन हो रहा है, अहंकार हो रहा है।
2: बहुत ही सुंदर। अच्छा, तो आज योग संवाद कार्यक्रम में हमने जगत के पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता पर चर्चा की।
1: जी,
2: तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको चलते चलते एक संदेश आप दे दें।
1: मैं चलते चलते ये संदेश दूंगा, हम काल की क्रीड़ा को देखें, और किसी भी जैसे खेल होता है ना, खेल को खेल की भावना से खेलते हैं, लेकिन खेल में हम हार जीत जब ठान लेते हैं तो खेल की भावना समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही ये जीवन एक खेल है जिसको काल खेल रहा है, जिसमें सुख दुख, हर्ष विषाद, हानि लाभ, ये सब आ रहा है। ये आपके हाथ की चीज नहीं है, जिसको गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर पंक्ति में लिखा है, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयस विधिहात। और इसी छह को हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये काल के अधीन है, काल इसके लिए क्रीड़ा कर रहा है। यश भी काल के अधीन है, अपयस भी काल के अधीन है, इसलिए निश्चिंत होकर के इस लीला का आनंद लिया जाए, और निश्चिंतता जिसको हो सकती है वो अपने चैतन्य स्वरूप का चिंतन करने या उसके सानिध्य से हो सकती है, जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। वो कालों का काल महाकाल है, काल भी उसके अधीन है, काल की अधीनता वो कभी स्वीकार नहीं करता, और जो अधीन है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं पराधीन सपनों सुख नाही, तो काल की अधीनता में हम सुख की खोज न करें। जो सुख का स्वरूप है हमारा, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी चैतन्य तत्व का चिंतन करें, और उसके लिए निरंतर सत्संग हो, ताकि उससे हमारा विवेक जगे, क्योंकि गोस्वामी जी फिर कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये राम जी की कृपा से हम लोग योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण पर चिंतन कर रहे हैं, तो उनकी कृपा है, और उनकी कृपा को हम अनुभव करें, उनकी दृष्टि से अपने संसार के जो बादल हैं, जहां पर हम कभी मतलब उद्वेलित होते हैं, उसको छांटें और अपने आनंद स्वरूप के साथ जी।
2: अच्छा, योग संवाद कार्यक्रम में जब हमने चर्चा शुरू की थी, इसके पहले दूसरे तीसरे अंक में, तो उस योग की बात हो रही थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अक्सर लोग याद करते हैं, और ये जो हमारी चर्चा है वो गीता से होते हुए योग वासिष्ठ तक पहुंची है। तो हमारे सुनने वालों से आप क्या कहेंगे कि योग जो विषय है, बहुत संक्षेप में आप कह दें कि कहाँ काम करना है हमें, अगर हम योग को साधना चाहते हैं।
1: हम देखिए, योग का मतलब होता है कि मतलब इसमें समत्व की बात योग करता है, कि जहां पर चित्त की जो विषमता है उस विषमता से हम अपने चित्त को मुक्त कर सकें। समत्वम योग उच्चते भगवान कृष्ण कहते हैं, और समत्वम योग उच्चते तभी हो सकता है जब आप योगस्थ हो के कर्म करें। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध है सिद्धो समो भूत्वा, सिद्ध और असिद्धि में आप सम हो, तब जाकर के आप योग की स्थिति में आएंगे। योग शरीर की शुद्धि या कह सकते हैं मन की शुद्धि तो है ही, लेकिन जो योग का मूल लक्ष्य है वो समत्व बुद्धि के साथ युक्त होना है। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते की बात है, योग कर्म सुकौशलम। तो कर्म की कुशलता है, जिस कुशलता के लिए राम जी को ये पूरा योग वासिष्ठ का उपदेश दिया जाएगा। और ऐसे में आप देखिए, इन्होंने कहा कि काल की क्रीड़ा स्थली है, तो ये आप योग से समझ सकें कि ये जगत में जो भी घट रहा है आप उसमें हिस्सेदार बने, लेकिन आप उसके कभी कर्ता मत बने। कर्ता बनेंगे तो आप समत्व बुद्धि के साथ नहीं होंगे, आपकी बुद्धि विषमता का शिकार हो जाएगी, और बुद्धि को जड़ भी कहा गया है, तो बुद्धि युक्त होने का मतलब समत्व से बुद्धि से युक्त होना। तो ये पूरी जो साधना है वो समत्व बुद्धि से युक्त होने की है। और मैं अपने श्रोताओं से कहूंगा कि इन पूरी चर्चा में आप इस तत्व को पकड़ने की चेष्टा करिए कि किस तरीके से वो समत्व बुद्धि तक ले जाने का प्रयास है।
2: जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की शशिकांत जी, और हम चाहते हैं कि ये जो ग्रंथ है, जो अनमोल ग्रंथ है योग वशिष्ठ, ये खुला रहे और इसी तरह आगे भी हम चर्चा जारी रखें अपनी। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और इतनी सुंदर व्याख्या की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की जगत के पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और इस चर्चा में आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: एक निमाड़ की माटी की जो बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है गणगौर, ये गीत प्रदेश तो प्रदेश, देश के अन्य हिस्सों में मेरी आवाज में सुना जाता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलो गणगौर मैया की
1: जय हो।

0: बोलो गणगौर मैया की
1: जय हो।
2: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप में, जहां रविवार को नृत्यांजलि कार्यक्रम के तहत प्रस्तुतियां दी गईं।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में।
1: अभिनय प्रस्तुति नवधा भक्ति का प्रदर्शन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुति की परिकल्पना से लेकर नृत्य संरचना एवं संयोजन करने का कार्य डॉक्टर श्रीमती सुषमा मिश्रा द्वारा किया गया।
2: मृत्यु कोई भय का विषय नहीं, यह केवल देह का परिवर्तन है, परंतु जीव को मुक्ति तभी मिलती है जब वो परब्रह्म की कथा सुनता है। मुझे हरी कथा सुननी है।

इस जगत के आदि हैं नारायण। उनकी कथा सुनने से ही जीव अपने बंधनों से मुक्त होता है। गुरुदेव अब कोई भय नहीं, सब कुछ शांत और शीतल है। तुमने श्रवण भक्ति का फल पा लिया राजन, अब मृत्यु भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती।

राजा परीक्षित ने कथा श्रवण से मोक्ष पाया। भक्ति का दूसरा स्वरूप है कीर्तन। जब जिह्वा स्वयं हरि नाम गाती है तो वो मनुष्य को देवत्व तक पहुंचा देती है। ऐसी ही है बालक नारद की कथा, जो कीर्तन से देवर्षि बने।

वत्स, भोजन कर लो, फिर थोड़ी देर विश्राम कर लेना। गुरुदेव, आपके चरणों में बैठकर हरि नाम सुनना, यही तो मेरा विश्राम है।

बालक था, पर हृदय भक्ति से भरा हुआ। ऋषि जब कीर्तन करते तब बालक नारद मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहता और

0: तुमने कीर्तन की अग्नि से चित्त को निर्मल कर लिया है, अब तुम देवर्षि कहलाओगे।
1: प्रभु मुझे आपकी वंदना जगत

इस प्रकार बालक नारद ने कीर्तन भक्ति से देवर्षि पद पाया। भक्ति का दूसरा द्वार यही है, जिह्वा का हरि नाम में डूब जाना। भक्ति का तीसरा रूप है स्मरण। जब प्राण संकट में हो, जब बुद्धि काम ना करे, जब आशा के दीप बुझ जाए, तब केवल स्मरण ही मैया पार लगाता है। गजेंद्र मोक्ष कथा। गजेंद्र हाथियों में श्रेष्ठ, शांत,

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, ये सुनते हैं परिक्रमा।

हॉलीवुड फिल्म में स्पेस स्टेशन की तरह भोपाल में भी नज़ारा देखा जा सकेगा। सैटेलाइट अंतरिक्ष यान का अनुभव और चांद और मंगल की पथरीली जमीन पर एक परिसर में देखी जा सकेगी। आंचलिक विज्ञान केंद्र में हाईटेक अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा तैयार हुई है। मुंबई के बाद ये देश में अपनी तरह की पहली, या यूं कहें कि भोपाल में पहली लेकिन मुंबई के बाद देश में अपनी तरह की दूसरी दीर्घा होगी। तकनीक के सहारे अंतरिक्ष की जादुई दुनिया यहाँ देखी जा सकेगी। साइंस सेंटर के पदाधिकारियों के मुताबिक दीर्घा के भीतर कदम रखते ही चारों तरफ गहरा अंधेरा और उसमें टिमटिमाते अनगिनत तारों और तैरती हुई आकाशगंगाओं का नज़ारा दिखेगा।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाट्य शास्त्र अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र में चल रही 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला के छठे दिन केरल के रंग विशेषज्ञ ग्रीशन ने प्रतिभागियों को अभिनय, मंचीय संरचना, संवाद प्रस्तुति और भाव अभिव्यक्ति का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान महाकवि श्री हर्ष रचित नागानंद नाटक के पात्रों के लिए कास्टिंग एक्सरसाइज भी हुई। मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं इसमें, मसलन महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू, कर्नाटक, केरल, असम। भोपाल परिसर के निदेशक ने बताया कि 27 जुलाई को नागानंद का मंचन होगा। वहीं महाकवि कालिदास जयंती और वंदे मातरम राष्ट्रगीत सार्ध शती के उपलक्ष में राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2026 के तहत देशभक्ति पर आधारित नाटक आजाद बुलंदी भगत सिंह का मंचन किया जाएगा। यह प्रस्तुति 15 जुलाई को रविंद्र भवन में होगी। कार्यक्रम में प्रवेश सभी दर्शकों के लिए निःशुल्क होगा। नाट्य प्रस्तुति का आयोजन संगीत नाटक अकादमी तथा संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश के सहयोग से किया जा रहा है। नाटक की प्रस्तुति भोपाल की रंग माध्यम नाट्य संस्था करेगी। हिंदी नाट्य प्रस्तुति में शहीद आजम भगत सिंह के विचारों, संघर्ष, देशभक्ति तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को मंच पर जीवंत किया जाएगा। ग्रीन एडवेंचर यूथ एसोसिएशन ने बैतूल की सतपुड़ा पर्वतमाला में ट्राइब ट्रेल एक्सपीडिशन आयोजित किया। भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर हुए 12 किलोमीटर लंबे ट्रैक में 28 ट्रेकर्स ने घने जंगलों, माचना नदी, झरनों और खड़ी पहाड़ी चढ़ाइयों के बीच ट्रैक किया। अभियान सुबह शुरू हुआ। बताया गया कि ट्रैक से पहले सुरक्षा और टीम वर्क की जानकारी दी गई प्रतिभागियों को। प्रतिभागियों ने स्थानीय आदिवासी संस्कृति को भी जाना। शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानने के लिए आयोजित हेरिटेज वॉक रानी कमलापति महल से शुरू होकर गौहर महल में संपन्न हुई। हेरिटेज एक्सपर्ट शहर शाह हुसैन ने प्रतिभागियों को भोपाल के इतिहास, स्थापत्य, संस्कृति और प्रकृति से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी। महल परिसर में फ्लावर हंटिंग वर्कशॉप भी हुई। वॉक के दौरान VIP रोड और बड़े तालाब पर राजा भोज की जल प्रबंधन प्रणाली के ऐतिहासिक महत्व को समझाया गया। गौहर महल में भोपाल की चारों बेगमों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और शहर विकास में योगदान पर चर्चा हुई। साथ ही पटियाबाजी और पतोलेबाजी की सांस्कृतिक परंपरा से भी परिचित कराया गया।

कोई लाइफस्टाइल से परेशान है तो किसी को पढ़ाई और किसी को करियर की चिंता। इस तनाव को कम करने के लिए कोटरा सुल्तानाबाद में 150 लोग एक्सपर्ट चिकित्सकों से मिले। बीइंग माइंडफुल लिविंग फाउंडेशन एवं योग अनुसंधान के जरिए शिविर का आयोजन किया गया था। परामर्श के दौरान अवसाद, तीव्र तनाव, चिंता, पारिवारिक व वैवाहिक विवाद, भावनात्मक उतार चढ़ाव और बच्चों के व्यवहार से जुड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक सलाह दी गई। ये बताया गया कि अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो काम बेहतर होगा। आचार्य धनंजय वर्मा सज्जन पीठ द्वारा मंगलवार को आचार्य धनंजय वर्मा स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन होगा। इसमें केरल के कवि प्रोफेसर ए अरविंदाक्षन को सम्मानित किया गया। सृजन पीठ के पदाधिकारियों के अनुसार आयोजन शाम 5 बजे से शास्त्री नगर स्थित मायाराम सृजन भवन में किया जाएगा। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रेखी सेंटर में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। द जॉयफुल एजुकेटर विषय पर होने वाले 3 दिन के आयोजन की शुरुआत 22 जुलाई से होगी। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय की नालंदा लाइब्रेरी में के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा। इसका उद्देश्य आनंदपूर्ण शिक्षण पद्धतियों से छात्रों का मानसिक विकास करना है। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से, जो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद की खुली हवाओं में आजादी की सांस ले रही मैं तारीख और हम सब देशवासी न जाने किन किन शख्सियतों के ऋणी हैं, न जाने कितने ही जीवनों के बलिदान का आभार हमें अभी व्यक्त करना है।
2: अरे तारीख, अभी कार्यक्रम शुरू करना है भाई, और तुम आभार व्यक्त कर रही हो।
1: अरे आप समय पर उपस्थित हो तो जान पाए ना कि मैं क्या कह रही हूँ।
2: देखो भाई, इतिहास का तो अपना एक समय निश्चित होता जाता है।
1: जी हाँ, पर उसकी सारी गवाहियाँ तो तारीख ही देती है।
2: पर तारीख तो बदलती रहती है।
1: अरे इतिहास न श्रोताओं को नमस्कार, न दुआ सलाम, और अपने पथ से भटक कर अपनी बातें करने में लग गए हम लोग।
2: माफ कीजिए श्रोताओं, आप सभी को मेरा और मेरी साथी का नमस्कार। तो तारीख जी, आप अपनी बात जारी रखिए, मैं तैयार हूँ।
1: इतिहास में अपने श्रोताओं से बात करने जा रही थी महाराष्ट्र के सांगली जिले में जन्मे श्री बाबूराव कोकाटे जी के बारे में। सांगली जिले के छोटे से गांव पदवलवाड़ी में जन्मे बाबूराव के पिता का नाम श्री धोंधी कोकाटे था।
2: तारीख, मैं सोचता हूँ कि ये आदिवासी विद्रोहों का असर ही तो रहा होगा ना, जो इतने वर्षों के बाद तक भी इन छोटे छोटे दूर दराज के गाँव में आजादी की अलग बरकरार रही।
1: बिल्कुल इतिहास, देश में चारों ओर से बिना रुके कण कण में जो आजादी के शोले भड़कते रहे, उन्हीं ने तो बड़े बड़े विद्रोहों को जन्म दिया।
2: असल में असंतोष तो आदिवासियों में भी तब से ही पैदा हो गया था, जिसे हम भारत में ब्रिटिश शासन का प्रथम युग यानी कि वाणिज्यिक पूंजी का युग कहते हैं, जो लगभग 1757 से लेकर 1813 तक का रहा।
1: इतिहास, इस युग में जो आदिवासियों में विद्रोह की चिंगारी जली, उसका समय सन 1793 के आसपास का रहा होगा, और जिसका कारण मूल रूप से किसानों में असंतोष रहा। 1794 में भी तो बंगाल में किसानों के हक में देवी चौधरानी जैसे सशक्त आंदोलन उल्लेखनीय हैं, जहां से स्वाधीनता आंदोलनों को ओम वंदे मातरम का नारा मिला।

0: ब्रिटिश शासन का दूसरा युग औद्योगिक पूंजी और तृतीय युग वित्तीय या साम्राज्यवादी पूंजी का युग कहलाता है। तारीख भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना महज एक घटना नहीं थी, बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के औपनिवेशीकरण और धीरे धीरे उस समाज को दबाते रहने की लंबी प्रक्रिया का नतीजा थी।
1: बिल्कुल इतिहास, इस प्रक्रिया ने हर स्तर पर भारतीय समाज में असंतोष और क्षोभ को जन्म दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों को लगातार छिटपुट प्रतिरोधों का सामना भी करना पड़ा। खैर, आदिवासी विद्रोहों की बात को हम थोड़ा विराम देंगे, क्योंकि आज हमें अपने श्रोताओं को सांगली जिले के क्रांतिकारी श्री बाबूराव कोकाटे के बारे में बताना है।
0: बाबूराव कोकाटे का संबंध मूल रूप से अगस्त क्रांति से जुड़ा रहा। बाबूराव ने क्रांति में सक्रिय रहने के लिए इंटर की पढ़ाई को भी तिलांजलि दे दी।
1: बाबूराव जी ने 1942 की आजादी की क्रांति में अपने प्रांत में सक्रिय और महत्वपूर्ण भागीदारी की, परंतु इस क्रांति को कुचल दिया गया। पर बाबूराव के मन में आग अभी भी ज्वलंत थी।
0: 1942 के आंदोलन का दमन हो जाने के बाद भी बाबूराव भूमिगत क्रांतिकारियों से संबंध बनाए हुए थे। वे इन क्रांतिकारियों की यथासंभव सहायता करने के लिए बराबर उनके संपर्क में रहते थे।

0: इन्हीं की तरह हजारों क्रांतिकारी हमारे देश के छोटे से छोटे प्रांत में भी अपना जाल बिछाए हुए थे, ताकि मैदान में खुलकर लड़ने वालों का हौसला कम ना हो, उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने में कोई अड़चन ना आए।
1: हाँ तारीख, ये तो दुनिया में हुई हर एक क्रांति का सच रहा है। जन सामान्य यानी आम जनता का सहयोग जो क्रांतिकारियों को अपना कार्य सुचारू रूप से करने में मदद करता है, और आंदोलनकारियों में ये एहसास जीवित रहता है कि वो हमारे ही लिए तो ये जंग लड़ रहे हैं।
0: तो हमारे बाबूराव भी क्रांतिकारियों की हर संभव मदद किया करते थे, जिसमें उनकी जान को भी बहुत जोखिम था, पर वे कभी अपने फर्ज से डगमगाए नहीं।
1: क्रांतिकारियों के छिपने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाना, उनको खाने पीने दवा आदि की मदद पहुंचाना, क्रांतिकारियों तक हथियार आदि पहुंचाना, और इस सब के साथ क्रांतिकारियों की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने तक में वे कभी पीछे नहीं हटे।

0: बस अपने काम में पूरी तरह मगन बाबूराव कोकाटे इधर कब अंग्रेजों की नजर में खटक गए उन्हें पता ही नहीं चला। पुलिस ने अब लगातार उन पर नजर रखना और उनका पीछा करना शुरू कर दिया था।
1: और ऐसे ही एक दिन जब बाबूराव रात के अंधेरे में चुपचाप सांगली से बाहर निकल रहा था, एक पुलिस वाले ने उसे ताड़ लिया।
0: इससे पहले के बाबूराव कुछ समझ पाते, पुलिस वाले ने उन पर दनादन गोलियों से वार कर दिया।
1: अपने ऊपर होने वाले आक्रमण से अनजान बाबूराव ने वहीं अपनी अंतिम सांस ली और क्रांति को समर्पित एक और निष्ठावान को देश ने खो दिया।

0: बाबूराव जी को हम सब का नमन है और तारीख हम ये न भूलें कि साथ ही साथ आज हम अपने श्रोताओं के लिए भारत में आदिवासी विद्रोह पर भी कुछ प्रकाश डाल रहे थे।
1: जरूर इतिहास। आदिवासी विद्रोह को हमारे एक इतिहासकार ने तीन हिस्सों में बांटा है, 1795 से 1860, 1860 से 1920 तक का और 1920 से 1947 तक का समय। 19वीं सदी में आदिवासी विद्रोहियों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है जिसका संबंध आदिवासियों की जीवन प्रणाली से जोड़ा जा सकता है।
0: जंगलों से आदिवासियों के गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते थे। खेती करने का उनका अपना तरीका था। जंगल की उपजों पर उनका जीवन आधारित था और इन लघु वनोपजों को इकट्ठा करके उनका जीवन यापन आसान हो जाता था। पर ब्रिटिश शासन ने इन सब पर बंदिशें लगा दी और आगे चलकर इन आदिवासियों को ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के शोषण का शिकार होना पड़ा।
1: मैं आदिवासियों की खास बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी इतिहास, कि विद्रोही आदिवासी सारे बाहरी लोगों को कतई अपना दुश्मन नहीं मानते थे, खासकर ऐसे लोगों को जो उनके यहाँ आकर बस गए हों, गरीब हों और उनके गांवों की अर्थव्यवस्था में जिनकी भूमिका सहायक रही हो।
0: जानती हो तारीख, 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश या सामंती शासन के खिलाफ करीब 75 विद्रोह आम जनता ने किए। इनमें से एक तिहाई से ज्यादा विद्रोह आदिवासियों के थे।
1: आदिवासियों ने अपने अत्यधिक सीमित साधनों के बल पर ही अत्यंत शक्तिशाली और साधन संपन्न ब्रिटिश शासन से कई बार लंबे संघर्ष किए जो दशकों तक चले।
0: तारीख, आज तो हमें बाबूराव जी के योगदान और आदिवासी विद्रोहों की बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा, अब तो श्रोताओं से आज्ञा लेने का वक्त हो गया है।
1: तो श्रोताओं, इतिहास और मैं अब आपसे इजाजत चाहेंगे ताकि कल फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों और उससे जुड़े लोगों की रोचक कथाएं आपके साथ बांट सके। तब तक के लिए नमस्कार।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, फिर आपसे मुलाकात करेंगे।
3: तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पीटर पॉप, लंदन का वो बंगाली विद्वान जिसे इतिहास ने भुला दिया। सन 1616 के विंटर सोलिस्टस यानी शीतकालीन संक्रांति के दिन, जिस वर्ष विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी, लंदन शहर के सेंट डोनियस चर्च की ओर एक असामान्य भीड़ उमड़ पड़ी। वे वहां किसी नाटक के लिए नहीं, बल्कि बंगाल की खाड़ी से आए एक युवा लड़के को ब्रिटेन में बपतिस्मा लेने वाला पहला भारतीय बनते देखने के लिए जमा हुए थे। स्वयं राजा जेम्स ने लड़के के लिए नया नाम चुना, पेट्रस पापा, जिसे पीटर पॉप के नाम से जाना गया। यह समारोह एक भव्य तमाशा था जिसमें प्रिवी काउंसिल, लॉर्ड मेयर और इतनी बड़ी भीड़ शामिल थी कि चर्च की दीवारें तक भर गई थी। ये लड़का केवल एक धर्म परिवर्तित व्यक्ति नहीं था, वो एक साम्राज्यवादी प्रयोग था। रेवरेंट पैट्रिक कॉपलैंड द्वारा लंदन लाए गए पीटर का उद्देश्य चर्च का एक उपकरण बनना था, अंग्रेजी सभ्यता के फलों का एक जीवित प्रमाण। उनकी बुद्धि असाधारण साबित हुई। एक वर्ष से भी कम समय में इस युवक को अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सिखा दिया गया और उन्होंने रोमन और सेक्रेटरी दोनों तरह की लेखन शैलियों में महारत हासिल कर ली। बाद के विक्टोरियन पाठकों ने उनके आगमन की तुलना शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट के पात्र कैलिबन से की। एक ऐसा अजीब जीव जिसे देखने के लिए जिज्ञासु जनता चांदी के 10 सिक्के तक खर्च कर सकती थी। हालांकि पीटर पॉप का लंदन प्रवास क्षणभंगुर था। 1617 में वे रॉयल जेम्स नामक जहाज पर सवार होकर भारत के लिए निकल पड़े। उनके कंधों पर उस चट्टान के समान भारी जिम्मेदारी थी जिस पर चर्च ऑफ इंग्लैंड अपनी पूर्वी सफलताओं के स्मारकों का निर्माण करना चाहता था। वे अपने पीछे लैटिन और अंग्रेजी में लिखे पत्र

0: छोड़ गए, लेकिन एक बार घर लौटने के बाद राजा को चकित करने वाला वो लड़का ऐतिहासिक रिकॉर्ड से गायब हो गया। इतिहास ने अंततः उस प्रतिभाशाली विद्वान का सुराग खो दिया और वे लंदन के वृत्तांतों में केवल एक धुंधली याद बनकर रह गए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, वो विषय है नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम। और इस विषय पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं निहारिका जी, जो NIWCYD बचपन के साथ कार्य कर रही हैं इस फील्ड में। उनसे जानेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आई। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: तो निहारिका जी, हम बात कर रहे हैं नशे का जो दुरुपयोग है देश में और इसकी रोकथाम है, तस्करी, इस फील्ड पर आप बहुत समय से काम कर रही हैं, तो आपकी यात्रा कब प्रारंभ हुई, आप इससे कैसे जुड़ी?
1: लगभग 12 वर्षों से मैं समाज सेवी के रूप में भोपाल शहर में काम कर रही हूँ और भोपाल शहर के ऐसे समुदाय में काम कर रही हूँ जिन्हें हम आमतौर पर बस्ती क्षेत्र या झुग्गी झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। हालांकि शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आम भाषा में उनका उपयोग किया जाता है। तो खास तौर पर वहाँ के समुदाय में रहने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं और परिवार है, उनके साथ मैं लगातार काम कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने देखा कई बार बहुत सारे जो बच्चे और महिलाएं स्कूल से बाहर होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का जब वो सामना करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण नज़र आता है वो है नशा। नशे के कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं या महिलाओं के साथ में जो हिंसा है इस वजह से होती है। और उसका कारण ये भी है क्योंकि वो आसानी से उस जगह पे उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा कारण जो है मुझे समझ में आया। तो फिर हमने इस पे काम करने की शुरुआत की कि समस्याओं के पीछे की जो वजह है नशा, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उस पे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझाना ज़रूरी है कि नशा हमारे जीवन में किस तरीके से परेशानियाँ लेकर आता है।
0: आप इसमें काम कर रही, नशा इतने आसानी से बच्चों को या जो नशा करने वाले उनको बड़े आसानी से मिल रहा है बाजार
1: में? जी हाँ, बिल्कुल।
0: इसके पीछे आप क्या मानती, किसकी खामी है और इतने आसानी से कैसे उपलब्ध है, जबकि सरकार इस पे रोक लगाती खासी?
1: सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए, खासतौर पे मॉनिटरिंग का जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है वो व्यवस्था में अभी कमी है। हम उसे मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि आसानी से अवैध तरीके से जिन जगहों पर बिक रहा है, और स्लम की यदि हम बात करें तो बहुत ही घनी बस्ती क्षेत्र होता है जहाँ पर थोड़ा ढूंढना भी शायद मुश्किल है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए जो उपलब्धता है हमें उस पर मॉनिटरिंग पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। और उन तक जो पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं वो चैनल भी स्ट्रांग होगा। तो यदि हम जो हमारा तंत्र है उसको मजबूत करके जमीनी स्तर पर यदि काम करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है और बहुत ही आसानी से यदि बच्चों को मिल रहा है तो ये हमारे लिए भी कई बार सवाल खड़े करता है।
0: बिल्कुल, ये बात जी, एक बात आती है कि एक तो जब आप इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं तो जो लोग ये नशे का व्यापार कर रहे हैं, क्या वो कोई टारगेट लेकर चलते हैं कि वो किन लोगों को नशे में लिप्त करेंगे, बच्चों को ही या युवा वर्ग को या लड़कियों को, ऐसा कुछ आपने स्पेसिफिक देखा, या सभी लोग इसमें लिप्त होते हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये व्यापार कर रहे हैं क्या उनका कोई टारगेटेड ग्रुप है?
1: अधिकांश यदि मैं जिन एरिया में काम करती हूँ वहाँ की बात करूँ, क्योंकि अधिकतर जो जुड़ाव होता है वो बच्चों और युवाओं के साथ में होता है, यदि मैं उनके अनुभवों की बात करूँ तो जो मुझे समझ में आया है कि बच्चे उनके लिए एक बहुत आसान टारगेट है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक तो बच्चों को प्रभावित करना बहुत आसान होता है, और दूसरा क्योंकि आज जो बच्चे हैं उनकी बहुत ख्वाहिशें सपने हैं, तो कहीं उसका लालच देना और उनको अपने काबू में करना बहुत आसान है। और हम देखें कि बच्चे जो हैं इन, तो उनसे श्रम कराना बहुत आसान होता है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है, और क्योंकि बच्चे का जो जुड़ाव है उनके समुदाय स्तर पर बहुत ज़्यादा होता है, एक विश्वसनीय भी होता है। तो जो मुझे समझ में है कि खासतौर युवा लड़के जो हैं इसमें बहुत शामिल हैं और वो नशे के आदि भी हैं, तो शायद उन्हें लालच देके अपने साथ में जोड़ना और उनसे काम करवाना, ये उनके लिए बहुत आसान मुझे लगता है जो है। क्योंकि अभी कुछ युवाओं के साथ जब मेरी बातचीत हुआ, तो जब मैंने उनको जिस हालत में देखा तो बहुत ज़्यादा नशा करते हुए, फिर वॉयलेंस करते हुए, तो थोड़ा समय लिया उनसे बात करने का। जब गहरी उनसे बातचीत हुई तो समझ में आया कि घर में क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती हैं, तो कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हम किससे जाके अपनी बात कहें। तो आजकल की जो युवा जनरेशन है, लगता है कि यदि हमको अपने स्ट्रेस को दूर करना है तो नशा एक सुकून देने वाली जगह है, या नशा जो है बहुत हमको आराम देगा, तो वहाँ से बच्चे शुरुआत करते हैं, जुड़ते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसे चैनल से जुड़ते हैं और उनका उपयोग हो रहा है ये वो समझ नहीं पाते हैं। हाल ही में एक बच्चे ने सुसाइड अटैम्प किया, वो नशा मुक्ति केंद्र में ही उसने सुसाइड अटैम्प किया क्योंकि उसको नशे की बहुत लत थी। जब आपके हाथ में नशा आता है तो आप सोचते हैं कि मैं इसे ट्राई करूँ, कोशिश कर लूँ, क्योंकि जिज्ञासु तो बहुत होते हैं युवा साथी। तो उसने शुरुआत जस्ट एक शौक के तौर पर टेस्ट करने के लिए किया और धीरे धीरे उसकी आदत लगी। जब उसे नहीं मिल पाया तो उसकी लत से फिर उसने सुसाइड अटैम्प किया। तो युवा जो है जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, शौक के तौर पर जुड़ते हैं, फिर स्ट्रेस को रिलीज करना अपना, और फिर धीरे धीरे वो उस चैनल में शामिल हो जाते हैं।
0: दो तीन चीजें अभी आपसे जो बातचीत हुई अभी तक की उसमें समझ में आई कि युवा इससे आसानी से जुड़ रहे हैं, एक कारण उनका लालच। तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो किस तरह का लालच ये देते हैं बच्चों को, या सबसे पहली पे हमारा जानना उद्देश्य कि पहला क्या उद्देश्य होता होगा या क्या तरीका होता होगा जो लोग बच्चों को इसमें लाते हैं या नशे के लिए आगे लाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि आपने कहा स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस होता है इसलिए नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, या दो बातें कि नशे की तरफ जाते हैं इसलिए भी स्ट्रेस होता है, दोनों बातों को एक बार आप हमें बताएं।
1: तो पहली बात जो आपने कही, जो युवा जुड़ते हैं उद्देश्य क्या होता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, खासतौर पर हम कानून व्यवस्था की करें तो बच्चों के ऊपर कार्यवाही उस तरीके से नहीं होती है, तो शायद इसलिए वो बच्चे उनका इजी टारगेट रहता होगा। हाँ। कि बच्चों के ऊपर हम कानूनी इस तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकते, तो बच्चों को शामिल करना एक ये उद्देश्य उनका हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि अभी हम जब बात करें खासतौर पर कोविड के वास्ते, जब हम लोगों को समझ में आया कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, तो यदि हम देखें कि वैसे स्पेसेस नहीं है जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त कर पाएं खुलकर। अच्छा। तो कई बार व्यक्ति जो है व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो खुद के लिए उस कमी को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को खोजता है, जिसमें एक जो चीज़ समझ कि नशे के ऊपर वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नशे में हम होश में नहीं रहेंगे तो शायद हमें वो चीज़ें याद नहीं आएंगी, और कई बार जो है नशा नहीं मिलने के कारण भी व्यक्ति में स्ट्रेस होता है। तो दोनों कारण है, एक तो स्ट्रेस होने के कारण आप वहाँ जा रहे हैं, और दूसरा आपको नशा नहीं मिलने का जो स्ट्रेस है, क्योंकि जब एडिक्टेड हो जाते हो तो ये भी एक मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी ही है। तो इन दो तरीकों से लोग उसमें जुड़ते हैं।
0: एक चीज और हम अब पे निकल के आती है कि जब आप, चूंकि आप इसमें काम कर रहे हैं, तो ये आप जब निकलते हैं ये खुद ब खुद वो इलाकों में आपको बच्चे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चे या लड़कियां या बड़ी उम्र के लोग या पुरुष बड़े या महिला, उम्र को अगर दरकिनार करके बात करें तो हम बात करना चाह रहे हैं उस पर कि जो भी लोग नशे में लिप्त हैं तो किस तरह से वो, आप पहले प्रथम दृष्टि आप कैसे उन्हें पहचानते हैं, या आप क्या तरीके अपनाते हैं जिससे ये लोग आपकी पहचान में या आप उन तक पहुंच पाए?
1: हम लोग जब समुदाय में काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग लोगों के साथ रैपो बिल्डिंग करते हैं। अच्छा। लोगों से मिलना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो ऐसे बातचीत के साथ में शुरुआत होती है। तो एक परिवार के साथ में संपर्क होता है, फिर हमारे वहाँ पर बस्तियों में जाके हम जनसंवादों का आयोजन करते हैं ताकि लोग हमसे जुड़ पाए और हमसे बातचीत

0: जाते हैं, क्योंकि मैं काउंसलिंग का भी काम करती हूँ, तो कई बार महिलाएं जब आती हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जब उनसे वजह पूछे जाते हैं तो वो एक नशा एक कारण बताते हैं कि इस वजह से जो है मेरे साथ में ही हुआ। और कई बार ये मैंने जो देखा है कि लाइव बोलते कि नशे में मुझे मारा गया, पीटा गया। कई बार नशे में व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत पावरफुल हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अधिकतर वायलेंस देखने को ज्यादा मिलता है नशे की वजह से। तो इस तरीके की बातें जो है जब संवाद होता है व्यक्तिगत रूप से, जब उनसे मिलते हैं या वो हमसे संपर्क भी करते हैं, तब वो हमें ये जानकारी देते हैं।
1: पहले ये बात करें, फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नशा ये करते हैं, इसमें खासतौर कौन सा नशा ज्यादा कर, जो सबसे ज्यादा नशा आपको, जो आप देखते हैं किस चीज का नशा करते हैं ज्यादातर लोग?
0: ज़्यादातर जो है शराब का नशा करते हैं, सिगरेट जो है वो यूज़ करते हैं, गांजा जो है वो यूज़ करते हैं, कुछ मामलों में ड्रग्स जैसी चीज़ें समझ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस पर नहीं निकल के आया कि यही, लेकिन कुछ लोगों ने जिक्र किया कि इस तरीके के नशे पे उपलब्ध सलोचन है खासतौर पे। कुछ युवा साथी की हम बात करें तो जो विक्स है या जो मेडिसिन मेडिकल पे मिलते हैं उनका भी वो उपयोग करते हैं।
1: तो जब भी आपको कोई केस आप दिमाग में अगर आपके आए, तो हम चाहेंगे कि आप उसको दिमाग में रखते हुए बिना किसी का नाम बताए हमें ये बताइएगा कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, पहली दफ़ा आपको पता चला कि ये मिस्टर एक्स हैं जो, या जो भी व्यक्ति है वो नशे की आदत में है, तो सबसे पहला कदम आप क्या करते हैं?
0: एक युवा साथी हमको मिले थे जिन्हें बहुत ज़्यादा वो था, हमने पहले उनसे दोस्ती की, थोड़ा उनको जानने की कोशिश किया, तो वो हमसे मिले, हमारे साथ बैठे, हमने उनको जानने की कोशिश, तो एक दोस्ती जैसा माहौल वहाँ पे शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे उनसे जानने की कोशिश किया कि वो उन्हें कब से इस चीज़ का आदत लगा, तो उस बच्चे ने बताया कि क्योंकि उनके परिवार में जो पिताजी हैं वो नशे का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने मंगवाना शुरू किया बच्चे से। तो वो कई बार होता है, जैसे मैंने भी देखा है कि जब हमको सर्दी खांसी होती थी तो हमारे पिताजी एक ढक्कन सिरप हमको दे देते थे कि सर्दी ठीक हो जाए, तो ऐसे ही वो बच्चे ने अपने पिताजी के लिए लाना शुरू किया धीरे धीरे। फिर उसने टेस्ट करना शुरू किया, फिर वो जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ के जो और उसके पीयर्स या हम दोस्त की बात करते हैं, तो दोस्तों के साथ में जुड़ा, तो दोस्तों ने उसे इन्फ्लुएंस किया कि तू लड़का है यार, तू ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, मर्द है, मर्द तो पीते हैं। तो इस तरीके से उसने धीरे धीरे उसने ट्राई करना शुरू किया, फिर वो पीना शुरू हो गया। तो उस व्यक्ति से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया उसने बहुत ज़्यादा नशे का उपयोग किया, और वो 10 साल का था तब वो जुड़ा, तो आज वो जो बच्चा है 18 साल का है। तो आप सोचिए कि 8 साल से 18 से 10 साल तक उसने कंटिन्यू वो चीज़ें करी। तो दो तीन जो परेशानियां मुझे निकल के आई कि एक तो जो हमारे दोस्त होते पीयर्स होते हैं उनका एक बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ता है, यदि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सवाल खड़े करते हैं। घर का माहौल है, यदि आपकी उपलब्धता में, यदि घर में आप वो चीज़ें देख रहे हैं तो आप उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रथम शिक्षा जो है बच्चे को अपने परिवार से मिलती है, तो परिवार का जो माहौल देखता है वो अडॉप्ट करता है। तो वो चीज़ हमने उसमें देखी। फिर जब इस तरह की चीज़ें निकल के आई तो हमने उनसे पूछा जब आप करते हो तो आपको क्या नुकसान होता है इससे, तो फिर उस व्यक्ति ने खुद बताया कि जब मैं पीता हूँ तो मैं कहीं भी पड़ा हुआ मिलता हूँ या मुझे होश नहीं रहता है, कई बार मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए शायद, जैसे कई बार छेड़खानी करना हुआ, खुद को नुकसान पहुँचाना हुआ, लड़ाइयाँ करना, तो उन्होंने दोनों चीज़ें बताई। तो फायदे के रूप में भी पूछा उनसे क्या हुआ, तो फायदे के रूप में कुछ समय के लिए शायद मैं कुछ चीज़ें अपनी भूल जाता हूँ, लेकिन उसने नुकसान ज़्यादा उसके बताए। तो ऐसे दोस्ती में उनसे बातचीत किया, तो हमने एक हमारा ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में उस बच्चे को हमने जोड़ा, तो ग्रुप में हमने बातचीत करना कि हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या है, मान लो हमें कोई परेशानी होती है तो हम और क्या कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, तो जुड़ाव इस तरीके से होता है। फिर हम काउंसलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, फिर हमें लगता है कि केस में शायद हम नहीं मदद, तो फिर हम रेफरल करते हैं, तो जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं या जो नशा मुक्ति केंद्र हैं तो फिर हम उनकी सहायता लेते हैं। तो इस तरीके से हम उनमें मदद करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की जब उस व्यक्ति से बातचीत हुआ तो उसने वो काउंटिंग करके बता रहा है कि मैंने 3-3.5 लाख रुपए का नशा किया, और पैसे ना होने के बाद कई बार चोरियां भी की, तो कई बार लोगों से पैसा भी मांगा और कई बार पिटे भी हैं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आया कि शायद उनको समझाने वाला एक स्पेस नहीं था, या वो उनमें वो अवेयरनेस नहीं थी, या उनके साथ में जो दिक्कत चल रही है वो वहीं कहीं शेयर नहीं कर पाए, तो वो एक स्पेस उनको हमसे मिला, उन्होंने शेयरिंग किया, काउंसलिंग हुआ, हमने और ऐसे लोगों से जोड़ा जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो अभी वो जो बच्चा है वो बिल्कुल नशा नहीं करता है। तो ये हमारे लिए बड़ा
1: मतलब इससे बात कह सकते हैं कि जितने भी लोग नशा कर रहे हैं और अभी तक मान लीजिए वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसके आदी हैं, तो अगर वो काउंसलिंग तक पहुंचते हैं या आपसे या आप जैसी अन्य संस्थाओं के संपर्क में आते हैं तो बहुत बड़ा मतलब एक कारण बन सकता है कि वो नशे से दूर हो जाए। जितनी बात आपकी हुई अपनी, जब आप इस तरह के केसेस आपको मिलते हैं चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों या युवा हों, तो परिवार का क्या आपको उसमें सपोर्ट मिलता है, या कई बार आपको लगता है कि परिवार भी आप लोगों के अगेंस्ट हो जाए, वो भरोसा कर पाते हैं आप पे जल्दी कि ये हमारे बच्चे को या इंसान का नशा छुड़ाने के लिए आए हैं या उसमें सहायता करेंगे या अगेंस्ट भी होता है, दोनों बातें बताइएगा।
0: विश्वास एकदम से तो वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है ये अचानक से कौन सा व्यक्ति आ गया जो हमारे परिवार की इतनी चिंता कर रहा है या हमारे परिवार के बारे में सोच रहा है। तो वो उस विश्वास को बना पाना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन जब लगातार उनसे मुलाकात होती है, कई बार जब हम जिस तरीके के संवाद करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो हम उन्हें इन्वाइट भी करते हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जिस बच्चे की मैंने आपको कहानी इससे पहले बताई, तो उन परिवार का पहले ये था कि वो नहीं भेजते थे, लेकिन उन्होंने जब अवसर दिया, हमने उन्हें जोड़ा, उन्होंने अपने बच्चे में बदलाव देखा, तो उनका विश्वास हमसे बढ़ा, तो फिर उन परिवार ने हमको सहयोग करना शुरू किया। क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत परेशान होता है। जब परिवार को जोड़ा, उन्होंने अपने घर में उस बच्चे के अंदर बदलाव देखा, तो उनमें एक विश्वास बढ़ा और फिर उन्होंने हमें सहयोग किया। तो शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि आप जब किसी के पास जाते हैं तो उन्हें भी लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो आपका सहयोग करने तो आते हैं लेकिन वो सहयोग ना करके आपका उपयोग कर लेते हैं कई बार, तो ये एक चुनौती रहती है। लेकिन आप लगातार काम करते हैं क्योंकि मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप काम नहीं कर पाओगे और आप सीख नहीं पाओगे। तो ये जो परेशानी आई ये चुनौती थी, लेकिन हमारे लिए सीख भी था कि हमें परिवार से कैसे जुड़ना है, क्योंकि हम सीधे उन्हें समाधान लेकर जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। तो उनकी समस्याओं को समझना, समस्याओं से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जब तक वो इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तो शायद वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक परिवार के रूप में हमारा उनसे जुड़ाव होता है, ना कि एक संस्था या समाजसेवी के रूप में। तो एक परिवार का सदस्य बन के हम उनसे जुड़ते हैं, फिर उनके साथ में काम करते हैं।
1: एक बात और पूछेंगे निहारिका जी, जो जैसे आप इसमें काम कर ही रही हैं और इतने लंबे समय से, अलग अलग आपने बताया लगभग 6 राज्यों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जितने लोग जैसे आप कर रहे हैं ये पर्याप्त है या अभी काफी और लोगों को या कुछ अन्य संस्थाओं को आने की जरूरत है, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति तो काफी बड़ी हुई है?
0: मुझे लगता है कि बहुत कम है और बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुविधाएं हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस या लोगों तक उसकी जानकारी नहीं है। तो लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों की आवश्यकता है इसमें काम करने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बदलाव करने की भी ज़रूरत है। मैं जो देख पाती हूँ कि बच्चों के लिए उस तरीके की सुविधा नहीं कि हम पुनर्वास उनका कर पाए, खासतौर पर नशे की उससे। एक दूसरा हमें ये थोड़ा बालश्रम में भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अभी तक यदि हम बालश्रम कानून की बात करें तो नशे में जो बच्चे लगे हुए हैं कहीं ना कहीं हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस और भी देखने की ज़रूरत है कि नशे में कितने जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी देखने की आवश्यकता है। दूसरा जो हमारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं अलग अलग, उन पर भी हमें मजबूत और वो कैसे काम कर पाएँ इसकी बहुत ज़रूरत है। तो एक तो बच्चों के लिए ऐसे केंद्र हो,
1: जैसे काम मतलब उनको रोकने के लिए और नशे से दूर करने के
0: बिल्कुल
1: लिए।
0: हाँ। ऐसे कुछ कुछ अभियान चल रहे हैं लेकिन उस अभियान को और मजबूती और सक्रिय होने की जरूरत है। और खासकर जमीनी स्तर पे जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे मैं ऐसे केंद्रों की बात कर रही हूँ जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क एक पुनर्वास जो होना चाहिए, एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ से बच्चा निकल पाए, तो वो एक सुविधाओं का गैप नजर आता है। दूसरा जो प्रचार प्रसार होना चाहिए योजनाओं का, जानकारियों का, वो एक मुझे कम नजर में आता है। तो इस तरीके की चीज़ें और होना चाहिए और लोगों तक उसका उपलब्धता होनी चाहिए। तो यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि परिवार में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कई बार परिवार का जो माहौल होता है वो बहुत असर करता है, और भी जागरूक होने की जरूरत है। और कई बार मैंने देखा है लोग जागरूक तो होते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे हम देखें कई बार जब नशे के पदार्थ मिलते उसमें लिखा होता है कि इसमें कैंसर ये है, हम उपयोग करते हम जानते हैं लेकिन हम उसमें एक्शन नहीं लेते। तो उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, यदि आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो लेकिन उसके लिए कार्यवाही करना बहुत ज़रूरी है।
1: आप जब फील्ड में काम करती हैं, इस पर लंबे समय से काम कर भी रही हैं, तो आपको किस तरह की समस्याएं फेस करने में आती हैं? इतना आसान तो है नहीं कि भाई कोई आपको पता चला या मिले आप उस व्यक्ति से कि ये नशा करता है, तो उसके बाद यूं ही तो हो नहीं जाता होगा उनसे नशा, आपको भी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना होता होगा, तो वो किस तरह की होती है?
0: कई बार जब हम समुदाय में इंटर करते हैं तो बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जो मैं देखती हूँ कि नशे कारण बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ खुला स्पेस या खेलने का मैदान है वहाँ पर लोग ग्रुप में बैठ के नशा करते हैं या उस तरह की गतिविधियां करती हैं, तो एक जो असुरक्षित वाला माहौल है वो मुझे वहाँ नज़र में आता है। दूसरा जो चुनौती कई बार रहता है कि यदि व्यक्ति नशे में है तो हिंसक होता है, वो चीज़ों को उस समय समझ नहीं पाता है, तो वो हिंसक जैसा माहौल जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरा जो है जो खासतौर पर जो महिलाओं के साथ में जो हिंसा है, लड़कियों के साथ में जो छेड़खानी वाले मसले हैं, वो बहुत समुदाय में नज़र आते हैं। जैसे घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण यही है, नशा है। और कई बार जो रिपोर्टिंग भी होना चाहिए वो कई बार नशे के कारण वो रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है कि व्यक्ति नशे में शायद गलती से हो गया होगा, तो एक जो रिपोर्टिंग है वो भी नहीं हो पाती है। और कई बार व्यक्ति क्योंकि वो नशे में है तो इस चीज को वो टाल देते हैं कि नशे में इसलिए शायद उनसे गलती हो गई होगी। तो इस तरीके की समस्याएं जो है हमें वहां पर नजर में आती है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्ट्रेस वाला बहुत है, क्योंकि यदि आपके परिवार में कोई नशा कर रहा है, माहौल वैसा है, तो आप तनावित महसूस करेंगे और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ेगा ही। तो ऐसे तमाम समस्याएं जो हैं वो नज़र में, कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे वो स्कूल से बाहर ड्रॉप आउट भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि घर में यदि कोई बीमार है या नशे के लिप्त है तो वहाँ पे जिम्मेदारी फिर जो है बच्चों को निभानी पड़ती है।
1: सॉल्यूशन जो ये समस्याएं आपको लगती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके सॉल्यूशंस हैं ताकि ये समस्याएं लगभग कम और ख़त्म हों और इस पर काम और बेहतर करा जाए? जैसे आपने समस्याएं गिनाई तो इन ये समस्याएं ना आए आप, इसके लिए कोई आपको लगता है क्या तरीके हैं?
0: मुझे लगता है एक तो हमें अवेयरनेस पे, जागरूकता पे काम करना चाहिए, जो मुझे लगता है, खासतौर पे जहाँ पर अवैध तरीके से जो नशे के पदार्थ उपलब्ध हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ज़मीनी स्तर पे हमें उन जगहों को चयनित करना और उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और खासतौर पर जो लोग नशे में लिप्त हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम जो प्रक्रियाएँ चला सकते हैं वो प्रक्रियाओं की सुविधाएँ हमें उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे वो एक परामर्श देना हो, चाहे वो उनके पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की ज़रूरत हो। ऐसे कुछ अभियान जो मैंने देखा है, जैसे पुलिस विभाग का अभियान मिला, तो उन्होंने बहुत से सामाजिक संस्थाओं के साथ में, युवाओं के साथ मिलकर, कॉलेजेस के साथ में मिलकर चलाया, जो बहुत प्रभावी रहा है। तो यदि हम सब मिलकर उसमें काम करेंगे तो एक बहुत बेहतर रिजल्ट हम उसमें देख पाएंगे। तो सब साथ में मिलकर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है।
1: शुरू में भी एक एग्जाम्पल दिया था, कोई बच्चा था 10 साल की उम्र से ही नशे में आ गया था, कोई और दूसरा भी हो सकता है 12 साल की एक स्कूल की किसी उम्र हो सकती है। तो जो भी होते हैं जब ये नशे से मुक्त हो जाते हैं तो इनको दोबारा सामान्य जीवन में लाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या होता है कि कैसे क्या आ पाते हैं और आते हैं तो फिर वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं? आपने ऐसे लोग एग्जाम्पल होंगे आपके सामने?
0: काफ़ी सारे युवा साथी हम जुड़े हैं, तो कई बार होता है कि जो प्रीवियस लाइफ है उनकी, तो कई बार लोग जज भी करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो उस दूर लाइफ से बाहर आता है लेकिन लोग कमेंट्स उसको कई बार करते हैं, तो एक स्टिग्मा भी होता है कई बार, तो वो एक चुनौती होता है। तो वो माहौल को निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये एक चुनौती है उन लोगों के लिए। तो इस पे हम लोग जो काम करते हैं, खासतौर पर हम लोग सिर्फ उस परिवार के साथ साथ उस समुदाय में भी काम करते हैं ताकि एक ऐसा वातावरण मिल पाए ताकि व्यक्ति सहज महसूस करे वहाँ पर। तो लोगों को हम जागरूक करते हैं कि यदि व्यक्ति बाहर आया है उस चीज़ से तो हम कैसे मिलकर उन्हें सहयोग कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में हमारे जो संवाद होते हैं, परिवारों के साथ में संवाद होते हैं, कई बार हम लोग ऐसी गतिविधियों का भी, समावेशी गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं कि हर व्यक्ति उसमें जुड़ पाए। तो इस तरीके के मुद्दों पे हम बात करते हैं और खासतौर पर लोगों की भूमिका उसमें करते हैं कि आपके समुदाय में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो आपका परिवार का हिस्सा है, वो आपका हिस्सा है, तो हम उस व्यक्ति को बेहतर रहने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो समुदाय के साथ में हम लोग जब काम करते हैं तो ऐसा माहौल देने की प्रयास करते हैं और कई बार देखा भी है जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ सहज महसूस करे और जो पूर्व में जो उसके साथ में घटनाएं हुई हैं, जो हुआ है, वो सामने।
1: एक चीज़ तो चलते चलते समय की भी एक सीमा होती है। एक प्रश्न आएगा, अभी आपने शुरुआत कही थी कि स्लम एरियाज में जाना पड़ता है आपको, हाँ ये सत्यता है और आप इस पे काम करती, तो ये मोहर इस बात की कि स्लम एरियाज में इस तरह के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, संभ्रांत घरों के हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशे में लिप्त हो रहे हैं?
0: बिल्कुल है।
1: इस पर एक बार आप बताइए, उसमें कितने केसेस आपने देखे या मतलब उसको ध्यान में रखते हुए बताइए।
0: बिल्कुल, कोविड के समय हम लोगों ने हमारा एक ब्रोशर तैयार किया था काउंसलिंग के लिए, तो वहां पर हमारे पास कई बार केसेस आए और वो ऐसे हाई प्रोफाइली सोसाइटी के ही लोगों के आए थे। तो क्योंकि स्लम एरिया में हमारा एक्सेस है, वहाँ लोग दिखते हैं, जुड़ते हैं, तो वहाँ पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आइसोलेटेड हैं, जो रहते हैं, वहाँ पर भी समस्या है। कई बार जब मैं बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ जो बच्चे पीजीज में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं या जो तमाम दुकानें हमें नजर आती है, वहाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट क्राउड हमें नजर आता है। तो हर वर्ग का व्यक्ति इससे परेशान है और जुड़ा हुआ है।
1: इनका क्या प्रमुख कारण होता है? ये तो सब तरह से सुविधाएं इनके पास टारगेटेड हैं, अच्छा खासा माहौल है, ये नशे की लत में क्यों पड़ जाते हैं?
0: माहौल का मतलब सिर्फ अच्छी शिक्षा देना नहीं होता है, माहौल जो है कि आपका बच्चा जो है वो किन गतिविधियों में जा रहा है, उसे क्या समस्या है, वो एक स्पेस वहाँ पर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स का भी जो डायलॉग है वो बच्चों के साथ निरंतर नहीं होता है, और कई बार बच्चा जो बाहर गतिविधि करता है वो उसका भी ऑब्जर्वेशन कई बार नहीं रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर कई बार बच्चे बाहर रहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है, या फिर वो दोस्तों के साथ में जुड़ के जो चीज़ें कर रहा है। और कई बार जो है जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लोगों को जो मुझे जो देखा है कई बार, उनके लिए एक पैटर्न है अपनी लाइफ को इंजॉय करने का, तो वो इंजॉयमेंट के जो साधन के रूप में वो को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उन पे भी और बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम उन्हें बना देते हैं कि आपको सुविधाएं, आपको हाँ। जरूरत नहीं है परेशानी, तो वो उसी माहौल में डरते हैं कि हमें शायद किसी से गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, या फिर हम जो कर रहे हैं वो सब ओके है।
1: मतलब
0: तो,
1: इस बात से निकल के ये आता है कि एक जो केवल हम गरीबी या स्लम में रहने वाले बच्चों पे केवल आरोप नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो वास्तविकता पे बात कर रहे हैं कि हमें वहां भी वो बच्चे मिलते हैं, और जो नशे का उपयोग है वो केवल गरीबी ही नहीं, वो तो एक टारगेटेड है ही, लेकिन एक समाज जो पूरी तरह से संभ्रांत है, उसके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशा कर रही है, उसके नशे करने के अपने अलग कारण है ना, ये बात हम कह सकते हैं। निहारिका जी, आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, और बहुत ही अच्छे कार्य में आप लगी हैं, इसके लिए हम आपका पुनः धन्यवाद करेंगे हमारी और हमारे रेडियो की टीम की ओर से। प्रयास बहुत ज़रूरी है कि इस नशे को ख़त्म करा जाए, ताकि देश एक अच्छी दिशा में बढ़े।
0: बिल्कुल,
1: तो आपका ही जो आप साधुवाद हम आपका देंगे जो आप कार्य कर रहे हैं। तो ये था कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिस पे हमने आज बात करी नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विषय पर। और ये जो कार्यक्रम था, इसका मार्गदर्शन हमें दिया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ जी की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग है सतीश बाथम का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। निहारिका जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: गेल्मर वोसबर्ग एक डच सर्जन और मुगल दरबार की कूटनीति। 17वीं शताब्दी के बंगाल के आर्द नदी क्षेत्रों में शक्ति हमेशा औपचारिक संधियों या भव्य दूतावासों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती थी। अक्सर ये एक शासक और डॉक्टर के बीच पाई जाती थी। इस अनूठी गतिशीलता के केंद्र में गेल्मर वोसबर्ग थे, जो एक डच सर्जन थे। वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक मीर जुमला के बीच एक कूटनीतिक सेतु बन गए थे। 1660 तक मुगल उत्तराधिकार के युद्ध ने साम्राज्य के पूर्वी सीमांत को उच्च तनाव की स्थिति में छोड़ दिया था। सम्राट औरंगजेब के मामा और एक प्रतिभाशाली उद्यमी सेनापति मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मीर जुमला का राजनैतिक और व्यापारिक प्रभाव इतना अधिक था कि वे अक्सर यूरोपीय कंपनियों पर अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए धन, हथियार और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए दबाव डालते थे। कपड़ा और शोरा के आकर्षक व्यापार को बनाए रखने के लिए बेताब वीओसी को लगा कि वे केवल तटस्थ नहीं रह सकते। जीवित रहने के लिए उन्हें मीर जुमला की सेवा में खुद को शामिल करना ही पड़ा। इस जबरन सहयोग के हिस्से के रूप में मीर जुमला ने वीओसी से विशेषज्ञ कर्मियों को लीज पर लेना शुरू किया, जिनमें जहाज निर्माता, नाविक और सर्जन गेल्मर वोसबर्ग शामिल थे। जहां उनका प्राथमिक कार्य नवाब और उनके आंतरिक घेरे के स्वास्थ्य की देखभाल करना था, वहीं बटविया के डच निदेशकों और ढाका के फैक्ट्री प्रमुखों ने डॉक्टर के लिए कहीं अधिक रणनीति उपयोग देखा। मीर जुमला के साथ निकटता के कारण कंपनी वोसबर्ग को दैनिक कूटनीतिक व्यवहार करने के लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति मानती थी। प्रांतीय कूटनीति की दुनिया में जहां विशिष्ट स्थानीय बातचीत अक्सर दिल्ली के शाही फरमानों से अधिक महत्वपूर्ण होती थी, वोसबर्ग एक मुख्य कड़ी थे। जहां ढाका के डच प्रतिनिधि को सप्ताह में एक बार नवाब से मिलने की उम्मीद थी, वहीं वोसबर्ग नवाब के घेरे के भीतर ही रहते थे। वे कंपनी की आंख और कान थे, जो मीर जुमला के मूड को भांपने और चिकित्सा देखभाल के अनौपचारिक क्षणों के दौरान चुपचाप डच हितों की वकालत करने में सक्षम थे। ये व्यवस्था एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी, जहां वीओसी ने अपनी विशेषज्ञता नौसैनिक शक्ति से लेकर चिकित्सा ज्ञान तक को महत्वपूर्ण बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया। वोसबर्ग की सेवा ने कंपनी को उस कठिन दौर में रास्ता खोजने में मदद की, जब मीर जुमला आक्रामक रूप से हिजली द्वीप जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे। एक ऐसा सर्जन प्रदान करके जिस पर नवाब भरोसा कर सके, वीओसी ने यह सुनिश्चित किया कि सैन्य समर्थन के लिए दबाव के बावजूद उनका व्यापार चलता रहे। गेल्मर वोसबर्ग की कहानी उस युग के ऐसे प्रविधि को दर्शाती है, जहां यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई शक्ति संरचनाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार का इतिहास अक्सर व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक निकटता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के बंगाल में एक सर्जन की कैंची और गवर्नर के तंबू में फुसफुसाए गए कुछ शब्द कभी कभी वैश्विक साम्राज्य के हितों को सुरक्षित करने में युद्ध पोतों के बेड़े जितने ही शक्तिशाली होते थे।
2: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
3: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
2: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
5: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद विभिन्न देशों में विभिन्न अवसरों पर श्रोताओं के सम्मुख अपना वक्तव्य रखते थे। उनके अनुयायियों ने उन भाषणों को लिख लिया था जो बाद में प्रकाशित हुए। हमारे कर्तव्यों के बारे में स्वामी जी ने जो भी कहा था उसमें से कुछ अंशों की जानकारी आज हम देंगे। एक भाषण में उन्होंने कहा,
1: सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, ना कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, क्या ये तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता। 99% लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल होता है दुख। ये सब कार्य स्वार्थ पर होते हैं। मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता। दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं। यदि तुम भी गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों से बांधकर उससे अपने लिए कार्य कराओ, तो वो कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य करेगा अवश्य, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं तो इसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता, और इसलिए वो सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं, यहां तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है।
2: स्वामी जी ने समझाया कि कर्म कर्म में भेद होता है, हमें सप्रेम कर्म करना चाहिए।
1: स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है, और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान ये है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फल स्वरूप शांति और आनंद ना आए। प्रकृत सत्ता, प्रकृत ज्ञान तथा प्रकृत प्रेम, ये तीनों चिरकाल के लिए परस्पर संबद्ध हैं। असल में ये एक में ही तीन हैं। जहां एक रहता है वहां शेष दो भी अवश्य रहते हैं।
0: प्रेम मनुष्य को दास नहीं बनाता, मुक्त रहने में ही सच्चा प्रेम है।
1: उदाहरणार्थ मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है। वो चाहता है कि स्त्री केवल उसी के पास रहे। अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्रेक होता है। वो चाहता है कि वो स्त्री उसी के पास बैठे, उसी के पास खड़ी रहे और उसी की इच्छानुसार खाए पिए और चले फिरे। वो स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है कि स्त्री भी उसकी गुलाम रहे। ये तो प्रेम नहीं है, ये तो गुलामी का एक प्रकार का विकृत भाव है जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखाई देता है। ये प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लेशदायक है। यदि वो उस मनुष्य की इच्छानुसार ना चले तो उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं, उससे तो केवल आनंद ही होता है। और यदि उससे ऐसा ना होता हो तो समझ लेना चाहिए कि वो प्रेम नहीं है, बल्कि वो और ही कोई चीज है जिसे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी स्त्री, अपने बच्चों, यहां तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सकोगे कि उससे किसी भी प्रकार दुख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल तभी तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे।
2: वे श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण देकर कहते हैं,
1: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाए। मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं। मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूं, फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूं? इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है।
0: दान करते समय प्रतिदान की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं,
1: जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज देते हो तो क्या उसके बदले में उनसे कुछ मांगते हो? ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो, और बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है। इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर अथवा देश के लिए तुम जो कुछ करो उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो। उनसे किसी प्रकार के बदले की आशा न रखो। यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो, जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी आती है जब हम बदले की आशा रखते हैं।
0: भाषण देते समय स्वामी जी अक्सर सटीक उदाहरण देने के लिए कहानी सुनाया करते थे। ऐसी ही एक कहानी कहते हुए उन्होंने महाभारत की कथा सुनाई।
1: कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा दान दिया गया। सभी लोगों ने उस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। यज्ञ के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया। नेवले का शरीर आधा सुनहरा था और शेष आधा भूरा। वो नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा, तुम सब झूठे हो, ये कोई यज्ञ नहीं है। लोगों ने कहा, क्या तुम कहते क्या हो, ये कोई यज्ञ ही नहीं है। तुम जानते हो इस यज्ञ में कितना खर्च हुआ है, गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए जिससे वे सब के सब धनी एवं खुशहाल हो गए हैं। ये तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो। परंतु नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटे से गांव में एक निर्धन द्विज रहता था, साथ ही उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधु। वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता उसी पर उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गांव में 3 साल तक अकाल पड़ा, जिससे उस बेचारे के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई। एक बार तो सारे कुटुंब को 5 दिन तक उपवास करना पड़ा। 6ठे दिन वो द्विज भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उस आटे के 4 भाग किए गए। उन्होंने उसकी रोटी बनाई और जो ही वे उसे खाने बैठे कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाजा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पवित्र माना जाता है। वो तो उस समय के लिए नारायण ही समझा जाता है और उसके साथ तद्रूप व्यवहार भी किया जाता है। अतएव उस गरीब ने कहा, महाराज पधारिए, आपका स्वागत है, और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। अतिथि उसे जल्द खा गया और बोला, अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन का भूखा हूं और भोजन के इस छोटे से टुकड़े ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भी भाग दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, वो बेचारा गरीब भूखा है, हमारे यहां आया है। गृहस्थ की हैसियत से हमारा धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं। ये देखकर कि आप उसे अधिक भोजन नहीं दे सकते, पत्नी के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भी भाग दे दूं। ऐसा कह उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वो भी खा लिया और कहा, मैं तो अभी भी भूख से जल रहा हूं। तब लड़के ने कहा, आप मेरा भी भाग लीजिए, क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उन्हें सहायता दे। अतिथि ने वो भी खा लिया, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अतएव बहू ने भी उसे अपना भाग दे दिया। अब वो पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद दे विदा ली। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गए। उस आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उन पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया, जैसा कि तुम अभी देख ही रहे हो। उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूं और चाहता हूं कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले, परंतु वैसा यज्ञ मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मेरा आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहरा ना हो सका, इसलिए तो कहता हूं कि ये कोई यज्ञ ही नहीं है।
0: दान की महिमा सुनाते हुए उन्होंने कहा,
1: त्याग का ये भाव भारत वर्ष से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानुभाव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब बचपन में मैंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया था, उस समय मैंने अंग्रेजी की एक पुस्तक पढ़ी जिसमें एक ऐसे कर्तव्य परायण बालक का वर्णन था जिसने काम करके जो कुछ उपार्जन किया था उसका कुछ अपनी वृद्ध माता को दे दिया था। उस बालक के इस कृत्य की प्रशंसा पुस्तक के 3-4 पृष्ठों में गाई गई थी, परंतु इसमें कौन सा असाधारण तत्व है? कोई भी हिंदू बालक उस कहानी की नीति शिक्षा को नहीं समझ सकता, और मुझे भी उसका महत्व आज ही समझ में आ रहा है जब मैं इस पश्चिमी रिवाज को सुनता तथा देखता हूं कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लिए ही जीता है। इस देश में ऐसे भी लोग अनेक हैं जो सब कुछ अपने लिए ही रख लेते हैं, उनके पिता माता स्त्री और बच्चों की फिर चाहे जैसी दशा क्यों ना हो। एक गृहस्थ का ऐसा आदर्श तो कदापि ना होना चाहिए।
2: स्वामी जी ने कर्मयोग को समझाया और कर्तव्य शब्द को परिभाषित किया।
1: कर्मयोग का तत्व समझने के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि कोई मुझे काम करना है तो पहले मुझे ये जान लेना चाहिए कि वो मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूं। विभिन्न जातियों में विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। एक व्यक्ति कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक अन्य कहता है कि जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें स्पष्ट दिख पड़ता है कि जीवन में अवस्था काल एवं जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी बहुविध होती हैं। अन्यान्य सार्वभौमिक भाव सूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द की भी ठीक ठीक व्याख्या करना दुरूह है। व्यवहारिक जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों द्वारा ही हमें उसके संबंध में कुछ धारणा हो सकती है।
0: प्रतीकों का बहुत महत्व है। साधारण लोग प्रतीकों को ही ईश्वर ज्ञान से पूजते हैं।
1: अत्यंत प्राचीन समय से ही प्रतीकों का प्रयोग प्रत्येक धर्म में होता रहा है। एक दृष्टि से यदि कहा जाए कि हम प्रतीक के बिना किसी बात को सोच ही नहीं सकते तो ठीक ही है। शब्द भी तो हमारे विचार के प्रतीक ही हैं। दूसरी दृष्टि से कहा जा सकता है कि संसार की प्रत्येक चीज प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। सारा संसार ही प्रतीक है और उसके पीछे मूल तत्व रूप में ईश्वर विराजमान है। इस प्रकार का प्रतीक केवल मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया हुआ ही नहीं है, और ना ऐसी ही बात है कि एक धर्म के कुछ अनुयायी एक साथ बैठ गए और बस उन्होंने कुछ प्रतीकों की कल्पना कर डाली। धर्म के प्रतीक की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। नहीं तो ऐसा क्यों है कि प्रायः सभी मनुष्यों के मन में कुछ प्रतीक तो सभी जगह पाए जाते हैं। तुम में से अनेकों की यह धारणा है कि क्रॉस का चिन्ह सर्वप्रथम ईसाई धर्म के साथ प्रचलित हुआ, परंतु वास्तव में तो वो ईसाई धर्म के बहुत पहले से, मूसा के भी जन्म के पहले से, वेदों के आविर्भाव के भी पहले, यहां तक कि मानवीय कार्यकलापों का किसी प्रकार का इतिहास लिपिबद्ध होने के पहले से विद्यमान है।
2: प्रतीक ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, कई लोगों के शताब्दियों पर्यंत प्रयास के कारण वे स्थापित होते हैं।
1: एजटेक्स तथा फिनिशियंस जातियों में भी इसकी मौजूदगी का प्रमाण मिलता है। प्रायः प्रत्येक जाति में इसका अस्तित्व था। इतना नहीं बल्कि ऐसा भी होता है कि क्रॉस पर लटके हुए महापुरुष का प्रतीक लगभग प्रत्येक जाति में प्रचलित था। इसी प्रकार सारे संसार में व्रत भी एक उत्कृष्ट प्रतीक माना गया है। फिर इसके अतिरिक्त सारे संसार में सबसे अधिक प्रचलित स्वास्तिक भी एक प्रतीक रहा है। एक समय ऐसी धारणा थी कि बौद्ध इसे अपने साथ साथ सारे संसार भर में ले गए, परंतु पता चलता है कि बौद्ध धर्म के सदियों पहले कई जातियों में इसका प्रचार था। प्राचीन बेबीलोन तथा मिश्र देश में भी यह पाया जाता था। इस सब से क्या प्रकट होता है? यही कि ये सब प्रतीक केवल काल्पनिक या स्वेच्छाकृत ही नहीं थे, इनका कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा। उनमें तथा मानवीय मन में कोई स्वाभाविक संबंध रहा होगा।
2: कर्म निष्काम हो तो अच्छा है, कर्म करके अहम पालना नहीं चाहिए, स्वामी जी ने कहा।
1: दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न उठता है कि संसार का भला क्यों करें? वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें। एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था, वो इस प्रकार था। ये सुंदर संसार बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है। ऊपर से तो ये भाव सचमुच सुंदर है, परंतु ये कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्या घोर ईश्वर निंदा नहीं है? संसार ना तो अच्छा है ना बुरा, बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है। यदि एक अंधा संसार के बारे में सोचने लगे तो वो उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा, अथवा शीत या उष्ण। हम सुख या दुख की समष्टि मात्र हैं। ये हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है। बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं और वृद्ध निराशावादी। तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है, परंतु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया। कितनी ही अपूर्ण इच्छाएं उसके हृदय में मचलती रहती हैं, जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं। परंतु हैं दोनों ही मूर्ख। हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें ये संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। स्वयं ये ना तो भला है न बुरा। अग्नि स्वयं ना अच्छी है न बुरी। जब ये हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं ये कितनी सुंदर है, परंतु जब इससे हमारी उंगली जल जाती है तो इसे हम दोष देते हैं। परंतु फिर भी स्वयं न तो ये अच्छी है न बुरी, जैसा हम इसका उपयोग करते हैं तदनुरूप ये अच्छी या बुरी बन जाती है। यही हाल इस संसार का भी है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण होने का अर्थ ये है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है। हमें ये निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी ये संसार बड़े मजे से चलता जाएगा। हमें उसकी सहायता करने के लिए माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं।
0: स्वामी जी ने फिर एक लंबी कहानी सुनाई।
1: एक गरीब आदमी को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी। उसे कहीं से ये मालूम हो गया कि यदि वो किसी भूत को अपने वश में कर ले तो वो उससे जो चाहे मंगवा सकता है। निदान उसे एक भूत ढूंढने की सूझी। वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जिससे उसे एक भूत मिल जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक साधु मिले। इन साधु के पास बड़ी शक्तियां थीं और उसने उनसे सहायता की याचना की। साधु ने उससे पूछा, तुम भूत का क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, महाराज मैं भूत इसलिए चाहता हूं कि वो मेरा काम कर दे। कृपा कर मुझे उसको प्राप्त करने का ढंग बता दीजिए, मुझे उसकी बड़ी जरूरत है। साधु बोले, देखो तुम इस झमेले में मत पड़ो, अपने घर लौट जाओ। दूसरे दिन वो आदमी साधु के पास फिर गया और बहुत रोने गाने लगा। उसने कहा, महाराज मुझे एक भूत दे ही दीजिए ना, मुझे बड़ी आवश्यकता है। अंत में साधु कुछ चिढ़ से गए और उन्होंने कहा, अच्छा लो ये मंत्र लो, इसका जप करने से एक भूत प्रकट होगा और फिर उससे जो काम कहोगे वही करेगा। परंतु देखो होशियार रहना, ये बड़े भयंकर प्राणी होते हैं, उसे निरंतर काम में लगाए रखना। यदि कभी वो खाली रहा तो तुम्हारी जान ही ले लेगा। तब उस मनुष्य ने कहा, ये कौन कठिन बात है, मैं तो उसे इतना काम दे दूं कि उसके जीवन भर खत्म ना हो। उसके बाद वो आदमी एक वन में चला गया और मंत्र का जप करने लगा। कुछ देर तक जप करने के बाद उसके सामने विकराल दांतों वाला एक बड़ा भयंकर भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, देखो मैं भूत हूं, तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है, परंतु देखो तुम्हें मुझको निरंतर काम में लगाए रखना होगा, क्योंकि जो ही मुझे थोड़ा सा भी अवकाश मिला कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आदमी बोला, ठीक है, जाओ मेरे लिए एक महल तैयार करो। भूत ने जवाब दिया, लो हो गया, महल तैयार है। आदमी ने कहा, जाओ मेरे लिए धन ले आओ। भूत बोला, लो धन भी तैयार है। फिर आदमी ने कहा, ये जंगल काट डालो और यहां एक शहर बसा दो। भूत बोला, लो ये भी हो गया, अब और क्या करूं बतलाओ। अब तो ये आदमी बड़ा घबराने लगा। उसने मन में सोचा, अब तो मेरे पास कोई काम नहीं जो मैं इसे करने को कहूं, ये तो प्रत्येक काम क्षण भर में ही कर डालता है। भूत इधर गरज कर बोला, देखो मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारा आदमी अब कोई काम सोच ही ना सका और मारे भय के थर थर कांपने लगा। अब तो वो बेतहाशा भागा और भागते भागते उन्हीं साधु के पास पहुंचा और वहां जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाइए। साधु ने पूछा, कहो क्या हुआ। मनुष्य ने उत्तर दिया, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास उस भूत को देने के लिए कोई भी काम शेष नहीं है। मैं उससे जो कुछ भी करने को कहता हूं वो क्षण भर में कर डालता है और अब उसके पास कोई काम ही नहीं रह जाता, तो मुझे खा डालने की धमकी देता है। इतने में ही वो भूत वहां पहुंचा और कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और सचमुच वो उसे खा जाता। आदमी डर के मारे कांपने लगा और उसने साधु से अपने प्राणों की रक्षा की भिक्षा मांगी। साधु ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। देखो उस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, अपनी तलवार निकालो और ये पूंछ काटकर इस भूत को दे दो और उससे कहो कि इसे सीधी कर दे। आदमी ने झट से कुत्ते की पूंछ काट दी और उसे भूत को देकर कहा, लो इसे सीधी करके मुझे दो। भूत ने पूंछ ले ली और उसे बड़ी सावधानी से सीधी की, पर जो ही उसने उसको सीधी करके छोड़ दिया त्यों ही वो फिर से टेढ़ी हो गई। भूत ने दोबारा कोशिश की, परंतु जो ही उसने छोड़ दी त्यों ही वो फिर टेढ़ी हो गई। उसने तीसरी बार फिर प्रयत्न किया, परंतु वो फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई। इस प्रकार वो कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा, यहां तक कि वो थक गया और बोला, मुझे ऐसा कष्ट तो अपने जीवन भर में कभी नहीं हुआ। मैं एक बड़ा पुराना भूत हूं, ऐसी मुसीबत में मैं कभी नहीं पड़ा। अब तो वो भूत उस आदमी से कहने लगा, आओ भाई हम तुम समझौता कर ले, तुम मुझे छोड़ दो और मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया है वो सब अपने ही पास रखे रहो। मैं वादा करता हूं कि अब आगे तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न दूंगा। ये सुनकर वो आदमी बड़ा खुश हुआ और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। हमारा संसार भी बस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के ही समान है। सैकड़ों वर्ष

0: और परोपकार के बारे में समझाकर स्वामी जी ने कहा है कि हमें निरासक्त होकर कर्म करते जाना चाहिए, अच्छे कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाता है। स्वामी जी इन शब्दों के साथ भाषण समाप्त करते हैं।
1: तुमने देखा कर्म योग का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ पर मुंह से एक बात न निकालो, और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की ही आशा रखो, बल्कि उल्टे तुम ही उसके कृतज्ञ हो ये सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है। अतएव स्पष्ट है कि एक आदर्श सन्यासी होने की अपेक्षा एक आदर्श गृहस्थ होना अधिक कठिन है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बुहिया का रहस्य, वह साधारण पत्ती जिसने दुनिया जीत ली। 18वीं शताब्दी के लंदन के चहल पहल भरे चाय घरों में चीनी मिट्टी के एक साधारण कप में क्रांति जन्म ले रही थी, जहां कुलीन वर्ग पैको वसंत की पहली सफेद कोमल कलियों की तलाश में रहता था, वहीं आम जनता बुहिया नामक एक रहस्य की दीवानी हो रही थी। हालांकि यह किस्म राजाओं की पसंद से कोसों दूर थी। वास्तव में ये सीजन की सबसे आखिरी और सबसे देर से की जाने वाली तुड़ाई थी, जिसे चाय के पौधे की बड़ी और खुरदुरी पत्तियों से तैयार किया जाता था। बुहिया का रहस्य परिष्कृत स्वाद का विषय नहीं था, बल्कि यह अर्थशास्त्र और सामाजिक आदतों का एक शानदार तालमेल था। जैसे जैसे वेस्ट इंडीज के बागानों से आने वाली चीनी की कीमतें गिरी, चाय कामकाजी वर्ग के लिए मिठास के उपभोग का सबसे बड़ा माध्यम बन गई। चूंकि बुहिया उपलब्ध किस्मों में सबसे सस्ती थी, इसलिए यह वे एकमात्र पत्ती थी जिसे आम जनता वहन कर सकती थी। 1700 के दशक के मध्य तक इस साधारण चाय ने बाजार पर कब्जा कर लिया था और कुल काली चाय के आयात में इसकी हिस्सेदारी 37.8% से उछलकर आश्चर्यजनक रूप से 63.3% हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था कि बुहिया की भारी मात्रा में बिक्री ने उनके वैश्विक संचालन की विशाल लागत को वहन करने के लिए आवश्यक राजस्व प्रदान किया। भले ही सरकारी कर अंततः 100% से अधिक हो गए हों, लेकिन इस किफायती पेय के प्रति जनता के जुनून ने फसल के बचे कुचे हिस्से को पश्चिमी दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय बना दिया। बुहिया ने यह साबित कर दिया कि बढ़ते हुए साम्राज्य में विपत्ति सबसे शक्तिशाली थी, जिसने हर किसी को चाय के कप तक आने का निमंत्रण दिया।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रमा मजूमदार का सरोदवादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की। तो आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रमा मजूमदार का सरोदवादन।

मेरी तालीम शाहजहाँपुर घराने से प्रमुखता हुई है और कुछ चीज़ें हर तंत्रकार को बीनकार घराने से जब तक कुछ ना मिले तब तक उसकी तालीम पूरी नहीं समझी जाती है। तो मेरे गुरु एवं दादा गुरु दोनों ने शाहजहाँपुर परंपरा से सीखने के बाद सेनिया ग्वालियर सेनिया परंपरा से भी तालीम ली है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत ही संक्षेप में।

0: और श्रोताओं, डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार के सरोद वादन को सुनने के बाद अब बारी है पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की।
1: विलंबित एकताल राग बिहाग आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की। तो आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन।

मेरी तालीम शाहजहाँपुर घराने से प्रमुखता हुई है और कुछ चीज़ें हर तंत्रकार को बीनकार घराने से जब तक कुछ ना मिले तब तक उसकी तालीम पूरी नहीं समझी जाती है। तो मेरे गुरु एवं दादा गुरु दोनों ने शाहजहाँपुर परंपरा से सीखने के बाद सेनिया ग्वालियर सेनिया परंपरा से भी तालीम ली है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत ही संक्षेप में।

0: और श्रोताओं, डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार के सरोद वादन को सुनने के बाद अब बारी है पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की।
1: विलंबित एकताल राग बिहाग आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित श्रीनिवास जोशी का गायन। आज का कार्यक्रम भारत भारती यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, वाहन चोरी की घटनाएं न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का विषय बनती जा रही हैं। यहां तक कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी, जहां की पुलिस बहुत ही कुशल मानी जाती है, ये घटनाएं कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। अमेरिका में तो हर साल 10 लाख से भी ज्यादा कारें चोरी हो जाती हैं और इंग्लैंड में हर 5 मिनट में एक कार चोरों के हत्थे चढ़ जाती है। चोर इतने शातिर हो चुके हैं कि वे सभी सिक्योरिटी डिवाइस को धत्ता बता करके कार उड़ा ले जाते हैं। तो लीजिए, हमारा आज का यह नाटक हाजिर है एक ऐसी ही कार चोरी की काल्पनिक घटना पर, जिसमें चोरों व पुलिस के बीच लगातार आंख मिचोली होती रहती है। इसमें आय स्थानों के नाम और पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, तथा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की भी चर्चा की गई है जो भविष्य में विकसित हो सकती है और कहीं जगह तो हो भी गई ही है। हमारा उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है, आपको सावधान करना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है हास्य नाटक कार की चोरी।

0: हो तो ये लगता है कि जहां। अरे यार, कौन सा सेंट लगाया है आज तुम? बड़ी महक रही हो।
1: छोड़ो ना सेंट वेंट तुम भी।
0: हाँ?
1: अरे अभी देखो दुकान देखते चलते हैं। हाँ, यहाँ रोक दो गाड़ी।
0: अरे यहाँ कहाँ जा।
1: रोको ना, वो देखो कहाँ बड़े चले जा रहे हो। रोको ना।
0: एक मिनट।
1: अरे
0: अरे
1: कहाँ बड़े चले जा रहे हो। रोको ना।
0: गाड़ी भी तो लगानी है भाई, कि तुम कहो तो कार समेत दुकान में घुस जाए।
1: इसीलिए तो कह रही थी लगा देते ना दुकान के सामने, जगह थी तो। अब इतनी दूर मुझे पैदल चलना पड़ेगा, ऐसे ही मुझसे चला नहीं जाता। पेंसिल हील
0: यार,
1: पहनती हूँ ना।
0: अरे हाँ, इतनी मोटी हो और उसके ऊपर पेंसिल हील। अरे यार, तुम भी ना पैर में मेहंदी लगाकर घर से निकलती हो। चाहती हो पूरी मार्केटिंग कार में बैठे बैठे ही हो जाए, एक कदम भी पैदल ना चलना पड़े।
1: ये भी कौन सी समझदारी है भाई कि दुकान सामने हो और कार 1 मील ले जाकर पार करें, अब उसके बाद जॉगिंग करते हुए यहां तक आए। घर के कामकाज में इतनी जॉगिंग हो जाती है हमारी, वो ही बहुत है भाई।
0: कोई शौक वोक नहीं है मुझे तुम्हारे जॉगिंग वॉगिंग कराने का। कायदे से चलते तो बनता नहीं, जॉगिंग करेंगे। हाथ पकड़कर टोचन न लगाओ तो जाने कहाँ छूट जाए क्वीन विक्टोरिया।
1: सही कहा तुमने, ऐसे घसीटते हो जैसे ये भी नहीं सोचते कि आदमी और औरत की चाल में अंतर होता है। तुम्हें हमारी तरह साड़ी तो

0: तो कोई गुनाह कर दिया क्या?
1: नहीं नहीं है, पर
0: नहीं सोचते हो, सारी अकल तो बस तुम्हारे ही पास है, बाकी सबका तो ऊपर चैम्बर खाली है।
1: देखो मैडम, बाकी सबका तो मैं नहीं जानता, पर आपके ऊपर जरूर फिट बैठती है ये बात। इतनी खूबसूरती देकर भी जब उसने तुम्हें दुनिया में भेजा तो तुम्हारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा।
0: अच्छा।
1: और हाँ, और अब दिन भर मेरा भेजा खाती रहती हो।
0: अच्छा जी, भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। अच्छा किया जो वो भूल गया, नहीं तो
1: क्या जी है? क्या बिगड़ जाता उसका अगर तुम्हारे भेजे में जरा सा भेजा भी डाल दिया होता? दुनिया में भेजे की कमी थोड़ी पड़ जाती इससे। अरे इतना भेजा तो मेरे भेजे की खुरचन से ही निकल आता।
0: जरूर निकल आता, तुम्हारे जले हुए भेजे से खुरचन के सिवा भला और निकल ही क्या सकता है? पर नहीं, वो भी नहीं निकाली उसने, तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है।
1: अच्छा, बताएंगी? नहीं वो वजह मुझे
0: है? अब रहने दो, मत ही पूछो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा।
1: टूटने दो दिल, कोई परवाह नहीं, पर सच्चाई तो अब हम जानकर ही मानेंगे।
0: अब ठीक है, तुम इतना ही जिद करते हो तो ये राज भी हम आज बता ही देते हैं तुम्हें।
1: हाँ बताओ ना, बताओ ना, मैं भी जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ।
0: तो सुनो जी।
1: बताओ जी।
0: एक बात बताओगे
1: जी?
0: बिना भेजा भेजे तुमने मुझसे शादी क्यों की?
1: अरे तुम्हारी खूबसूरती देखकर। अरे बेवकूफ जो बन गया था, क्या जानता था कि बिना भेजे की लड़की
0: क्या?
1: ये तो वही हाल हुआ कि हार्डवेयर तो टिप टॉप है पर सॉफ्टवेयर नदारद। बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर और बिना भेजे की लड़की।
0: बहुत सही, पर एक बात और बता दो कृपा करके।
1: वो क्या?
0: अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
1: क्या मतलब? कुछ रेफरेंस तो दो कि किस किस किस बाबत पूछ रही हो तुम?
0: रेफरेंस?
1: हाँ।
0: अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ कि कोई भेजे वाली लड़की क्या तुमसे शादी करती? अरे सुनो जी। अरे कम से कम टिकट तो ले लो स्टैंड वाले से, नहीं तो क्या सबूत रहेगा तुम्हारे पास कि तुमने कार यहाँ खड़ी की थी?
1: अरे सुनो भाई, यार टिकट तो दो।
2: अरे हाँ हम है ना भाई मियाँ। अरे फिकर क्यों करते हैं आप, आपकी गाड़ी जैसी खड़ी है वैसी ही मिलेगी।
1: पर भाई टिकट देने में तुम्हें क्या परेशानी है? कम से कम कोई सबूत तो होना चाहिए हमारे पास कि हमने गाड़ी यहाँ खड़ी की थी।
2: अरे सबूत हम है ना खा, वो क्या है ना कि टिकट की कट्टी खत्म हो गई है, प्रिंट में गई है ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: पर आप फिक्र ना करिए बिल्कुल भी,

0: शक करने की बड़ी बुरी बीमारी होती है, किसी पर विश्वास ही नहीं करती।
1: ठीक है ठीक है, सुनो भाई हमें 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे, ध्यान रखना हमारी गाड़ी का।
2: अरे जी साहब, आप बेफिक्र हो जाइए ना साहब, आपकी गाड़ी की ओर कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। अरे मजा लेके कोई स्क्रेच भी आ जाए।
3: सुनो जी, तुमने हमारी बात नहीं सुनी ना?
0: क्या?
3: पर पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है।
0: क्यों?
3: लग रहा है कि ये।
0: अरे यार काहे खामखा अपना दिमाग खराब कर रही हो, कहीं स्टैंड से भी गाड़ी इधर उधर होती है क्या? इतने दिन से लगा रहा हूँ यहाँ गाड़ी, कभी टिकट मिलता है कभी नहीं मिलता। अभी ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है यार।
3: अच्छा, ये सब नियम कायदे फॉर्मेलिटीज लगते हैं तुमको? अरे ऊपर से खुद को बड़ा भारी नॉलेज टैंक मानते हो? जरूरी नहीं कि जो कल नहीं हुआ वो आज भी नहीं होगा। सब दिन जात ना एक समाना।
0: यार तुम औरतें भी ना। अच्छा छोड़ो ये सब, इसी फिक्र में घुलते रहे तो मार्केटिंग भी नहीं हो पाएगी।
3: अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ चलते चलते, अब इतना बोझ लेकर कार तक भी चलो। नहीं, मुझसे नहीं उठता इतना भारी थैला, तुम ही उठाओ ना।
0: अरे यार मेरे दोनों हाथ पहले से ही फुल हैं, एक जरा सा थैला नहीं उठाते बनता तुमसे। ऊपर से मार्केटिंग का भूत है कि उतरता ही नहीं है। खरीदते जाओ खरीदते जाओ, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, जरूरत हो चाहे ना हो पर चीज दुकान में टंगी है तो खरीदना तो है आपको, उठाने के लिए एक नौकर तो साथ में है ही आपके।
3: फिर शुरू हो गए ना तुम, आज का दिन ही मेरा खराब है, आज सुबह से ही जैसे लड़ने पर उतारू हो तुम।
0: क्या?
3: ठीक है मत उठाओ, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ।
0: मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ? अपना खुद का वजन तो उठाए नहीं उठता और कहती हो, अरे कभी देखा है अपने आपको? अरे चंपा का फूल थी जब मैं लेके आया था और अब सूरजमुखी का फूल बन चुकी हो।
3: फूल तो है ना कोई कम से कम तुम्हारी तरह बबूल का कांटा तो नहीं है, जो महकता तो बिल्कुल भी नहीं, बस चुपता ही रहता है, चुपता ही रहता है, चुपता ही रहता है।
0: अरे गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है क्या?
3: मेरे पास कहाँ दी थी तुमने?
0: अरे वो शायद मैंने तुम्हें अरे वहाँ अंदर क्या देखो यार, तुम्हारे पर्स में होगी।
3: अरे मैं वहाँ तक कहाँ गई थी, मैं तो यहीं खड़ी थी ना, तो पार्किंग में गए थे तो।
0: अरे हाँ ये मिल गई।
3: हाँ वही तो।
0: हाँ अरे यार ये पीछे चली गई थी वो। हाँ अरे कार कहाँ चली गई?
3: क्या
0: यही तो खड़ी की थी यार। अरे सुनो भाई।
2: हाँ भाई।
0: अरे यार हमारी कार नहीं दिख रही है, इसी जगह खड़ी की थी।
2: अरे हाँ भाई मैं अगर खड़ी की थी तो जरूर होगी, जाएगी कहाँ? अरे ठीक से देखिए, देखिए जरा।
0: क्या ठीक से देखूं? क्या देखूं ठीक से? अरे यहीं खड़ी की थी यार, बिल्कुल इसी जगह पर। अरे कार कोई कागज का पन्ना है कि इधर उधर उड़ जाएगा?
2: अरे देखो मैं कब कह रही हूँ कागज का पन्ना है, कार ही थी, लेकिन कहीं और खड़ी करी होगी, देख लो जरा।
0: अरे नहीं भैया मैंने बिल्कुल इसी जगह खड़ी की थी।
2: नहीं नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं।
0: तो फिर क्या है आपका मतलब?
2: मेरा मतलब है कि कहीं आपने वो सामने वाले स्टैंड पर तो नहीं खड़ी कर दी।
0: अरे क्या पागल समझ रखा है तुमने मुझे, यही स्टैंड था और यही तुम थे, टिकट मांगने पर बोले थे ना कि मैं हूँ ना साहब, और अब गाड़ी नहीं मिल रही है तो कह रहे हो कि ये ऐसा है।
2: भाई का जरा लिमिट में बात कीजिए अपन से।
0: क्या मतलब?
2: हमारे स्टैंड का रिकॉर्ड है, आज तक एक भी गाड़ी यहाँ से नहीं निकली।
0: अरे मैं क्या जानू तुम्हारे रिकॉर्ड फिकॉर्ड को, पर मेरी गाड़ी तो गई ना।
3: अब दिखा।
0: अरे टिकट भी नहीं है कि इनको
3: दिखाओ ना, अब दिखाओ होशियारी, कुछ समझाओ तो कहोगे कि।
0: अरे यार तुम भी,
3: ये आदमी मुझे ठीक पहले से ही नहीं लग रहा था मगर नहीं।
0: अरे चुप रे भाई, एक तो ऐसे ही अकल चकरा रही है, ऊपर से तू है कि बड़बड़ बड़बड़। बीमा भी रिन्यू नहीं कराया था, गए 4 लाख, अब बैंक वाले चमड़ी उधेड़ कर किस्त वसूलेंगे।
3: ऐसे कैसे गए? मैं हूँ ना गवाह।
0: हाँ हाँ।
3: मैं हूँ ना। अरे यही खड़ी करी थी कार और इस आदमी ने टिकट देने से मना किया था।
2: ए महोत्रे माँ, आदमी औरत की गवाही का कोई मतलब नहीं होता, समझिए आप। ऐसे तो मैं भी स्टैंड के 10 लोंडे खड़े करके कहलवा दूंगा यहाँ पर कि आपने अपनी कार यहाँ खड़ी नहीं की थी और मैं भी अल्लाह की कसम यहाँ पर मौजूद नहीं था, कह दूंगा।
3: अरे ऐसे कैसे? अब सुनो जी।
0: हाँ?
3: चलो चलते हैं पुलिस के पास।
0: हाँ, हाँ,
3: ये ऐसे नहीं मानेगा।
0: चलो चलो
3: चलो।
2: अरे हाँ जाइए जाइए, देख लेंगे।
4: अरे जमाल, जरा इसको पकड़ और इसकी जरा धुनाई तो लगा रहे। ले जा इसको।
1: मैं कमिंग सर। सर सुनिए, एक मिनट सर,
4: एक मिनट आप अभी बैठिए, पहले इनसे निपट ले फिर आपसे बात
1: करते हैं। अरे सर, हमारा बहुत अर्जेंट मामला है सर।
4: अर्जेंट? तो क्या यहाँ सभी का मामला अर्जेंट रहता है? थाने में कोई शेर करने थोड़े ही आता है।
1: अरे सर, मगर अगर देर हो गई तो शहर से बाहर निकल जाएंगे वो।
4: अरे कौन शहर से बाहर निकल जाएगा? कोई तुम्हारा कोहिनूर हीरा लेकर भाग गया है क्या?
1: अरे सर, मेरे लिए तो मेरी कार ही बिल्कुल कोहिनूर है। पार्किंग पर से पता नहीं कौन उठा के ले गया। हाँ जी,
4: कार थ्रेफ्ट का मामला है।
1: हाँ जी, जी।
4: कार की उम्र, हुलिया, कोई फोटो वोटू है उसका?
1: हुलिया? ये क्या पूछ रहे हैं सर आप? मेरी बीवी नहीं, कार है वो, कार।
4: अरे भाई, उम्र तो सभी की होती है, चाहे कार हो या बीवी। हाँ, बीवियां अपना बर्थ सर्टिफिकेट जरा छुपा कर रखती हैं, पर कार के साथ ऐसा नहीं होता। बल्कि हम तो कहेंगे कि कार बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही परचेज की जाती है।
1: क्या कह रहे हो साहब?
4: हाँ, और हुलिया भी उसका जरूर होता है, जैसे रंग, रूप, मेक, मॉडल, कंपनी का नाम वगैरह।
1: हाँ, हाँ।
4: और हाँ, सबसे खास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब आप बताइए।
1: देखिए सर, ये लीजिए, ये एप्लीकेशन लिखकर मैं पहले ही लाया हूँ, सारा डिटेल लिखा है इसमें, ये देखिए।
4: ठीक है,
1: रंग रोगन सब है।
4: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो लगी थी ना गाड़ी में?
1: हाँ सर, और वो क्या कहते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा रखा है सर। हाँ जी,
4: फिर चिंता की कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी पूरी दुनिया में ढूंढ निकालेंगे हम।
1: वेरी गुड सर, वेरी गुड।
2: लेकिन अपन अपने ही समझते हैं।
4: अच्छा तो बेटा, कैसे निकल गई साहब की कार यहाँ से?
2: कार? अरे हाँ हवलदार साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ तो इन साहब ने कोई कारवां नहीं खड़ी करी है हमारे पास, और अगर की थी तो टिकट तो होगा इनके पास।
1: अरे सर, सर ये देखिए, आप झूठ बोल रहा है, ये टिकट मांगा था मैंने मांगा था, और पर इसने बोला कि टिकट का कट्टा खत्म हो गया है, प्रिंट में गया है, और जिम्मेदारी भी ली थी इसने कार की। ये हमारी मैम सर से पूछो आप।
3: हाँ सर, मेरे सामने की बात है, कह रहा था कि कार को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता यहाँ, और अब जब कार गायब हो गई है तो ये बड़ा स्मार्ट बन रहा है।
2: नहीं था।
3: हाँ,
2: ये दोनों मियाँ बीबी मुझे खाली पीली में फंसा रहा है।
1: क्या कह रहा है?
2: कहीं नो पार्किंग वगैरह में खड़ी कर दी होगी इन्होंने, और वहां से हो गई गायब, और अब सब मुझ गरीब से वसूली करना चाहते हैं। देखो तो हाल होती है। तो
4: अच्छा, तो तूने नहीं कहा था कि टिकट का कट्टा खत्म हो गया है, प्रिंट में गई है?
2: नहीं साहब, बिल्कुल नहीं किया था मैंने। भला मैं को कहूंगा ऐसा? मैं को कहूंगा? ये देखिए आप, ये देखिए, इतनी सारी टिकट की गड्डियां पड़ी है, ढेर लगा पड़ा है।
1: अरे तो ये बात है सर, सर ये बहुत मक्कार झूठा है, टिकट का कट्टा इसके पास है, फिर भी मुझसे झूठ बोला कि कट्टा खत्म हो गया।
2: नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, ये झूठ मूठ का मुझे फसा रहा है, यकीन मानिए आप।
4: अबे मैं तो तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। वो तो क्या है ना कि कोई शिकायत नहीं आती थी मेरे पास। अब चल तुझे बताता हूँ मैं, तेरा सारा कच्चा चिट्ठा पता कर रहा हूँ, ले चलो इसको थाने, अब वहीं से बात होगी। चले।
2: अरे ये क्या कर रहे हैं साहब हवलदार? अब मेरे ठेकेदार को अभी आप जानते नहीं है।
4: अच्छा, कोई मंत्री है क्या तेरा ठेकेदार?
2: जनाब मंत्री तो नहीं है, पर मगर क्या है क्या, वर्दी उतरवाने का दमखम रखते हैं।
4: अबे वर्दी उतरवाने का दम रखते हैं? उसके बाप ने दी है क्या ये वर्दी मुझे? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कार तूने ही उठवाई है, चोरों से मिला हुआ है तू। चल थाने वहीं निकालता हूँ तेरे पेट से अब सारे रात। चल।
2: अरे अरे साहब, बाल तो छोड़िए, अरे कॉलर पकड़ लीजिए, लेकिन गिरेबान तो छोड़िए साहब। अरे कर क्या रहे साहब?

0: चलो स्टैंड से तो पार हो गई गड्डी।
1: हाँ।
0: आप किसी तरह गराज भर में और पहुंच जाए। उफ, ये हाई सिक्योरिटी प्लेट ना लगी होती ना इसमें तो कुछ मुश्किल ना होती।
2: सही है बॉस, लेकिन जो करना है जल्दी करो बॉस। एक बार पुलिस के पास पहुंच गए ना वो तो चारों ओर नाकेबंदी शुरू हो जाएगी।
0: नहीं रे, इतनी तेज नहीं है इंडिया की पुलिस, वो तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का डर है। पुलिस वालों ने हर जगह कैमरे लगा रखे हैं, बस एक बार कहीं 5 मिनट रुककर ये जीपीएस जैमर इंस्टॉल कर दूं ना इसमें तो ढूंढते रह जाएंगे सबके सब।
2: यस,
1: आपको तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भयंकर नॉलेज है बॉस। अपनी बिरादरी में तो इतना नॉलेज देखने को ही नहीं मिलता।
0: बेटे इंजीनियरिंग पढ़ी है इंजीनियरिंग, चाहता तो कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लेता पर क्या करूं, रिसेशन के कारण नौकरी नहीं मिली, मजबूरी में पापी पेट के कारण ये सब करना पड़ रहा है। मुझे कोई शौक थोड़ी है ये चोर पुलिस का खेल खेलना।
2: तुसी ग्रेट हो बॉस, मेरी तो तकदीर ही खुल गई तुम्हारा शागिर्द बनके।
0: बस बस, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो ये देखना है जैमर कहां फिट किया जाए।
2: बॉस इस गली में मोड़ लो, इसकी भीड़ भाड़ में कैमरे ठीक से कैच नहीं कर पाएंगे इसे, और फिर भीतर उस कुलिया में आप जैमर फिट कर लेना।
0: जैमर तो फिट हो गया। आप करते रहे ट्रेस गड्डी को, यार गाड़ी तो झक्कास है।
2: हाँ बॉस,
0: 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए।
2: अरे बिल्कुल।
0: और सुन,
2: हाँ?
0: कुछ गड़बड़ हुई ना तो कवाड़ी को दे देंगे। लाख रुपए तो वो भी दे ही देगा।
2: हाँ बॉस,
0: घंटे भर में सारे नट बोल्ट खोलकर ऐसा हाल कर देगा इसका कि इसका मालिक भी इसे नहीं पहचान पाएगा।
3: अजी सुनिए, क्या नाम है आपका?
4: सुनील सर। सुनील।
3: हाँ सुनील जी, देखिए अब आप चिंता ना करें, आपकी कार की सारी जानकारी कंट्रोल रूम को दे दी गई है।
4: वेरी गुड सर।
3: जल्द ही कार की लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। बस अब एक काम करें आप,
4: जी, जी,
3: आप उस
4: जी।
3: मॉनिटर के सामने जाकर बैठ जाएं।
4: अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप है? चोर हमारी गाड़ी उड़ाई जा रहे हैं और आप हैं कि हमसे कंप्यूटर गेम खेलने को कह रहे हैं।
3: अरे नहीं भाई नहीं, ये गेम नहीं है, टेक्नोलॉजी है
4: जी।
3: हाँ, अब चोर पकड़ने के लिए पुलिस गली गली में उसका फोटो लेकर नहीं घूमती, अब तो बस फोटो कंप्यूटर में डाल देते हैं और सर्च का बटन दबा देते हैं।
4: इतनी एडवांस हो गई है सर अब इंडिया की पुलिस। विश्वास नहीं होता।
3: विश्वास हो जाएगा भाई, बस थोड़ा कोऑपरेट करो हम लोगों के साथ।
5: लग रहा है चोर बड़े माहिर हैं भाई, उन्होंने कार में जीपीएस जैमर इंस्टॉल कर दिया है इसलिए गाड़ी ट्रेस नहीं हो पा रही है।
4: क्या कह रहे हो सर?
5: पर एक काम करता हूँ
4: जी, जी।
5: हाँ पर ये देखिए, हमारे कैमरे पकड़ रहे हैं कार को। यही नंबर है ना आपकी गाड़ी का, लास्ट में 5219?
4: हाँ सर, यही है सर।
5: ये देखिए कैमरा, ये कैमरा नंबर B5 शो कर रहा है।
4: हाँ जी हाँ जी हाँ।
5: अभी 2 मिनट पहले ही गाड़ी गुजरी है यहाँ से।
4: अच्छा,
5: पर अब कहाँ गई होगी? कहाँ समझते नहीं था, शायद बाईपास की ओर मुड़ गई है
4: जी।
5: हाँ, पर थोड़ी देर बाद ही हमारे कैमरों की रेंज भी खत्म हो जाएगी।
4: फिर गई सर गाड़ी।
5: अरे परेशान नहीं हो, ये गाड़ी जाएगी कहाँ? पुलिस से बचकर जाना इतना आसान थोड़े ही है, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसे
4: जी।
5: हाँ पर काम जरा मुश्किल हो गया है, अब शहर से निकलने से पहले ट्रेस हो जाती तो यही घेराबंदी करके पकड़ लेते।
4: और अब क्या होगा सर?
5: अरे आप चिंता ना करें, अभी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए गाड़ी को निकले, भाई 100 की स्पीड से भी निकली होगी तो भी 16-17 किलोमीटर से ज़्यादा तो जा नहीं पाई होगी
4: जी। जी,
5: नाकेबंदी कर देते हैं।
4: हाँ जी।
5: अरे सर प्लीज ऐसा कीजिए कि रहीमगंज को भी मैसेज कर दीजिए।
4: हाँ, हाँ।
5: नाकेबंदी अलर्ट कर देंगे वो। और हाँ, टोल टैक्स वालों को भी अलर्ट कर दीजिए।
4: हाँ,
6: हेलो हेलो, रानी सराय टू रहीमगंज। हेलो। हाँ देखिए, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक कार है।
7: हाँ।
6: जी नोट करें
7: जी।
6: सफेद रंग।
7: हाँ।
6: मॉडल चाल्टो।
7: जी जी
6: जी, नोट किया सर।
7: जी श्रीमान जी।
6: अच्छा, धन्यवाद।
7: ओके सर।
6: अब देखिए जनाब, कुछ ही देर में आपकी कार आपके हाथ में होगी।
4: हाथ में होगी?
6: मेरा मतलब है कि आपके पास होगी।
8: अच्छा।
2: पीछे लग गई है।
0: अरे पीछे नहीं लगी रे, आगे लगी है। रहीमगंज थाने पर चेकिंग चल रही है, देख नहीं रहा है आगे कैसा जाम लगा हुआ है?
2: हाँ देख तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बॉस कि हम पकड़े जाएंगे।
0: अरे पकड़े कैसे जाएंगे, अकल क्या पुलिस वालों के पास ही है?
2: अब तो फिर क्या करोगे बॉस?
0: तू तो देखता जा, ऐसे ही नहीं तेरा बॉस हूँ मैं।
2: ये क्या बॉस, ये रास्ता तो
0: तू क्या सोचता है कि रोड पर खड़ी पुलिस से कहूं कि आजा भाई आ हमें गिरफ्तार कर ले, हमने कार चुराई है गधे कहीं के।
2: बॉस इस नंबर प्लेट का कुछ नहीं हो सकता, पहले तो हम लोग कितनी आसानी से इसे बदल दिया करते थे, फर्जी कागज भी बना दिया करते थे, पुलिस चेकिंग के बीच में भी हम लोग मूछ पर ताव देकर निकल जाते थे।
0: यही तो प्रॉब्लम है मेरे शागिर्द, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स भी ना, हम चोरों के खिलाफ एक गहरी साजिश है।
2: हाँ बॉस
0: धंधे पर चोट है सीधे सीधे ये, पर क्या करें, हमारी कोई यूनियन भी तो नहीं है कि हमारी आवाज उठाए वो और सरकार को बताए कि इस तरह से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
2: बॉस इसे बदलने की कोई तो टेक्निक होगी।
0: टेक्निक तो है, प्लेट्स तो मान लो किसी तरह हम बदल भी देंगे, पर ये जो विंड स्क्रीन पर जो स्टिकर चिपका है ना।
2: हाँ बॉस।
0: सबसे बड़ा जी का जंजाल ये है, इसके साथ कुछ भी छेड़ाछाड़ी करो तो ये नष्ट हो जाती है, फिर तो हम सीधे सीधे पकड़ में ही आ जाएंगे।
2: इसका कोई तोड़ क्यों नहीं है बॉस अपने पास, आखिर अपने पेशे में भी तो एक से बढ़कर एक रिसर्च रोज हो रहे हैं।
0: अबे वो भी निकल आएगा कभी ना कभी, पर अभी तो नहीं है।
2: क्या करें बॉस।
8: श्रोताओं रहीमगंज में घंटों गाड़ियों की चेकिंग होती रही, पुलिस ने एक एक करके सभी गाड़ियों की तलाश ली। इस बीच कई अनसुलझे रहस्य सुलझ गए, घरों से भागी हुई लड़कियां पकड़ी गईं, कई युवक युवतियां चेहरे छुपाते हुए नजर आए, हवाला व्यापार के करोड़ों रुपए पकड़े गए। पूरे देश में रहीमगंज पुलिस की शोहरत फैल गई। वहां के थाना प्रभारी मूछों पे ताव दे करके मीडिया को इंटरव्यू देते रहे, पर हाय रे सुनील, उस बेचारे का 4 लाख का कोहिनूर यानी कार नहीं मिली। रानी सराय की पुलिस परेशान थी क्योंकि कार उसके इलाके से चोरी हुई थी, पर रहीमगंज की पुलिस खुशी से नाच रही थी। सुनील से किसी को कुछ लेना देना नहीं था, सबको चिंता अपने अपने थाने की थी।
9: आखिर गाड़ी गई कहां?
5: सर मैं तो बराबर मॉनिटर पर नजर रखे हूं, पर गाड़ी ट्रेस नहीं हो रही है।
9: तो फिर आखिर गाड़ी गई कहां? जब इसी रास्ते से निकली तो रहीमगंज से क्यों नहीं गुजरी? ऑपरेटर तुम जरा स्क्रीन पर देखो, अच्छे से चेक करो कहां गई।
5: हाँ सर मुझे लगता है गड्डी बीच में कहीं मुड़ गई है। अब पर समस्या ये आ रही है कि जीपीएस जैमर के कारण जीपीएस सिस्टम भी इसे ठीक से ट्रेस नहीं कर पा रहा है।
9: अरे तो क्या कोई रास्ता नहीं बचा है अब? वो यूं ही हमारे इलाके से गाड़ी उड़ाकर ले जाएंगे और जनता को हम पुलिस वालों पर थू थू करने के लिए छोड़ जाएंगे।
5: नहीं सर एक रास्ता है सर।
9: हे तू जल्दी बोलो।
5: सर गूगल अर्थ का एक सिस्टम है, इंडिविजुअल ट्रैकिंग सिस्टम यानी ITS।
9: अच्छा।
5: इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन सर इसमें एक समस्या है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है।
9: तो फिर क्या फायदा, फिर तो परमिशन लेते लेते ही गाड़ी बिका जाएगी।
5: नहीं सर इसमें भी एक प्रोविजन है कि पब्लिक इंटरेस्ट का अगर काम है तो पुलिस इसका इस्तेमाल पहले कर ले और परमिशन बाद में ले ले।
9: अच्छा फिर तो बात बन जाएगी, तो करो इस्तेमाल इसका, परमिशन बाद में ले लेंगे। क्या हुआ नहीं दिख रही गाड़ी?
5: सर ITS में गाड़ी का नंबर तो डाल दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम केवल 5 किलोमीटर के रेडियस में ही एक्शन कर सकता है, इसलिए बार बार एरिया कोड बदल रहा हूँ और सर्च कर रहा हूँ सर।
9: लगे रहो भाई, मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
5: सर सर ये देखिए। हाँ? ये रही गाड़ी की लोकेशन।
9: अरे वाह
5: महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। मगर अब अपनी नजर में तो है, जिधर जिधर से भी गुजरेगी हमारा सिस्टम इसकी लोकेशन बताता रहेगा सर।
9: अब देखते हैं ये चोर बचकर कहां जाएंगे। मैसेज करता हूं अभी उस इलाके के थाने को। हेलो
7: जी श्रीमान जी, रहीमगंज थाना।
9: हाँ, नोट करें गाड़ी का नंबर।
7: जी
9: नंबर है 5219, रंग है सफेद।
7: सफेद
9: दूरी यही कोई 8 किलोमीटर है आपके थाने से।
7: बहुत अच्छे श्रीमान जी।
9: और जनाब गाड़ी की स्पीड 60-70 के लगभग है।
7: जी
9: बस 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी, आप बेरियल लगा दीजिए।
7: श्रीमान जी रिपीट, गाड़ी नंबर 5219 श्रीमान जी।
9: जी 5219 सफेद रंग की है।
7: जी सर
9: बेरियल लगवाइए जल्दी से।
7: जी जय हिंद।
9: जय हिंद।
5: अब सर मैं कंप्यूटर पर ही बैठा रहूंगा और लोकेशन देता रहूंगा उन लोगों को।
9: हाँ ये भी ठीक रहेगा।
10: रुक जाए, रुकता के नहीं। हाँ सर गाड़ी साइड में लगा।
11: सर मेरे पास टाइम नहीं है सर, सर मुझे जाने दीजिए सर। ये देखिए मेरे दोस्त की तबीयत खराब है सर।
10: तबीयत तो तेरी और तेरे दोस्त दोनों की अभी हम ठीक करते हैं। वो क्या है कि वो थाने में भी एक हाई फाई हॉस्पिटल होता है, जैसे हम लोग हवालात कहते हैं, उसमें लात घूसों से इलाज किया जाता है, समझा? फोर्स ट्रीटमेंट। और तू क्या सोचता है कि स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो तू सेफ हो गया है?
11: नहीं, ये सर हमारी गाड़ी है सर।
10: ये तेरी गाड़ी है
11: जी?
10: पेपर निकाल।
11: हाँ है
10: पेपर
11: जी,
10: जरा दिखा मेरे को।
11: अरे सर वो कागजात सर, मैं सर दोस्त को जल्दी हॉस्पिटल लेने के ले जाने के चक्कर में।
10: बेटा अब मुझे भी जल्दी है तुम दोनों को हवालात ले चलने की। और हाँ वो गाड़ी मालिक भी आ ही रहा होगा अभी।
11: हैं? गाड़ी मालिक इतना फास्ट सर?
10: अरे तो तू क्या सोचता है कि बस चोर ही फास्ट होते हैं? और पुलिस तो स्पीड ब्रेकर पर चलती है। अबे इंडिया की पुलिस है ये, समझा? कोई ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ये चोरी ढूंढने में जितना पैसा खर्च होगा उतने से फरियादी को नई कार ही खरीद कर दे दो। अरे हम तो 1 रुपया की चोरी पकड़ने के लिए भी 1 लाख भी खर्च कर दे तो कम नहीं है, पर चोर को पूरा पकड़ कर ही मानते हैं।
11: सर ये पहले ही बता दिए होते ना।
8: तो श्रोताओं ये था हाईटेक टेक्नोलॉजी पर आधारित हमारा हास्य नाटक कार की चोरी, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दिलकश जुगलबंदी, जिसमें 5 वाद्य यंत्र शामिल हैं। सितार पर हैं स्मिता वाजपेयी, संतूर पर श्रुति अधिकारी, वायलिन पर डॉक्टर एम ललिता, मृदंगम पर लावण्य राजमणि और तबले पर हैं मिताली विचूरकर। तो आइए लुत्फ लेते हैं इस बेमिसाल जुगलबंदी का।

0: तो श्रोताओं, इस खूबसूरत जुगलबंदी के बाद अब आपको सुनवाते हैं डॉक्टर मोनिका शाह का गायन।
1: प्रथम प्रहर का राग रागी अमन की प्रस्तुति कर रहे हैं। देवो दान मोहे मांगत सुर भीख दास तिहारो। इट्स इन विलंबित एक ताल एंड इट विल बी फॉलोड बाय मध्यलय तीन ताल। रटना लगी तोरे बलमा।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुर सेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है। उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी, फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं। तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुर सेन, ठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: May I come in, sir?
3: Yes, come in. फरमाइए।
2: सर, ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपेंसेशन का, सर।
3: कंपेंसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर, आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी? अजी बिल्कुल है, पैसे लेकर शिक्षा बेचती है। आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर, आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
3: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
2: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
3: अच्छा,
2: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
3: क्या कह रहे हो?
2: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
3: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
2: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
3: और अगर हम ना बोल दें तो?
2: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
3: ओह नो।
2: ओह यस, बोलिए सर, कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
3: ठीक है मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
2: शौक से करिए, एक हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने एक हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर वामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए, बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत
1: श्रीमान।
0: हुए हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
0: अरे सर
1: सर, मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
1: धन्यवाद सर, मैं बताता हूँ सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
1: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया। 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कपाल भारती जी, अरे
0: हाँ,
1: वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो
1: ना ना ना
0: गई।
1: ना ना ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माताजी? वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने।
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित तो हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं रही सर वो।
0: ओ भाई, बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुरसेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे, मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे, पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर।
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है, रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर।
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर।
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो।
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: ये है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और ये है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप।
3: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
4: हाँ हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं।
3: सर 7।
4: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
3: कह दिया ना सर, 7 वचन, फाइनल आंसर।
4: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप।
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
4: हाँ।
3: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए, 7 ही ना।
4: चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे।
3: अंधे कवि।
4: हाँ
3: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
4: एक क्लू देता हूँ आपको।
3: हाँ।
4: वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया।
4: हाँ।
3: तुलसीदास।
4: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना।
4: हाँ।
3: जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
4: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए।
3: जी।
4: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
4: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ।
3: जी।
4: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए, अब बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
4: गोविंदा।
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
4: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
4: अरे
3: अरे, ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर?
4: ठीक है। चतुर्सेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
4: हाँ।
3: सर मुझे नहीं मालूम।
4: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
4: बताइए।
3: श्री देवी।
4: श्री देवी, अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
4: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है। आइए श्रीवास्तव जी।
2: धन्यवाद जी। चतुर्सेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है। आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
2: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2 × 2 = 4। सर 4 दिनों में।
2: थोड़ा सोच कर चतुर्सेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
2: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को 2 दिनों में निपटा देगा। लेकिन जब 2 आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो 2 दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
2: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
2: वो कैसे?
3: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, 2-2 लोगों के 2 गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
2: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारी आदमी वादमी को, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
3: 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
2: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
3: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी। बस हो गया, 12 पेंसिलें और 10 रुपए हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
2: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
3: सर 50 किलोमीटर का।
2: मगर कैसे?
3: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ, कम जरूर जा सकती है।
0: ठीक है चतुरसेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
3: जी,
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
3: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
0: मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
3: हाँ, तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
0: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
3: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
0: अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
3: बहन छायावती ने।
0: मगर वो कैसे?
3: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए, बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
0: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
3: सर, जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
0: वेरी गुड। एक उदाहरण देंगे इन करों का?
3: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेबकटी अप्रत्यक्ष कर।
0: अच्छा, अब एक आखिरी सवाल।
3: जी,
0: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
3: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर, 36 साल।
0: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
3: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
0: ठीक है चतुरसेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
3: जी बेहतर सर।
0: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कन्हैया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
2: जी सर।
0: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
2: सर हमारे पास एक आइडिया है।
0: वो क्या?
2: सुनिए सर।
0: अरे वाह,
2: सर
0: बुलाइए। चतुरसेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%, लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
2: जी सर,
0: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
3: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं, कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए।

0: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर। आपने तो बताया ही नहीं था सर, ये टेस्ट का हिस्सा है।
1: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर सिंह?
2: बताइए बताइए,
1: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।
2: अभी हमारे मिश्रा जी के सामने।
1: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
0: सर सर सर, ऐसा ना करिए सर। मैं 70,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर, लाइए ये चेक मुझे दे दीजिए।
2: बिल्कुल नहीं भुंजी, भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
0: सर।
2: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।

तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब हमारा साथ ज्ञात अल्पज्ञात और गुमनाम नायकों की गाथाएं और उनकी किस्से कहानियां जरूर सुनिए रेडियो आजाद हिंद में। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट भी सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, स्पॉटिफाई पर, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट, यूट्यूब पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट और यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। बस कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे मंडल एक के 165 के भाग एक का वाचन। भक्ति संगीत सुनिए कार्यक्रम 5:10 पर। 6 बजे का समय है वतन का राग कार्यक्रम का, जो आज केंद्रित है गोपाल गणेश आगरकर की जयंती पर। प्रकृति और मनोविज्ञान, इस पर आधारित हमारा प्रकृति पुकार कार्यक्रम सुनिए 6:30 पर। 7 बजे का समय है योग संवाद कार्यक्रम का, जिसमें योग वशिष्ठ संसार के पदार्थों की परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता का भाग 79 आप सुनेंगे। शिव भाई गुप्ता निमाड़ी गायन भाग 2 आप सुनिए विशेष कार्यक्रम पर 7:30 पर। 8 बजे आप रेडियो रिपोर्ट सुनिए नृत्यांजलि। हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा, बाबूराव कोकाटे की जयंती पर आधारित है। 9 बजे स्वास्थ्य चर्चा सुने, जिसमें आप सुनेंगे नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के बारे में रत्नेश सोनी से विशेषज्ञ निहारिका पंसोरिया की बातचीत। युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम पेश किया जाएगा 9:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे भाग 97 का प्रसारण। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। वेद, पुराण, आख्यान, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत हैं, धरोहर हैं, और इसी पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 165 से वाचन। ऋषि हैं इंद्र, मरुद्गण, अगस्त्य, मैत्रावरुणी। देवता हैं मरुद्वानिंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
1: कया शुभा सवयसः सनीडाः समान्या मरुतः सम मिमिक्षुः कया मती कुत एतास एतेर्चन्ति शुष्मं वृषणो वसूया। एक ही स्थान में रहने वाले समवयस्क मरुद्गण किस शुभ तत्व से सिंचन करते हैं, कहां से आकर किस मति से प्रेरित होकर ये बलशाली मरुद्गण ऐश्वर्य की कामना से बल की उपासना करते हैं। कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर युवानः को अध्वरे मरुत आववर्त शीनाम इव ध्रजतो अंतरिक्षे केन महामनसा रीरमाम। सदा युवा रहने वाले ये मरुद्गण किसके स्तोत्रों को स्वीकार करते हैं, इन मरुतों को कौन यज्ञ की ओर प्रेरित कर सकता है। अंतरिक्ष में बाज पक्षी के समान विचरण करने वाले इन मरुतों को किन उदार विशाल हृदय की भावनाओं से प्रसन्न करें। कुतस्त्वमिंद्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं त इत्था संप्रिच्छसे समराणः शुभानैर् वोचे स्तन्नो हरिवो यत्ते अस्मे। हे महान इंद्रदेव, आप अकेले कहाँ जाते हैं, आप ऐसे क्यों हैं? हे अश्वों से युक्त शोभनीय इंद्रदेव, आपने सानिध्य में रहने वालों की आप सदैव कुशल क्षेम पूछते रहते हैं, अतः हमारे हित की जो भी बात आप कहना चाहें वह कहें। ब्रह्माणि मे मतयः शम सुतासः शुष्म इयर्ति प्रभृतो मे अद्रिः आशासते प्रति हर्यन्त्युक् थेमा हरि वहतस्ता नो अच्छ। इंद्रदेव की अभिव्यक्ति मननशील स्तुतियां एवं सोम मेरे लिए सुखकारी हों। मेरा बलशाली वज्र शत्रुओं की ओर जाता है, स्तुतियां मेरी प्रशंसा करती हुई मेरी तरफ आती हैं। दोनों अश्व मुझे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। अतो वयमन्तमेभिर् युजानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्वः शुम्भमानाः महोभिरेताम् उपयुज्महे न्विन्द्र स्वधामनु हीनो बभूथ। हम अपने इंद्रियों रूपी अति बलशाली अश्वों से युक्त होकर महान तेजस्विता से स्वयं को सज्जित करके उनका उपयोग शत्रुओं के विनाश के लिए करते हैं। अतः हे इंद्रदेव, आप अपनी धारण क्षमताओं को हमारे अनुकूल बनाएं। क्वस्या वो मरुतः स्वधा सीद्यन मामेकम् समधत्ता हिहत्ये अहम् ह्यु ग्रस्त विषयस्तु विश्मान विश्वस्य शत्रो रनमम वधस्नैहि। हे मरुद्गणों, तुम्हारी वह स्वाभाविक शक्ति कहाँ थी जिसे तुमने वृत्र वध के अवसर पर अकेले मुझ इंद्र में स्थापित किया था? वैसे तो मैं इंद्र स्वयं ही शक्तिशाली बलवान शूरवीर हूँ। मैंने अपने शस्त्रास्त्रों से भयंकर शत्रुओं को भी झुकने के लिए विवश कर लिया है।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 165 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: भगवत आराधना के सुमधुर भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। तो आपके लिए पेश है कार्यक्रम भक्ति संगीत। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न कीजिए, परखने का नहीं।

फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती रहती है।

एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा।

उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, चरित्र और साहस चाहिए।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। अगर तुम सोचती हो कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़े वेतन की नौकरी करूंगा, खूब पैसे कमाकर तुम्हें अमीरी में रखूंगा, तो तुम ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैंने ये निश्चय किया है कि पढ़ाई के बाद मैं अपना पूरा समय देश और समाज के कल्याण में व्यतीत करूंगा। पैसा मुझे उतना ही चाहिए जिससे दो समय की रोटी मिल जाए। अपनी माँ को एमए की पढ़ाई के दौरान ये पत्र लिखने वाले महान देशभक्त, समाज सुधारक और पत्रकार थे गोपाल गणेश आगरकर। शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, जातिगत भेदभाव के विरोध और वैज्ञानिक सोच के प्रचार प्रसार की दिशा में उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। गोपाल गणेश आगरकर का जन्म 14 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के तेंबू नामक गांव में हुआ था। किसी समय ये परिवार अत्यंत संपन्न था, लेकिन पिता गणेश पंत की पीढ़ी तक आते आते परिवार निर्धन हो गया था। गोपाल गणेश आगरकर की आरंभिक शिक्षा उनके ननिहाल कहाड़ में हुई। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे, लेकिन गरीबी के कारण बचपन में ही उन्हें मुंसिफ की अदालत में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। रत्नागिरी में उनके एक रिश्तेदार अच्छे पद पर थे। गोपाल गणेश आगरकर ने अब उनके पास जाकर पढ़ने का इरादा किया और क्लर्क की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मुंसिफ साहब उनकी प्रतिभा से इतना अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने उनका त्यागपत्र तो स्वीकार किया ही, रास्ते के खर्चे के लिए 75 रुपये भी दिए। 16 वर्ष के आगरकर 300 मील पैदल चलकर रत्नागिरी पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि उनके रिश्तेदार का निधन हो चुका है। परिवार ने उन्हें आश्रय तो दिया, लेकिन परिवार बहुत कुछ कर सकने में समर्थ नहीं था। गोपाल गणेश आगरकर कुछ छोटे मोटे काम करते हुए पढ़ाई के लिए स्कूल भी जाते। इसी कठिनाई में एक दिन वो देर से स्कूल पहुंचे। अध्यापक ने उन्हें डांटकर कहा, तुम अत्यंत लापरवाह हो, मुझे नहीं लगता कि तुम जीवन में कुछ कर सकोगे। इस पर बालक आगरकर ने जवाब दिया, अगर मैं आपकी तरह एमए नहीं हुआ तो नाम बदल दूंगा। कठिन परिस्थितियों में 9वीं तक पढ़ाई करके वो वापस कहाड़ आ गए। इसी बीच उनके मामा का तबादला अकोला हो गया। वो बालक आगरकर को अपने साथ ले गए। मामी वहां नहीं थी, इसलिए गोपाल गणेश आगरकर खाना बनाकर मामा को खिलाते और स्कूल में पढ़ने चले जाते। इस तरह उन्होंने 19 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कठिनाइयां बहुत थीं, लेकिन गोपाल गणेश आगरकर आगे पढ़ना चाहते थे। उनके पास अपनी मेधा और दृढ़ संकल्प के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके सभी अध्यापक उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। अध्यापकों ने कुछ चंदा किया और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पुणे भेज दिया। पुणे का डेक्कन कॉलेज उन दिनों महाराष्ट्र में विद्या का प्रमुख केंद्र था। गोपाल गणेश आगरकर जब पुणे आए तो उनके हाथ में 60 रुपए थे, मन में अडिग संकल्प और आंखों में थे देश और समाज के लिए अनगिनत सपने।

गोपाल गणेश आगरकर ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान पैसों की व्यवस्था के लिए अकोला के एक समाचार पत्र को पुणे से समाचार भेजना शुरू किया। उनका वेतन था 5 रुपए महीना। इसके साथ ही उन्होंने भाषण और लेख प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना आरंभ किया और कई प्रतियोगिताएं जीतीं। जो पैसे मिले उनसे ही कॉलेज की फीस, कॉपी किताब और भोजन की व्यवस्था की। इस तरह बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब एमए की परीक्षा पास आई तब उनके पास फीस के पैसे नहीं थे। उन दिनों महाराष्ट्र में नाटकों की बड़ी धूम थी। अब उन्होंने नाटक मंडली के लिए नाटक लिखना आरंभ किया ताकि कुछ पैसे जुटा सकें। वो दिन भर पढ़ते और रात में नाटक लिखते। जब ये खबर उनके प्राध्यापक छत्रे जी तक पहुंची तो उन्होंने उनकी फीस खुद जमा करवा दी। लेकिन कॉलेज के इन संघर्ष भरे दिनों ने आगरकर जी के जीवन की दिशा तय कर दी थी। कॉलेज के दिन के दो संयोग ऐसे हुए जिनका संबंध उनके भावी जीवन से रहा। पहला, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मित्रता, और दूसरा, समाचार पत्रों के लिए लेखन। तिलक जी के साथ उनकी मित्रता आगे भी जारी रही क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक था, लेकिन उनके काम करने के तरीके में थोड़ा अंतर था। गोपाल गणेश आगरकर का विचार था कि देश की उन्नति के लिए समाज सुधार सबसे आवश्यक है, जबकि तिलक जी का कहना था कि देश की आजादी के बाद समाज सुधार का काम आसान हो जाएगा। लेकिन दोनों इस बात पर एकमत थे कि ब्रिटिश राज में सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उससे देश प्रेम नहीं बल्कि अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति की भावना छात्रों में भरी जाती है। इसलिए दोनों ने प्रसिद्ध विद्वान विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के साथ मिलकर पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ जनता में जागृति पैदा करने के लिए तिलक जी ने दो समाचार पत्र, केसरी और मराठा का प्रकाशन आरंभ किया। आगरकर जी ने केसरी का संपादन संभाला। दोनों पत्रों में जनता की बात अत्यंत दृढ़ता के साथ रखी जाती थी। अन्याय और शोषण के विरुद्ध एक हुंकार थी इन पत्रों में। उन दिनों कोल्हापुर के महाराज पर जो अन्याय हो रहा था उसके विरोध में इन पत्रों में कई लेख प्रकाशित हुए, जिसके कारण आगरकर जी और तिलक जी पर मानहानि का मुकदमा हुआ और दोनों को जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद महाराष्ट्र की जनता ने जिस उत्साह के साथ दोनों का अभिनंदन किया उसने जनता के बीच उनकी प्रसिद्धि को सिद्ध कर दिया। सन 1884 में डेकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और फर्ग्यूसन कॉलेज अस्तित्व में आया। तिलक जी और आगरकर जी इसमें प्राध्यापक हुए। उधर मराठा और केसरी दोनों ही पत्र उनकी विचारधारा के संवाहक बने, लेकिन कुछ विशेष मुद्दों पर दोनों में मतभेद था, इसलिए आगरकर जी केसरी के संपादन से अलग हो गए। उन्होंने सुधारक नामक नया साप्ताहिक पत्र निकालना आरंभ किया। इस तरह दोनों की राहें अलग हो गईं, लेकिन दोनों एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य के लिए आजीवन जुटे रहे। दोनों की ही प्राथमिकता में सबसे पहले था भारत।

कुछ समय बाद तिलक जी ने डेकन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ दी। उधर गोपाल गणेश आगरकर फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद पर थे और वो आजीवन इस पद पर बने रहे। दरअसल आगरकर जी बड़े उदार विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया। उन्होंने अपनी पत्रिका सुधारक के जरिए छुआछूत और जाति प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोग गोपाल गणेश आगरकर को अपना गुरु और समाचार पत्र सुधारक को अपना मुख्य पत्र मानने लग गए, लेकिन आम जन के बीच उनका विरोध बढ़ता जा रहा था, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा और विधवा विवाह के विषय में उनके प्रगतिशील विचार समाज को अप्रिय लगते थे। आगरकर जी विधवा विवाह के पक्षधर थे। उनका ये भी कहना था कि लड़कों के विवाह की उम्र 20-22 वर्ष और लड़कियों की कम से कम 15-16 वर्ष होनी चाहिए। 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा और सह शिक्षा के वो समर्थक थे। उनके मन में महिलाओं के अधिकारों के विषय में चिंता बचपन से ही उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी दो विधवा मौसी और चाची की पीड़ा को बहुत पास से देखा था। इसीलिए उन्होंने स्त्रियों को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए निरंतर आवाज उठाई। जब महर्षि धोंडो पंत कर्वे ने स्वयं विधवा विवाह किया, तब आगरकर जी ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया। गोपाल गणेश आगरकर ने अंधविश्वास के विरुद्ध सदैव लड़ाई लड़ी। वो तर्क और समानता की जमीन पर जीवन को देखते थे। उन्होंने सदा नैतिकता को धर्म से अलग करके देखा। वो स्वयं अनीश्वरवादी थे, लेकिन अपनी पत्नी को कभी भी उन्होंने पूजा करने से रोका नहीं। इस तरह वो एक अत्यंत प्रगतिवादी व्यक्ति थे। उनकी विचारधारा से तत्कालीन समाज अपना सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। यही कारण है कि उन्हें हत्या की धमकी दी गई। जीते जी उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और उनके समाचार पत्र सुधारक की होली जलाई गई। लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति अटल थे। वो अत्यंत निर्भय थे। भीषण सामाजिक विरोध के बावजूद वो अपनी राह पर लगातार चलते रहे। उनका एक ही नारा था, जो उचित है वो कहूंगा और जो संभव है वो करूंगा। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और 17 जून सन 1895 को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर तिलक जी और गोखले जी तुरंत उनके पास दौड़े आए, लेकिन आगरकर जी अनंत की यात्रा पर निकल चुके थे। बस उनके सिरहाने एक पुड़िया में कुछ रुपए रखे थे और उस पुड़िया पर लिखा था, ये रुपए मेरी अंत्येष्टि के लिए रखे हैं। इस तरह एक महान आत्मा की विदाई हुई। शत शत नमन उनके तप, साधना और संघर्ष को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार में मैं हूँ मनीषा और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर पारुल ऋषि, जो पर्यावरण मनोविज्ञान, जलवायु परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में जानी मानी शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। आप पिछले 32 वर्षों से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM में प्रोफेसर और सेंटर फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेयरपर्सन हैं। पर्यावरण और मानव व्यवहार के संबंधों पर उनके 110 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद मनीषा जी।
0: आज हम सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि अक्सर हम सुनते हैं कि प्रकृति के बीच में समय बिताने से मन शांत होता है, इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या है?
1: देखिए, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हर समय हम लोग मोबाइल और स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और उससे जो किरणें निकलती हैं वो हमारे दिमाग पर किसी न किसी तरह से प्रभाव डालती हैं। तो उसका जो प्रभाव है वो हम देखते हैं हमारे व्यवहार में। आजकल हम देखते हैं टीनएजर्स के व्यवहार में चिड़चिड़ापन, और अगर आप उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करें तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रकृति के पास होते हैं तो आप उन्हीं बच्चों का व्यवहार जब आप देखेंगे कि वो प्रकृति के पास हैं, वो पेड़ों के साथ हैं, वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यवहार आपको उनका नहीं मिलेगा। तो ये सच बात है कि प्रकृति के साथ रहने से हमारा व्यवहार शांत होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, हम एक अपनेपन की अनुभूति करते हैं कि जैसे हम अपने साथ हैं। तो मनोविज्ञान में अपने साथ होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व के साथ हैं, अपने बारे में कुछ कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, ये अनुभूति हमको प्रकृति के साथ जो है ये काफी अच्छे तरीके से होती
0: है। मैडम, माइंडफुलनेस कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि इस पर भी आजकल बहुत बातें हो रही हैं, इवन सोशल मीडिया पर हम ये चीजें बहुत देखते हैं, माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है क्या?
1: ये माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली बुद्धिस्ट फिलोसफी से आया है और इसका जो है पहले तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा था, थेरेपीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पर्यावरण से संबंधित विषयों में भी माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं। एक वैम्सलर ने स्वीडन में काफ़ी स्टडी माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट पर की है। इसका मतलब यह है कि आप जिस परिस्थिति में जहाँ हैं आप वहीं पर हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति मिला तो हम, या किसी हम परिस्थिति में हैं, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, इस तरह का जो हमारा एक इवैल्यूएटिव टाइप का, जजमेंटल टाइप का एटीट्यूड जो होता है ना, इसका ऑपोजिट इज माइंडफुलनेस, कि हम हर परिस्थिति को वैसे देखें जैसी वो है। सो तथागत का जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि इट इज एज इट इज, तो इसमें हम हर समय इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे भी होते हैं। तो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो भी परिस्थिति है उसमें खो जाएं, उसी में एब्जॉर्ब हों अपने आप को। तो नेचर में जब हम होते हैं, तो जब हम नेचर बेस्ड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं, तो उसमें हम जब पेड़ों के साथ हैं, हम जब नदी के किनारे बैठे हैं, नर्मदा के किनारे बैठे हैं, तो हम उस पूरे एनवायरनमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। तो दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट। तो इससे हमारा जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं उनसे कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है और हम लोग एक परिस्थिति में अपने आप को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं।
0: एक चीज और है कि आपकी बात से ही मुझे वो स्थिति प्रज्ञ हमारे यहाँ बोला जाता था कि स्थिति प्रज्ञ हो जाइए तो सारी स्थितियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। एक बात और मैडम आती है कि जब हम बहुत थक जाते हैं और ऐसे वक्त पे अगर हम ठंडे पानी में पैर डाल लें या हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें सुकून मिलता है। आजकल आप भी देख ही रहे होंगे इस चीज़ को कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि माइंड रिलैक्स करने के लिए आपको प्रकृति का संगीत सुनना चाहिए, तो ये बात सच है क्या?
1: पर्यावरण मनोविज्ञान में मेरी शिक्षा हुई है तो मेरा काफ़ी रिसर्च इस फील्ड में रहा है। तो बहुत सारी इस तरह की रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं जो ये बताती हैं कि आप अगर पर्यावरण के साथ हैं तो आपका अवसाद आप में कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, आपका स्ट्रेस रिलीव होगा, और इसीलिए लोग पहाड़ों के पास जाते हैं। क्योंकि एक स्टडी मैं आपको कोट करके बताना चाहूँगी कि एक मनोवैज्ञानिक है अल्रिच, उन्होंने एक स्टडी की थी, सर्जरी हुई थी पेशेंट्स की। सो उन सर्जरी पेशेंट्स को जब हॉस्पिटल में वो एक रूम में वो लोग थे, तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स को ऐसे रूम में रखा जहाँ खिड़की से पेड़ पौधे और हरियाली दिख रही थी, और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को रखा कि जिनको एक कॉन्क्रीट की वॉल दिख रही थी खिड़की से। तो दोनों ग्रुप्स की उन्होंने फिर बाद में उनकी मनस्थिति को और सर्जरी से उनका पोस्ट सर्जरी जो रिकवरी हुई तो उसको उन्होंने कंपेयर किया, तो उन्होंने देखा कि जो पेशेंट्स हरियाली देख रहे थे खिड़की से, उनकी रिकवरी सेम सर्जरी से ज्यादा फास्ट हुई इन कंपैरिजन को वो लोग जिनको कॉन्क्रीट की वॉल दिख रही थी। तो इस रिसर्च से उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि हम लोग जब नेचर के पास होते हैं तब हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ जो है और वेलबींग को जो है वो नेचर प्रमोट करती है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नेचर के साथ रहना हमारे लिए जो है वो खाली एक सुखद अनुभूति नहीं है, बल्कि ये हमारे शारीरिक रोगों को भी कम करती है, रोगों के प्रभाव को कम करती है, और हम एक अच्छी फीलिंग हमारे अंदर जो है ना ये प्रोवाइड करती
0: जी है। मैडम, दूसरी तरफ ये भी सुनने में आता है कि कोई पेड़ मान लीजिए सूख रहा है और उससे आप प्यार से जाकर उस पेड़ पर हाथ फेरने लगें या उससे बातें करने लगें, कई लोग करते भी हैं ये कि पेड़ के नीचे गए और बातें भी कर रहे हैं, क्या पेड़ों का भी कोई मनोविज्ञान होता है?
1: देखिए, इस क्षेत्र में मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मैं मनुष्यों के मनोविज्ञान के बारे में ही जानती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य जो हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। सो हम लोग जब पर्यावरण के साथ होते हैं तो पर्यावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उससे हमारी मनस्थिति जो है वो इम्प्रूव करती है। तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसा भी होता होगा कि हम अगर पेड़ों के साथ अच्छे तरह से व्यवहार करेंगे और उनका ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की रिसर्च स्टडीज तो काफी हुई हैं। एक हॉर्टिकल्चर थेरेपी आजकल काफी पॉपुलर है। हॉर्टिकल्चर थेरेपी में यह है कि आप जब पेड़ पौधों के साथ होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बागवानी करते हैं। एनिमल्स के साथ तो हम लोग देखते ही हैं कि लोग जो पेट्स रखते हैं या गायों का जो है देखभाल करते हैं, तो ये सारा आप देखेंगे कि उनकी साइड से भी एक उसी तरह की रिस्पॉन्स आती है। तो जब हम लोग पेड़ों को प्रभावित करते हैं तो पेड़ भी हमको प्रभावित करते हैं, इस तरह की एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो बागवानी वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हॉर्टिकल्चर थेरेपी, वो यही है कि जो लोग बागवानी में जुड़े रहते हैं, पेड़ों का ध्यान रखते हैं, आपने कई बार सुना होगा कहते हैं कि माली रखते हैं तो पेड़ उतने अच्छे ग्रो नहीं करते, लेकिन अगर आप खुद भी साथ में देख रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो पेड़ों की ग्रोथ बेटर होती है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स और आपका उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है
0: जी।
1: और रिलेशनशिप जो है ये पेड़ों की ग्रोथ को डेफिनेटली प्रभावित करता है
0: जी। मैडम, आपने चूंकि अभी पेट्स की बात की, तो घर में अगर कोई पालतू जानवर रखते हैं तो क्या उससे भी चिड़चिड़ापन मनुष्यों में और कहीं ना कहीं अवसाद कम होता है?
1: मनोविज्ञान तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप पेट्स रखते हैं तो आप ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं कि कुछ लोग जो जिनका मनुष्यों के साथ बहुत अच्छा जो है वो बातचीत खुल के नहीं कर पाते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अंतर्मुखी उनका जो व्यवहार होता है, तो उन लोगों को लगता है कि वो अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपना पेट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, और डेफिनेटली पेट्स भी उसको रेसिप्रोकेट उसी तरह से करते हैं। तो मेरा मानता है कि डेफिनेटली ऐसा होता होगा।
0: आपने जो कहानी सुनाई कि कुछ लोगों को बंजर जमीन दिखाई गई, एक वॉल दिखाई गई, और कुछ लोगों को हरियाली, ये तो एक थेरेपी के तहत किया गया और रिसर्च के तहत किया गया, लेकिन आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स बने जा रही हैं और हरियाली कम होती जा रही है, तो आपको लगता है जो हिंसा है, जो चिड़चिड़ापन है लोगों में, क्या उसका रीजन कहीं ना कहीं प्रकृति से दूरी है, आप मानती हैं?
1: बिल्कुल है, और ये चीज रिसर्च से प्रूव हो चुकी है। आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज का भी कॉन्सेप्ट आजकल वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो जो वार्म कंट्रीज हैं वहां पर वायलेंस ज्यादा है, और आप देखेंगे कि समर मंथ्स में वायलेंस के इंसिडेंट्स जो हैं वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये वायलेंस और ज्यादा बढ़ रहा है जितना हम टेक्नोलॉजी के करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर समय, जो समय तो वही 24 घंटे है, अब हम उसमें अगर ज्यादातर समय अपने मोबाइल और स्क्रीन के साथ निकालेंगे तो जो समय, और वर्क तो आपको करना ही है जो भी आप काम करते हैं, तो जो समय कम होता है वो प्रकृति के साथ रहने का ही समय कम होता है, और उसी का ही प्रभाव किसी ना किसी तरह से हमारे मनोस्थिति पर पड़ता है, और डेफिनेटली बच्चों में जो चिड़चिड़ापन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चों में क्राइम बढ़ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, मतलब माँ बाप भी बच्चों को जितना टाइम देते थे वही मोबाइल से ही वही टाइम कर्टेल हो रहा है हर जगह। तो कुल मिला के हम देखें कि आपसी रिश्तों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, प्रकृति के साथ रहने का समय कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये दो चीजें मुझे मनोवैज्ञानिक की उससे समझ में आ रही हैं कि हम लोग प्रकृति के साथ स्पेंड करने वाला टाइम और अपने रिश्तों को सुदृढ़ करने में लगने वाला टाइम, ये दो टाइम्स हमारे सबसे ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उसके लिए हमको बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है।
0: और यहाँ पर एक बात मैं आपकी बात में और जोड़ना चाहती हूँ कि हम प्रकृति को भी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं। कई बार मैंने जब इस तरह की बातें करूँ कि पेड़ों के पास बैठो, तो मैं देखती हूँ कई घरों में बच्चे एक धीमा सा संगीत लगा लेंगे और स्क्रीन पे पेड़ आते रहेंगे या बहुत अच्छी हरियाली या पहाड़ दिखते रहेंगे। तो स्क्रीन की प्रकृति से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
1: बिल्कुल, स्क्रीन की प्रकृति से आप ये मान सकते हैं कि जिन लोगों को ये सुविधा नहीं है, जो ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहां पर प्रकृति उपस्थित नहीं है, हालांकि प्रकृति तो सभी जगह उपस्थित होती है, लेकिन इतना आपके पास समय नहीं है कि आप स्पेंड कर सकें, तो एक सब्स्टिट्यूट की तरह से वो लोग यूज करते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली में प्रकृति के साथ हैं, तो जो प्रकृति की सुगंध आप अनुभव करते हैं, जो पक्षियों का कलरव आप उनको साथ में देखते हुए अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें स्क्रीन से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, लेकिन हम कह सकते हैं 10-20% कंपनसेशन उसका जो है वो स्क्रीन के थ्रू हो सकता है।
0: मैडम, आप बच्चों के बीच में बहुत, क्योंकि IFM में हैं तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे, बहुत आपका क्या अनुभव है इन चीज़ों को लेकर, बच्चों को लेकर? क्योंकि आपने पहले भी कहा कि बच्चे आजकल थोड़ा सा बात करने से बचने लगे हैं, कटने लगे, नई जनरेशन जो है उसको डील करना थोड़ा टफ होता जा रहा है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बच्चों को आजकल आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते, ये स्थिति को आपको समझ लेना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के साथ ही हम उनको किस तरह से प्रकृति से जोड़ सकते हैं, यही हमको सोचना है। तो ज़्यादातर फैमिलीज में अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हो कि मॉर्निंग वॉक में कम से कम साथ में जाएं, भोपाल जैसे शहर में तो हम कह सकते हैं इस तरह की बहुत सुविधाएं हमको उपलब्ध हैं कि हम अपने घर से बाहर निकले और आपको एक बहुत छोटे से एरिया में जाके ही आपको प्रकृति के साथ आपका जो है संबंध हो सकता है। तो पेरेंट्स अगर साथ में बच्चों के साथ जाएं, प्रकृति के साथ वॉक करें, वहां पर आप बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करें। आजकल बर्ड वॉचिंग भी एक माइंडफुलनेस के लिए हम लोग एज थेरेपी की तरह से यूज करते हैं। आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं या आप किसी भी नेचुरल एरिया में, अर्बन एरिया में जा रहे हैं और वहां पर आप पक्षियों को देख रहे हैं और पक्षियों के फोटोग्राफी भी करते हैं लोग बर्ड्स की, लेकिन उसके अलावा पक्षियों को देखना, उनकी आवाजों को सुनना और उनकी आवाजों के अंतर को पहचानना, ये चीज आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है कि आप वॉइस साउंड्स में डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं कि ये एशियन फ्लाई कैचर की साउंड है, ये गोल्डन ओरियल की साउंड है, ये आउल की साउंड है। तो ये साउंड्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ये कॉग्निटिव एबिलिटी को शार्प करता है
0: जी।
1: उसके अलावा जब हम प्रकृति में होते हैं तो एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम हमको फील होती है। जैसे हम घर में होते हैं तो हम देखते हैं चारों साइड वॉल्स हैं, तो वो हमारे थॉट प्रोसेसेस को किसी तरह से लिमिट करता है कि ये हमारी बाउंड्री है। लेकिन जब हम खुला आसमान देखते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, नदी को देखते हैं, नदी के बहाव को फील करते हैं कि नदी बह रही है, तो उससे हमको लगता है कि हाँ, हम एक फ्री वर्ल्ड में जिंदा हैं और एक लाइफ में एक फ्लो हमको फील होता है। तो उससे हमारी मनस्थिति और हमारे व्यवहार और हमारी सोचने, समझने और निर्णय करने की क्षमता, इन सारी चीजों में हमारा बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है
0: जी। उन्मुक्तता भी आती है लोगों में वहां जाकर। मैडम, आपने माइंडफुलनेस की एक थेरेपी तो हमको जैसे बर्ड वॉचिंग बताई, माइंडफुलनेस की और भी थेरेपीज होती होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी?
1: एक ब्रीदिंग माइंडफुलनेस काफी ज्यादा यूज होता है। हम लोग को लगता है सांस लेना एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और हम दिन भर सांस लेते ही रहते हैं, लेकिन एक माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक टेक्निक है। तो उसमें हम लोग अपनी सांस को फॉलो करते हैं कि जैसे हमने सांस ली तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो उस सांस के साथ, हमने जैसे ब्रीद इन किया तो हमारा ध्यान भी हमारी सांस के साथ साथ जो है वो गया, और फिर उसके बाद ब्रीद आउट किया। तो ये सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया के साथ जब हमारी मनस्थिति भी इसके साथ में जुड़ी होती है, सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ, तो वो एक माइंडफुलनेस थेरेपी होती है कि हमारा ध्यान इधर उधर जाने की जगह हम अपनी सांस को फील कर रहे हैं और उससे किस तरह से हमको एक ठंडक की अनुभूति हो रही है सांस को बाहर निकालते हुए, और गर्माहट की अनुभूति हो रही है सांस को अंदर लेते हुए। तो इस फीलिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करना और ऐसे रिपीटिशंस करना, ये भी एक ब्रीदिंग बेस्ड माइंडफुलनेस जो है ये कहलाता है। इसके अलावा वॉकिंग माइंडफुलनेस भी होता है, जिसमें जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप अपने एक हर एक स्टेप को फील कर रहे हैं कि आपने जमीन पर एक स्टेप रखा, फिर आपने दूसरा रखा, तो आपका मन उस हर स्टेप के साथ आगे बढ़ रहा है। सो ये एक वॉकिंग माइंडफुलनेस कहलाता है। तो मेरी एक रिसर्च एक मेरे स्टूडेंट ने करी थी, PhD स्कॉलर ने थोड़े साल पहले, तो उन्होंने इस माइंडफुलनेस थेरेपी को पेरेंट्स के साथ यूज किया था जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव थे, तो उनको मैनेज करने में उनको बहुत चैलेंजेस आते थे तो उनको माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज के थ्रू उनको ट्रेन किया था, तो उससे उनका बच्चों के साथ जो व्यवहार था, हाइपर एक्टिव बच्चों को डील करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उनका व्यवहार बहुत इम्प्रूव किया इससे, और उनके जो रिलेशनशिप बच्चों के साथ बहुत स्पॉइल हो गए थे क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे जिससे कि वो तनाव में आ जाते थे, तो वो उनका तनाव कम हो गया और बच्चों के साथ डील करने की उनकी एबिलिटी और इम्प्रूव करी और बच्चों के व्यवहार में भी उससे अंतर आया। सो माइंडफुलनेस थेरेपी मल्टीपल फॉर्म्स में जो है वो यूज़ होती है और इंडस्ट्रीज में जो यूज़ होती है कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, कि अगर आपके एम्प्लॉयज माइंडफुल हैं, उनको माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दी गई है तो वो बेटर परफॉर्मेंस देंगे, कम समय में बेटर परफॉर्मेंस देंगे।
0: तो मैम वर्क प्लेस पे ये कैसे काम, क्योंकि 10-10 12-12 घंटे का आपका वर्क स्टेशन पे आपको रहना होता है, ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं कि उनके काम में सुधार आए या क्या ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें।
1: देखिए वर्क प्लेस में आजकल बहुत कॉमनली एक वेलनेस प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसी वेलनेस प्रोग्राम में ही माइंडफुलनेस को उन लोगों ने इंटीग्रेट किया है। कुछ अच्छी कंपनीज जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली करवाती हैं जिसमें माइंडफुलनेस ट्रेनिंग देती हैं, तो बहुत ज़्यादा समय का इशू नहीं है, ये बहुत कम समय में, इट्स अ ट्रेनिंग, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो एक पर्टिकुलर तरह से सोचने की अपनी आदत बनाए और करंट मनस्थिति में रहे। अदरवाइज तो आपने बाकी इंडियन फिलोसफी में ये बताया हुआ है कि मन एक घोड़े की तरह है, अगर आपने उसको लगाम नहीं लगाई तो वो कहीं भी भागेगा, तो वही स्थिति है। तो हम माइंडफुलनेस के थ्रू बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और उसको ट्रेन करते हैं, कंट्रोल भी नहीं करते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं कि वो जिस समय जो काम कर रहा है वो उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्व होके उसको करे। सो इससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जब वो फिर उसका रिवर्स सिचुएशन ये होगी जब वो वर्क काम कर रहा है, जब वो अपने ऑफिस में है और ऑफिस में जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज उनको दी गई हैं वो उसमें भी ऑब्जॉर्व होकर काम करेगा। सो ये एक दूसरी परिस्थिति में भी ट्रांसलेट होता है, जब अपने फैमिली के साथ है, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहा है तो उसमें भी वो एब्जॉर्व होकर करेगा। अदरवाइज आपका वर्क प्लेस का स्ट्रेस घर में ट्रांसफर होता है, घर का स्ट्रेस वर्क प्लेस में ट्रांसफर होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है।
0: मैडम आपकी ही बात में से एक बात अभी मुझे ध्यान आ रही है और वो ये है कि पहले हम लोग कहते थे कि तेज़ी से भागो, दुनिया के साथ भागो, अभी कुछ एक चीज़ें सुनने में आ रही कि थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा धीमे चलो, थोड़ा धीमे हो जाओ, ज़िंदगी में इतना मत भागो, रुक जाओ, ठहर जाओ। ये जो स्लो का ट्रेंड आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस को करता है कि आप थोड़ा अपनी जिंदगी में थोड़े धीमे हो जाइए।
1: देखिए माइंडफुलनेस आपका स्लो और फास्ट से रिलेटेड नहीं है, इट इज जस्ट कि आप जो जैसी स्थिति है आप उसको एक्सेप्ट करें कि यही स्थिति है। जो पॉज का आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, बर्नआउट के बहुत ज्यादा केसेस आजकल सुनने में आ रहे हैं कि लोग बाग अपने बहुत अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में, जैसे हम लोग के टाइम में होता था कि ठीक है आपने जॉब ली है तो आप अच्छे से आप अपना काम कर रहे हैं और 8-10 साल आपने काम कर लिया, उसके बाद या 15 साल के बाद फिर सोचते थे कि हमको घर बनाना है या हमको कुछ कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है उनका वे ऑफ थिंकिंग है कि बहुत अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए, उनको कार लेनी है, उनको घर बनाना है, जो भी चीजें, तो एस्पिरेशंस जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं। और इसमें मैं कहूंगी कि बहुत हद तक इंटरनेट से जो एक्सपोजर हुआ है लोगों को, जो दूसरे लोगों की स्टोरीज वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरे उसने तो इतनी जल्दी ये सब कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर पाया, तो इसमें एक वो उनको लगता है अच्छा मैं कुछ और ज्यादा तेजी से कर लूंगा तो शायद मुझे भी ये मिल जाएगा, तो ये एक दौड़ने की टेंडेंसी और रशिंग टेंडेंसी लोगों में इसकी वजह से डेवलप होती जा रही है, और उसको पॉज करने की बहुत जरूरी है। हर पर्सन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बहुत अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा कमा के बहुत हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए, और आपको ये भी नहीं पता कि अगर वो पहुंच भी गया तो क्या वो वहां खुश है, क्या वो वहां संतुष्ट है, क्या हमारे मन की संतुष्टि ज्यादा जरूरी है या भागकर लाइफ में कुछ बहुत कुछ अचीव कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो उस परिस्थिति को अगर हम देखते हैं तो पॉज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा ये नहीं सिखा सकते लेकिन फिर भी जो है एटलीस्ट एक एडवांस मिडिल एज पे आके कम से कम आपको कि पॉज लेना, कि लाइफ में प्रकृति को देखना, अपने आसपास के एनवायरमेंट को एब्जॉर्व करना, उसके साथ एक खुशी की फीलिंग होना और अपने रिलेशनशिप्स के पर फोकस करना, ये सारी चीजें जो है ये बहुत जरूरी है।
0: आपका इंस्टीट्यूट आम लोगों की जिंदगी में इस तरह की कोई मदद कर सकता है, जो लोग चाहें कि उन्हें प्रकृति के निकट आकर अपने अवसाद को या किसी भी तरीके के तनाव को दूर करना है, तो उसमें आपके इंस्टीट्यूट की कोई भूमिका होती है?
1: देखिए, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, इसका नाम ही है कि ये वन के प्रबंध का संस्थान है, और ये हमारा इंस्टीट्यूट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और जिसके आसपास काफ़ी जंगल है, और हम लोगों का एक क्लब भी, हम लोगों का एक एडवेंचर क्लब भी है, एक नेचर क्लब है। तो नेचर क्लब इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करता रहता है, कि जिसमें बर्ड वॉचिंग के लिए जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स आते हैं, तो उनको भी बर्ड वॉचिंग के लिए उनको गाइडेड विजिट कराना फॉरेस्ट का। एक नेचर ट्रेल हमारे यहाँ बनी हुई है, नेचर ट्रेल में जाके बर्ड वॉचिंग कराना, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो बर्ड वॉचिंग के एक्सपर्ट्स हैं तो वो, और हमारी फैकल्टीज भी हैं, तो वो साथ में उनको ले जाके एंड गाइडेड टूर इंस्टीट्यूट का कराते हैं। उसके अलावा और भी बर्ड वॉचिंग के ग्रुप्स हैं और नेचर ट्रेल्स के ग्रुप्स हैं, तो उनके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को हम लोग नेचर के क्लोज लाना और नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स और नेचर और बर्ड्स, उनके साथ एक कनेक्ट की फीलिंग डेवलप कराना, उसमें हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, करते भी हैं और आगे और भी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप चेयरपर्सन हैं, हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या है वो और कैसे काम करता है?
1: देखिए, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2018 में हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था, एक इंडस्ट्रीज के लिए एक जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके अंडर 2% ऑफ प्रॉफिट दे हैव टू स्पेंड इन CSR एक्टिविटीज। तो उसमें बहुत सारी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सो उनसे लेके कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं जो इंडस्ट्रीज कर सकती हैं, और वो अपना 2% के अंदर उनको कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करने होते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स को समाज के लिए और पर्यावरण में सुधार के लिए उनको उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। सो हमारी संस्था जो हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। इतना मनी जो है वो सारे कॉर्पोरेट्स का आता है जो CSR के लिए उनको स्पेंड करना है, लेकिन क्या ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ? जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इस पैसे को लगाया, उन प्रोजेक्ट्स ने एक्चुअली में सोसाइटी को कुछ इम्पैक्ट दिया या नहीं दिया? तो इसका आकलन जो है ये एक साइंटिफिक टेक्निक रहती है, सोशल साइंटिस्ट जो हैं हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। सो बहुत सारी कंपनीज के जो CSR प्रोजेक्ट्स थे, सो उनके इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हम लोगों ने काफ़ी इस सेंटर में पिछले सालों में काम किया। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम करते हैं वो CSR के लिए किस तरह से इक्विप्ड हैं, उनको नॉलेज है या नहीं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, किससे सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट होगा, कैसे उनको बेसलाइन स्टडी करें कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नीड बेस्ड हों, कि जो सोसाइटी के लोग चाहते हैं उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स हों।
0: एक और आखिरी सवाल मैडम, कि कुछ बच्चों को प्रकृति के निकट रहना, बर्ड वॉचिंग, कई बच्चों को बड़ा शौक होता है, लेकिन वो इसे अपना प्रोफेशन कैसे बनाएं, उसमें IFM क्या हेल्प कर सकता है या किस तरह के कोर्सेज हैं, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें?
1: देखिए, बर्ड वॉचिंग तो एक हॉबी की तरह से है,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कुछ लोग इसको प्रोफेशन बना लेते हैं अगर उनकी फोटोग्राफी स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, और उसके अलावा बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन वो लोग कर लेते हैं, उनको पता होता है कि कौन कौन से बर्ड्स का क्या नाम है, क्या उनका नेचर है, किस सीजन में वो आते हैं। जैसे अभी इस सीजन में एशियन फ्लाई कैचर जो है वो भोपाल में आई हुई है, तो सारे बर्ड वॉचर्स जो है वो उनके नेस्टिंग का टाइम है एंड उनके चिक्स वगैरह देखने के लिए काफी जो है, मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी जाती हूँ। और पिट्टा इस समय आया हुआ है तो ये साउथ से आता है, तो ये इनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हम लोगों के यहाँ 4 कोर्सेज MBA प्रोग्राम्स चलते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अभी 2 साल पहले हम लोग डिक्लेयर हुए थे, 3 साल पहले। तो हम लोग एक कोर्स है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MBA इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक प्रोग्राम है MBA इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, और 2 और प्रोग्राम्स हम लोगों ने नए लास्ट ईयर ही स्टार्ट किए हैं, एक है डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फिनेंस और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये प्रोग्राम्स जो हैं, इसमें हम लोग मैनेजमेंट एजुकेशन तो स्टूडेंट्स को देते ही हैं, जो कि सारे ही मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस मैनेजमेंट एजुकेशन को हम फॉरेस्ट्री के फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं,
0: जी
1: इंडस्ट्रीज जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी के फील्ड पे कैसे अप्लाई कर सकती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। आजकल क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन फाइनेंस के बारे में बहुत बात हो रही है, तो हमारा डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस का कोर्स जो है वो मैनेजमेंट एजुकेशन बट अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी. सो इस तरह से ये चार कोर्सेज हमारे हैं और हमारा काफ़ी अच्छा, मैं प्लेसमेंट चेयरपर्सन भी हूँ और काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रीज़ का रिस्पांस इसके लिए रहता है. हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल सारी इंडस्ट्रीज़ को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करना जो है वो कंपलसरी है. सो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारे एल्यूमिनाय जो हैं पास्ट के वो बहुत कंपनीज़ के, कंसल्टिंग कंपनीज़ के पार्टनर्स हैं और CEOs हैं और सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स हैं एंड चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स तक हैं या कंपनीज ओन करते हैं. सो बिकॉज इस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी है, 1982 का ये इंस्टीट्यूट है. सो काफ़ी अच्छा इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करने की एक हिस्ट्री रही है.
0: डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आप इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए इतना समय निकाला और हमें बहुत बहुत सरल शब्दों में ये बताने की कोशिश भी की कि किस तरीके से पर्यावरण हमारे मनोविज्ञान पर असर डालता है. और हमें दोस्तों उम्मीद है कि ये बातचीत सुनने के बाद निश्चित ही आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से भले ही आधा घंटा निकालें पर कहीं ना कहीं प्रकृति के करीब जाइए. क्योंकि जैसा आपने मैडम की बातों में सुना कि अगर आप नदी के पास जाते हैं तो आपके भीतर उन्मुक्तता का भाव आता है, जब आप अपनी चार दीवारी के बीच में से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आप में आज़ादी की भावना आपको अच्छी लगती है और आप उसी की तरीके से जीवन जीने का प्रयास करते हैं. थैंक यू सो मच मैडम, आप यहाँ पर आए और आपने इतना समय दिया. थैंक यू.
1: थैंक यू मनीषा जी.
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार. इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा. सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए.

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: संसार की अस्थिरता को समझ लेता है, उसके भीतर वैराग्य नहीं बल्कि विवेक का उदय होता है। परिणाम स्वरूप वो क्षणिक आकर्षणों के ऊपर उठकर शाश्वत चेतना की ओर अग्रसर होता है। तो आइए योग संवाद कार्यक्रम में आज जगत के पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता विषय पर बात करते हैं और जानते हैं कि परिवर्तन के इस अनवरत प्रवाह के बीच स्थिरता का वास्तविक जो आधार है वो कहाँ है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच हमेशा की तरह उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी।
1: नमस्कार।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। योग संवाद कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जगत के पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता इस विषय पर। ये दृश्य जगत जो है वो भगवान श्री राम को कैसा दिखाई दे रहा है, क्या
1: जी आपने एक सुंदर प्रश्न किया। राम जी कहते हैं अपने गुरुदेव से कि ब्रह्मन, यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप दृश्य जगत दिखाई देता है वह सब सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर है, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं है
0: जी।
1: और आप देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी आदियोगी शिव के द्वारा अपनी अर्धांगिनी को, जब शक्ति को कहा जा रहा है तो कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो राम जी कहते हैं कि ये सपने में लगे मेले के समान अस्थिर है
0: जी।
1: जैसे सपना टूटेगा उस मेले के सारे दृश्य समाप्त हो जाएंगे। वैसे भी जगत भी एक मेला ही है और हम देखें तो हमारे अनुभव में भी आता है कि हम जागृत अवस्था में जैसे जगत के इस मेले को हम देखते हैं, व्यवहार करते हैं, सो जाने के बाद इस जगत का दृश्य नहीं होता, एक और दृश्य खड़ा होता है। स्वप्न की दुनिया इस दृश्य जगत जैसी नहीं होती, वहां कुछ दृश्य होते हैं लेकिन वो जहां आप होते हैं वो दृश्य नहीं होते, कहीं और के होते हैं। और ऐसे जब नींद आ जाती है गाढ़ी नींद में तो वहां तो कोई सारे दृश्य अदृश्य हो जाते हैं। आपको अपने देह तक, जो देह दृश्य हमेशा आप देखते हैं, आपको लोग देखते रहे हैं, देह से कभी अलग आपने अपने को नहीं माना। आप याद करिए कि निद्रा में उस देह तक का ज्ञान नहीं होता
0: जी, उसका तो खत्म
1: हो जाता है जी। तो ऐसे में और आप कहते हैं बड़ी अच्छी नींद आई, मुझे पता ही नहीं चला, मतलब देह के ज्ञान नहीं होने की प्रशंसा हम करते हैं निद्रा में और यहाँ देह को बनाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो मनुष्य की दशा देखिए कि वो इस अस्थिर जगत में कैसे स्थिरता को तलाश रहा है। निश्चित तौर पर ये एक प्रकार की विवेक शून्यता है। आप बुद्धिमान हो सकते हैं
0: जी।
1: जो विवेकवान पुरुष है वो कभी भी इस जगत को स्थाई नहीं देखेगा। राम जी ने तो इसको स्वप्न के मेले की तरह कहा। तो ऐसे में जिसका विवेक जाग जाएगा वहां यहाँ पर सब कुछ वो परिवर्तनशील देखेगा। आपकी अवस्थाएं बदल रही हैं, शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, रोज हमारी जागृत स्वप्न सुसुप्ति की अवस्था बदल रही है, हम सुसुप्ति से फिर जागते हैं लेकिन इस बदलाव को हम स्वीकार नहीं करते।
0: रोज देखने के बाद भी हमारी दृष्टि वो नहीं है जो श्री राम।
1: हाँ, हम मूर्छित हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, कह सकते हैं असावधान रहते हैं हमेशा कि हम लगातार बदलाव को अनुभव करने के बाद भी स्थायित्व की खोज या स्थायित्व की मान्यता में हम जकड़े हुए हैं कि हम इस जगत को चिरकाल तक, या जगत चिरकाल तक हो भी तो क्या हम चिरकाल तक हैं क्या, इस पर मतलब लगे रहते हैं। तो एक प्रकार की जो अज्ञानता का जो आवरण है जिसने हमें जीव बना रखा है, हमारे ब्रह्म स्वरूप को ढक रखा है, जैसे कह सकते हैं कि आकाश जैसे वो बादल से ढक जाए और उसकी नीलिमा कहीं चली जाए जबकि नीलिमा कहीं गई नहीं है, वो बादल या धूल कणों का प्रवाह जो है उसको ढक रखा है। तो ऐसे ही जो हमारा वास्तविक स्वरूप है जिसको हम कहते हैं कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं, लेकिन उसमें जो आवरण और विक्षेप जो उत्पन्न हो रहा है वो माया के प्रभाव से हो रहा है, अविद्या के प्रभाव से हो रहा है और वो अविद्या अहंकार को जन्म दे करके इस संसार में स्थायित्व ढूंढने के लिए हमें विवश कर रही है और हम भटक रहे हैं।
0: भगवान श्री राम की जो दृष्टि है वो क्या देखती है, ये जो जगत है वो किस अवस्था को प्राप्त होता है?
1: अच्छा, ये जगत किस अवस्था को प्राप्त होता है? वो कहते हैं कि ये जगत जो है वो काठ जल और तिनकों सहित सारा जगत विपरीत अवस्था को प्राप्त होता रहता है। मतलब वो कहते हैं कि विपरीत अवस्था को प्राप्त होता है, जहां आप सुख देखते हैं वहां पहुंचते ही आप फिर एक नए सुख की तलाश में निकल पड़ते हैं। अगर वहां सुख होता तो आप वहां सुखी हुए होते, न कि फिर सुख की तलाश में निकल गए होते। तो इसको संत लोग कहते हैं कि जैसे क्षितिज में आसमान और धरती का मिलना प्रतीत होता है, कहीं ये मिलन है नहीं
0: जी, जी।
1: वैसे ही

0: इस जगत में विपरीत अवस्थाओं का बोध होना चाहिए, न कि हम जगत में जो देख रहे हैं उसको देखना चाहिए। जो हम देख रहे हैं या जिसको हम नहीं देख रहे हैं, यानी नहीं देखने वाले में वो देखना होना चाहिए और देखने वाले में जो नहीं देख रहे हैं वो दिखना चाहिए हमको। यानी वो राम जी कह रहे हैं कि हमेशा विपरीत अवस्था का ही इसमें दर्शन होता है मुझे। तो जो भी विवेकवान पुरुष है वो जगत में विपरीत अवस्था की प्राप्ति हो रही है उसको देख रहा है। जवानी, बचपन, शरीर, द्रव्य संग्रह, ये सब के सब अनित्य और तरंगों की भांति निरंतर एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त हो रहे हैं। इस संसार में प्राणियों का जीवन हवा से भरे स्थान में रखे हुए दीपक के लौ की तरह चंचल है।
1: अच्छा, ऐसा देख रहे हैं,
0: ऐसा देख रहे हैं राम जी। हवा चल रही है और वहां दीपक के लौ की क्या स्थिति होगी? तो राम जी कहते हैं कि जो प्राणियों का जीवन है, जगत तो छोड़ें, जगत के पदार्थ तो छोड़ें, जीवन जो आपका है वो हवा से भरे हुए स्थान में दीपक के लौ जैसा है, वो कब बुझ जाएगा या कब उस लौ को हिलता डुलता रहेगा, इसका भी आपका नियंत्रण नहीं है उस पर, क्योंकि वो तो पूरा नियंत्रण वायु का है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में उसका सुख दुख है, वो प्रारब्ध वशात है, प्रारब्ध के नाते है, तो वो भी आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए आप देखिए, कभी विचार करिए कि आदमी अगर उसके नियंत्रण में सब कुछ होता तो इस जगत में तो कोई दुखी होता ही नहीं, कोई असंतोष में नहीं होता, सब शांत होते। लेकिन ऐसा है नहीं, सब अशांत हैं, सब दुखी हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ हमें सीखना चाहिए कि ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन ये बुद्धिपूर्वक हम नहीं जान सकते, ये तो अनुभव का विषय है। और जब तक आप क्रिया में नहीं उतरेंगे, जब तक आप अपने जीवन व्यवहार में उसका दर्शन नहीं करेंगे, जब तक आपको अपने जीवन का दर्शन दीपक के उस लौ की तरह नहीं दिखेगा जो हवा से व्याप्त जगत में हिलडुल रहा है या बुझ भी सकता है, तब तक हाँ इतना अनिश्चितता, जब तक इसका आपको बोध नहीं होगा, किसी के कहने और कहीं पढ़ लेने से सुन लेने से नहीं होगा, ये तब होगा जब आपके अनुभव में आएगा।
1: अनुभव में ये बात आएगी, बिल्कुल जैसे श्री राम के अनुभव में आई है। अच्छा, जीवन को वो देख रहे हैं कि हवा के बीच जलते एक दीपक की लौ की तरह जीवन है। सांसारिक जो उत्सव है, जो वैभव है, उसे किस तरह से देखते हैं वो?
0: इसको राम जी कहते हैं कि हे महर्षि, उत्सव वैभव से सुशोभित होने वाले दिन, वे महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर संपत्तियां और वे बड़े बड़े कर्म, सब के सब दृष्टिपथ से दूर हो केवल स्मरण के विषय रह जाते हैं। राम जी कहते हैं कि ये जो दृष्टिपथ में जो ये उत्सव वैभव दिखाई दे रहा है, ये कल स्मरण का विषय बन जाएगा। आप देखें ना, हमारे पास सिर्फ स्मृतियां हैं। हम आज भी देखें तो खुशियों का जो हम कामना करते हैं वो पूर्व की स्मृतियों के आधार पर करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो भी हमारे स्मरण का विषय है। तो राम जी की दृष्टि कितनी पैनी है कि वो कह रहे हैं कि ये वैभव उत्सव जिसमें व्यक्ति जिसको पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, लगातार संघर्ष कर रहा है, तमाम तरह के दुख उठाता है, बेचैनियों को अपने जीवन में बुलाता है, वो सब स्मरण के विषय बन जाएंगे।
1: इस पर वो विचार नहीं करता। हर हाथ में मोबाइल है और एक एक पल को हम संग्रह की तरह संग्रह करना चाहते हैं, पलों का, है ना, इतनी स्मृतियां इकट्ठी करते हैं। लेकिन इस दृष्टि से हम कभी नहीं देखते कि एक साल बाद जब वो तस्वीरें सामने आती हैं, तो हम उस दृष्टि से नहीं देखते जैसे श्री राम देख रहे हैं।
0: हाँ, नहीं देख रहे। आप कभी देखिए, हम लोग जैसे जब जिस भी अवस्था में होते हैं, जैसे बच्चा है वो बड़ा होना चाहता है, जो बड़े हैं वो बचपन को याद कर रहे हैं, जो बूढ़े हैं वो जवानी के दिन याद कर रहे हैं। आप जिस भी दिन को याद करें, लेकिन जो वर्तमान में आपकी अवस्था है उस अवस्था को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। बुढ़ापे में जवानी के दिन को याद करके जो बुढ़ापे की सच्चाई है, क्या उससे आप अपने आप को बचा लेंगे? तो वो अंततः क्या है, आप स्मृतियों के विषय बने हुए हैं। आपने अपने जीवन को स्मृतियों का विषय बना दिया, स्मरण का विषय बना दिया, जिसको राम जी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि क्षण भर में सब अज्ञात स्थान को चले जाएंगे, लोगों के लिए केवल स्मरणीय बन जाएंगे। इसलिए हर उत्सव स्मरण का विषय बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और हम लोग मेमोरी को ताजा करते रहते हैं।
1: एक साल पुरानी मेमोरी, अभी एक साल पहले की कुछ तस्वीरें, उसे उस दृष्टि से हम नहीं देख पाते हैं। अच्छा, इसको जब मैं इसके पन्ने पलट रही थी योग वासिष्ठ के, तो मुझे एक जगह पढ़ने में आया कि संसार के जो सारे पदार्थ हैं वो विनाश के सूखे ईंधन की तरह हैं।
0: जी जी,
1: ये कहा।
0: हाँ,
1: तो क्या अर्थ है इसका?
0: आपने सुंदर कहा। राम जी कहते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी बड़वा नल के लिए सूखे ईंधन के समान हैं। सूखे ईंधन का मतलब कि विनाश की अग्नि जल रही है, जिसमें ये जगत के प्राणी पदार्थ सब नष्ट हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गीता में जब चर्चा होती है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया तो जगत का वो विनाश दिखाया, जिस विनाश को देख करके अर्जुन युद्ध नहीं करने का संकल्प ले बैठे थे और कह रहे थे कि हम इस युद्ध से अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि इस विनाश को हम रोक लेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि विनाश की अग्नि में ये स्वर्ग से लेके पृथ्वी, वायु, आकाश, नदियां, दिशाएं सब इसी अग्नि के सूखे ईंधन हैं जो उसको और बढ़ाएंगे। सूखा ईंधन का मतलब कि उस अग्नि को कोई शांत नहीं करेगा बल्कि और प्रज्वलित करेगा और उसमें मतलब जलने में सहयोगी होगा। तो ये सब के सब वो कहते हैं कि विनाश के सूखे मतलब ईंधन हैं और इससे सिर्फ विनाश ही हो सकता है। धन, भाई, बंधु, भृत्य वर्ग, मित्र और वैभव, ये सब के सब विनाश के भय से डरे हुए पुरुष के लिए निरस ही हैं। यानी जो पुरुष विनाश के भय से डरा हुआ हो, अब आप सोचिए उसको संसार का कौन सा संबंध प्रीतिकर मालूम होगा, चाहे वो भाई बंधु हो, कोई भी हो, अगर आपको विनाश का डर सता रहा हो तो संसार के किस संबंधों के साथ आप खुशहाली महसूस कर सकते हैं या मना कर सकते हैं? तो राम जी कहते हैं कि ऐसा पुरुष खुश नहीं हो सकता क्योंकि वो सब को विनाश के ईंधन के समान देखता है।
1: अच्छा शशिकांत जी, इतनी बार इस सत्य का उद्घाटन होता है, कितनी बार कहा जाता है, बहुत बार हम भी सुनते हैं, लेकिन दृष्टि उस तरह से खुलती नहीं है
0: जी।
1: तो मनुष्य को मोह में किसने बांध रखा है?
0: जी, मनुष्य को मोह में जो डाल रखा है वो भ्रम ने डाल रखा है। राम जी कह रहे हैं कि मुनीश्वर, इस जगत में मनुष्य क्षण भर में ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है और क्षण भर में दरिद्र हो जाता है। आप देखें यहां पर इशारा आपके मानसिक चिंतन का भी है कि जब कई बार आप अपने मन के अनुकूल स्थितियों को देखते हैं तो उस समय आपको अपनी संपन्नता का बोध होता है और वो सारी संपन्नता के बीच जो आपने इकट्ठा कर रखी है, जब आपके मन में विषाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको दरिद्रता का बोध होता है कि आपने आप देखें कभी कभी ऐसा होता है, मन आपके उन साधनों जिन साधनों को बड़े प्रेम से आपने इकट्ठा किया है उन्हीं के बीच उदास होता है, उन्हीं के बीच वो अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है कि आपने जीवन गंवा दिया। तो राम जी कहते हैं कि यहाँ क्षण भर में दरिद्र हो जाता है, वह क्षण भर में ही रोगी और क्षण भर में निरोग हो जाता है। किसी रोग के बारे में चिंता करके क्षण भर में आप उससे भयभीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रतिक्षण विपरीत अवस्था प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान मनुष्य मोहित हुए बिना रह सकता है? तो ये जो जगत का भ्रम है, जो क्षण भर में विपरीत अवस्था को प्राप्त कर रहा है, इसमें कौन है जो मोह से ग्रसित न हो? तो ये जगत का जो भ्रम है, यही भ्रम आपको मोह में ग्रसित किए हुए है और हम लोग उसी मोह के बंधन में बंध करके तमाम सारे दुखों को भोग रहे हैं
1: जी।
0: मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ ये जागतिक भ्रम रूपी मोह है जिसमें जीव तमाम तरह की बीमारियों, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, तीन तरह के ताप की बात की गई है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन तापों में वो जल रहा है और इसका कारण है जगत रूपी भ्रम जो मोह में डाल करके व्यक्ति को इन व्याधियों में जला रहा है।
1: अच्छा, इसी में आगे मैंने पढ़ा कि लिखा हुआ है कि जगत के सारे पदार्थों की जो स्थिति है वो आकाश की स्थिति की तरह है
0: जी,
1: इसे थोड़ा सा समझाएं आप।
0: हाँ, इसको वो कहते हैं राम जी कि आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है। आकाश देखिए पंच महाभूतों का प्रथम महाभूत है
1: जी, जी।
0: कहते हैं कि आकाश के आकाशवत होना चाहिए, चिदाकाश शब्द भी आता है, चित्ताकाश की बात हम करते हैं। कहते हैं कि आकाश प्रथम महाभूत है और सारे महाभूतों में व्याप्त है वो, लेकिन इस जगत का कोई भी प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता। लेकिन राम जी का जो वैराग्य से पूर्ण दृष्टि है, वो दृष्टि देखिए कैसे वो देख रहे हैं। कहते हैं कि आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं। वो कहते हैं कि जैसे आकाश की स्थिति क्षण भर में आप देखेंगे तो आकाश में बादल आ जाएंगे, कभी बादलों से वो मुक्त हो जाएगा, क्षण भर में वहां उच्च स्वर में मेघों की गंभीर गर्जना होने लगेगी और क्षण में ही वह मूक की भांति नीरव हो जाएगा, क्षण में ही ताराओं की हरावली से अलंकृत और क्षण में ही सूर्य रूपी मणि से विभूषित हो जाएगा। तो ऐसे क्षण क्षण में बदलने वाले आकाश की स्थिति जो है, ऐसे ही यहाँ पदार्थ भी प्रतिक्षण बदल रहा है। तो हम नहीं सोचते क्यों क्यों बदल रहा है, क्योंकि उस पदार्थ में वो आकाश अधिकतम मात्रा में है, आकाश प्रथम तत्व है तो उसकी उपस्थिति हर पदार्थ में है, तो जब आकाश में ये परिवर्तन हो रहा है तो फिर पदार्थ में क्यों नहीं होगा। तो इसलिए राम जी कहते हैं कि आकाश जैसी पदार्थों की भी स्थिति है कि जैसे आकाश में परिवर्तनशीलता है वैसे ही पदार्थों की भी परिवर्तनशीलता है।
1: अच्छा, इस संसार का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या देख रहे हैं भगवान श्री राम?
0: राम जी कहते हैं कि इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त इस सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता। यानी इस संसार में जीव को अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ भय मिलता है, यहाँ निर्भयता नहीं मिलती। ये अलग बात है कि हम भय को दूर करने के लिए भी संसार को ही इकट्ठा करते हैं, है ना। लेकिन राम जी कहते हैं कि जिसे आपने इकट्ठा किया है उसकी क्षणिक आयु है, वो क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। तो अंत में राम जी कहते हैं कि यहाँ कौन ऐसा पुरुष है जो भयभीत नहीं होगा, क्योंकि क्षण में स्थित और क्षण में नष्ट होने वाली ये आवागमन की परंपरा से युक्त है, ऐसी स्थिति में तो भय का होना स्वाभाविक है। तो इसलिए संसार सिर्फ व्यक्ति को भयभीत कर सकता है, भयमुक्त नहीं कर सकता। भयमुक्ति के लिए तो विवेक की आवश्यकता है। उस विवेक की दृष्टि से संसार के सत्य को, यानी उसकी क्षणभंगुरता या उसकी परिवर्तनशीलता या अस्थिरता
1: का मृत्यु को देखा जाए,
0: तब आप भय से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा संसार तो भयभीत ही करेगा।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: अच्छा, इस संसार में मनुष्य की स्थिति कैसी है, क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम?
0: इस संसार में मनुष्य की स्थिति को भगवान राम ऐसे बता रहे हैं कि भगवन, यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले कुछ और ही था और थेड़ो थोड़े दिनों बाद कुछ और हो जाता है। यहाँ सदा एक रूप रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई नहीं है। यहाँ कायर के द्वारा सूरवीर भी मारा जाता है और एक ही व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं। इस प्रकार इस संसार में अस्थिरता का दर्शन होता है। सारे जगत में विपरीत अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है, फिर यौवन की शोभा आती है और उस मद में आदमी सोचता है कि हम संसार में जो चाहें वो परिवर्तन ला सकते हैं, जबकि सच ये है कि वो अवस्था धीरे धीरे वो भी जा रही है और धीरे धीरे वृद्धावस्था। मुझे याद आता है एक प्रसंग, आपने ये कह दिया कि एक बूढ़े बाबा कहीं जा रहे थे तो कुछ युवा लोग जब उनको चलते हुए देखते थे, उनके पाँव लड़खड़ा रहे थे, हाथ में एक लाठी थी, कमर झुकी हुई थी, तो उन्होंने एक उपहास बस उनको कहा कि बाबा ये तीर जो धनुष है ये धनुष कहाँ से लाए आप? यानी उनके शरीर को धनुष का जो वक्रोक्त किया उन्होंने, जंग कसा। तो बाबा जी ने कहा कि समय आने पर ये धनुष आपको भी मिल जाएगा, कभी आपकी तरह हम भी हुआ करते थे। तो जब भी विवेकवान पुरुष है, विवेकवान पुरुष ठोकर खा के नहीं गिरता, वो ठोकर देख के संभलता है। और जो लोग असावधान होते हैं वो गिरने के बाद भी नहीं संभलते, वो बार बार गलतियों को दोहराते हैं,
1: बार बार ठोकर
0: जी वो कहते हैं ना कि गलतियों को करना गलत बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना गलत बात है। तो एक गलती होती है उसके बाद आपको सावधान होना चाहिए। तो ऐसे ही ये जगत को जो देखने की दृष्टि है, अगर ये दृष्टि राम जी की जो दृष्टि हमें भी मिले तो हमारे वैराग्य को ये जागृत कर देगी और वैराग्य से विवेक उत्पन्न होता है। राग और द्वेष से विवेक उत्पन्न नहीं होता। राग और द्वेष हमेशा संसार में
1: वैराग्य चाहिए किसको?
0: हाँ, वैराग्य चाहिए किसको?
1: कहा जाए कि जी आपको विरागी होना चाहिए, वैराग्य।
0: इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि वैराग्य जिस रूप में हम समझते हैं क्या वो वैराग्य है, वो अर्थ है नहीं। यहाँ पर वैराग्य मतलब संसार से पलायन नहीं है, संसार में जीवन मुक्त की भांति विचरण करना है। राम जी को ये सारी बातें राम जी कह रहे हैं और वो जो गुरुजन हैं वो सुन रहे हैं, इस नाते कि राम जी के चित्त में ये जो उद्वेग उत्पन्न हुआ है विवेक से, ये शांत हो, फिर उनके अंदर जिज्ञासा खुद ही उत्पन्न होगी कि फिर किस तरीके से इस संसार में व्यवहार किया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि भगवान श्री राम को भी तो 14 वर्ष में ये वैराग्य हुआ है।
0: हाँ, हाँ,
1: लेकिन कहां उन्होंने जीवन से पलायन किया है?
0: नहीं किया है। वो जीवन जरूर वो इस समझ के लिए उन्होंने अपने को तब तक रोक रखा कर्म करने से जब तक उन्हें संसार के सत्य को बताने वाले लोग नहीं मिले। और इसलिए इन शास्त्रों की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि हम निश्चित ही संसार की उथल पुथल से, संसार की परिस्थितियों से जब तक हमारे अनुकूल हो रहा है तब तक हम आसानी से व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आती है हम अपने सारे कौशल को भूल जाते हैं और फिर हम किं कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो जाते हैं। तो फिर उस दौरान उसी संसार का जो सत्य है जिसको वैराग्य के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, वैराग्य कभी भी पलायन नहीं है। वैराग्य संसार के मतलब आभासी प्रभाव से आपको मुक्त करता है कि आप संसार के सत्य को जानें और सत्य को जान करके फिर यहाँ आप जो व्यवहार करें उस व्यवहार में राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति ना हो, शांत होकर के आप व्यवहार करें, न्यायाधीश की तरह आप यहाँ कार्य कर सकें। और न्यायाधीश कभी देखिए किसी पक्ष से प्रभावित नहीं होता, तो जब भी आपका चित्त किसी पक्ष से प्रभावित नहीं होगा तो समझिए कि वो विवेक के साथ खड़ा है।
1: तो वैराग्य की एक इच्छा हो उसके लिए स्वीकार्यता हो,
0: जी,
1: है ना, ये एक संदेश है।
0: जी जी।
1: अच्छा, इसमें एक जगह मैं पढ़ रही थी कि भगवान श्री राम ने कहा कि ये जो जगत है
0: जी
1: वो काल की क्रीड़ा स्थली है।
0: जी।
1: मैं चाहती हूँ कि इसे थोड़ा विस्तार से आप समझाएं हमारे सुनने वालों।
0: ये काल की क्रीड़ा स्थली, राम जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में ये जगत काल की क्रीड़ा स्थली है, यहाँ पर काल की ही क्रीड़ा चल रही है, काल खेल रहा है और मनुष्य को लगता है कि वो व्यवहार कर रहा है, जबकि सच ये है कि आप अगर देखें तो आपके पास जो भी स्मरण है वो किसी समय का है, वो किसी समय में घटी एक घटना है जिसको आप याद कर रहे हैं, लेकिन आप समय भूल करके घटना देख रहे हैं, लेकिन जबकि ये सच ये है कि वो एक समय है, काल चक्र है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमने देखा वो काल चक्र है, जहां पर एक बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, काल की क्रीड़ा में वो धीरे धीरे जो हम देखते हैं वो बढ़ रहा है, वो युवान हो रहा है, लेकिन सच ये है कि अगर कोई काल की क्रीड़ा देखे तो वो मृत्यु के करीब जा रहा है, जिस मृत्यु से बचने के लिए वो जीवन भर प्रयास करता है वो मृत्यु उसके करीब और मृत्यु उसके करीब जा रही है,
1: मतलब
0: मृत्यु के करीब हो जा रहा है।
1: स्वाभाविक यात्रा जो है जन्म के साथ ही मृत्यु की तरफ बढ़ने की है,
0: बढ़ने की है,
1: ये काल का खेल है।
0: मृत्यु का मतलब ये हुआ कि जो चीज उत्पन्न हुई है वो नष्ट होने की तरफ और नष्ट करने वाली चीज है उसकी तरफ बढ़ रही है लगातार, लेकिन एक भ्रम इसमें हो रहा है कि जहां व्यक्ति उसमें जीवन को देख रहा है। इसी को कई संतों ने कहा भी है, सर्प के मुंह में एक मेढक है और वो काल की क्रीड़ा में, माने काल के गाल में खुदी है, लेकिन वो अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी और जीव पर हमला करने का प्रयास कर रहा है, वो सोचता है कि मैं अपने जीवन को बचा रहा हूं, जबकि उसका जीवन काल के अधीन है, तो कालाधीन सब कुछ है, इसीलिए इसको काल की क्रीड़ा स्थली कही गई। और ये विवेक से ही समझ में माने विवेक से समझ में नहीं आएगा, विवेक से आप इसे देख पाएंगे। और बाकी जो बुद्धि है तो बुद्धि में तो संसार की सारी क्रियाएं लीला चलेगी, उसमें आनंद उत्सव मनेगा, लेकिन आनंद उत्सव भी स्मरण का विषय क्षण भर में बन जाता है, ये राम जैसा कोई विवेकवान पुरुष ही देख पाएगा।
1: जी, जी।
0: और जब हम लोग किसी उत्सव में होते तो हम तो उत्सव को कभी भी स्मरण का विषय नहीं समझते, वो सोचते हैं कि ये उत्सव ही जिंदगी है, इसी को जी लो।
1: जी, जी, जी। अच्छा, आपने कहा कि सब कुछ काल के अधीन है,
0: जी,
1: तो मुझे याद आया कि अक्सर एक शब्द हम सुनते हैं, काल से परे, समय से परे, ये क्या अवधारणा है?
0: हाँ, समय से परे बस एक ही चीज है उसको, जिसको कालजयी कहा गया, वो कालजयी है, वो चैतन्य स्वरूप जिसमें करीब कभी परिवर्तन नहीं हुआ, जो जन्म और मृत्यु से भी परे है, क्योंकि जन्म जिसका हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो तो काल के अधीन है, जन्म लेने वाला शरीर काल के अधीन है और वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जन्म लेने वाले शरीर में जो शरीरी है, जिसको मतलब कहते हैं जो चेतना है, जिसको आत्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो सुख की राशि है, जो चैतन्य है, मल से मुक्त है, अमल है, उसमें कभी भी मल नहीं आता, मलिन नहीं होती, तो वो जो है वो कालजयी है, वो काल उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो काल के अधीन जन्म और मृत्यु के चक्र में चलने वाला जो प्रवाह है उस पर काल क्रीड़ा कर सकता है, लेकिन कालजयी पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। यही भारतीय चिंतन का मूल आधार रहा है और राम जी को ये लोग आगे उपदेश करेंगे कि आपका वास्तविक स्वरूप जो है वो कालजयी है, वो काल की क्रीड़ा से प्रभावित होने वाला नहीं है, काल की क्रीड़ा से प्रभावित देह और मन हो रहा है, अहंकार हो रहा है।
1: बहुत ही सुंदर। अच्छा, तो आज योग संवाद कार्यक्रम में हमने जगत के पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता पर चर्चा की।
0: जी।
1: तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको चलते चलते एक संदेश आप दे दें।
0: मैं चलते चलते ये संदेश दूंगा, हम काल की क्रीड़ा को देखें और किसी भी, जैसे खेल होता ना, खेल को खेल की भावना से खेलते हैं, लेकिन खेल में हम हार जीत जब ठान लेते हैं तो खेल की भावना समाप्त हो जाती है, तो ऐसे ही ये जीवन एक खेल है जिसको काल खेल रहा है, जिसमें सुख दुख, हर्ष विषाद, हानि लाभ, ये सब आ रहा है, ये आपके हाथ की चीज नहीं है, जिसको गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर पंक्ति में लिखा है, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण यश अपयस विधिहात। और इसी छह को हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये काल के अधीन है, काल इसके लिए क्रीड़ा कर रहा है, यश भी काल के अधीन है, अपयस भी काल के अधीन है, इसलिए निश्चिंत होकर के इस लीला का आनंद लिया जाए। और निश्चिंतता जिसको हो सकती है वो अपने चैतन्य स्वरूप का चिंतन करने या उसके सानिध्य से हो सकती है, जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं है, वो कालों का काल महाकाल है, काल भी उसके अधीन है, काल की अधीनता वो कभी स्वीकार नहीं करता, और जो अधीन है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं पराधीन सपनों सुख नाही, तो काल की अधीनता में हम सुख की खोज न करें। जो सुख का स्वरूप है हमारा चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी चैतन्य तत्व का चिंतन करें और उसके लिए निरंतर सत्संग हो, ताकि उससे हमारा विवेक जगे, क्योंकि गोस्वामी जी फिर कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये राम जी की कृपा से हम लोग योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण पर चिंतन कर रहे हैं, तो उनकी कृपा है और उनकी कृपा को हम अनुभव करें, उनकी दृष्टि से अपने संसार के जो बादल हैं जहाँ पर हम कभी मतलब उद्वेलित होते हैं उसको छांटें और अपने आनंद स्वरूप के साथ जी।
1: अच्छा, योग संवाद कार्यक्रम में जब हमने चर्चा शुरू की थी इसकी पहले दूसरे तीसरे अंक में, तो उस योग की बात हो रही थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अक्सर लोग याद करते हैं
0: जी।
1: और ये जो हमारी चर्चा है
0: जी,
1: वो गीता से होते हुए योग वासिष्ठ तक पहुंची है
0: जी।
1: तो हमारे सुनने वालों से आप क्या कहेंगे कि योग
0: जी,
1: जो विषय है, बहुत संक्षेप में आप कह दें कि कहाँ काम करना है हमें,
0: अगर हम योग को साधना चाहते हैं। हम देखिए योग का मतलब होता है कि मतलब इसमें समत्व की बात योग करता है कि जहां पर चित्त की जो विषमता है
1: जी,
0: उस विषमता से हम अपने चित्त को मुक्त कर सकें। समत्वम योग उच्चते भगवान कृष्ण कहते हैं, और समत्वम योग उच्चते तभी हो सकता है जब आप योगस्थ हो के कर्म करें। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, सिद्ध और असिद्धि में आप सम हो, तब जाकर के आप योग की स्थिति में आएंगे। योग शरीर की शुद्धि या कह सकते हैं मन की शुद्धि तो है ही, लेकिन जो योग का मूल लक्ष्य है वो समत्व बुद्धि के साथ युक्त होना है। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृत की बात है, योग कर्म सुकौशलम, तो कर्म की कुशलता है, जिस कुशलता के लिए राम जी को ये पूरा योग वासिष्ठ का उपदेश दिया जाएगा। और ऐसे में आप देखिए इन्होंने कहा कि काल की क्रीड़ा स्थली है, तो ये आप योग से समझ सकें कि ये जगत में जो भी घट रहा है आप उसमें हिस्सेदार बने, लेकिन आप उसके कभी कर्ता मत बने। कर्ता बनेंगे तो आप समत्व बुद्धि के साथ नहीं होंगे, आपकी बुद्धि विषमता का शिकार हो जाएगी, और बुद्धि को जड़ भी कहा गया है, तो बुद्धि युक्त होने का मतलब समत्व से बुद्धि से युक्त होना। तो ये पूरी जो साधना है वो समत्व बुद्धि से युक्त होने की है, और मैं अपने श्रोताओं से कहूंगा कि इन पूरी चर्चा में आप इस तत्व को पकड़ने की चेष्टा करिए कि किस तरीके से वो समत्व बुद्धि तक ले जाने का प्रयास है।
1: जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की शशिकांत जी, और हम चाहते हैं कि ये जो ग्रंथ है, जो अनमोल ग्रंथ है योग वासिष्ठ, ये खुला रहे और इसी तरह आगे भी हम चर्चा जारी रखें अपनी। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और इतनी सुंदर व्याख्या की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की जगत के पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और इस चर्चा में आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

एक छोटी सी रचना अमर शहीद टंटिया मामा के लिए, जो कि बड़ी प्रिय है।

0: एक निमाड़ की माटी की जो बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है गणगौर, ये गीत प्रदेश तो प्रदेश, देश के अन्य हिस्सों में मेरी आवाज में सुना जाता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलो गणगौर मैया की
1: जय हो।

0: गणगौर मैया की
1: जय हो।
2: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में।
1: अभिनय प्रस्तुति नवधा भक्ति का प्रदर्शन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुति की परिकल्पना से लेकर नृत्य संरचना एवं संयोजन करने का कार्य डॉक्टर श्रीमती सुषमा मिश्रा द्वारा किया गया।
2: मृत्यु कोई भय का विषय नहीं, यह केवल देह का परिवर्तन है, परंतु जीव को मुक्ति तभी मिलती है जब वो परब्रह्म की कथा सुनता है। मुझे हरी कथा सुननी है।

इस जगत के आदि हैं नारायण। उनकी कथा सुनने से ही जीव अपने बंधनों से मुक्त होता है। गुरुदेव अब कोई भय नहीं, सब कुछ शांत और शीतल है। तुमने श्रवण भक्ति का फल पा लिया राजन, अब मृत्यु भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती।

राजा परीक्षित ने कथा श्रवण से मोक्ष पाया। भक्ति का दूसरा स्वरूप है कीर्तन। जब जिह्वा स्वयं हरि नाम गाती है तो वो मनुष्य को देवत्व तक पहुंचा देती है। ऐसी ही है बालक नारद की कथा, जो कीर्तन से देवर्षि बने।

वत्स, भोजन कर लो, फिर थोड़ी देर विश्राम कर लेना। गुरुदेव, आपके चरणों में बैठकर हरि नाम सुनना, यही तो मेरा विश्राम है।

नारद बालक था पर हृदय भक्ति से भरा हुआ। ऋषि जब कीर्तन करते तब बालक नारद मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहता और गुनता रहता।

0: नारद, तुमने कीर्तन की अग्नि से चित्त को निर्मल कर लिया है, अब तुम देवर्षि कहलाओगे।
1: प्रभु, मुझे आपकी वंदना जरूर।

इस प्रकार बालक नारद ने कीर्तन भक्ति से देवर्षि पद पाया। भक्ति का दूसरा द्वार यही है, जिह्वा का हरि नाम में डूब जाना। भक्ति का तीसरा रूप है स्मरण। जब प्राण संकट में हो, जब बुद्धि काम ना करे, जब आशा के दीप बुझ जाए, तब केवल स्मरण ही नैया पार लगाता है। गजेंद्र मोक्ष कथा। गजेंद्र हाथियों में श्रेष्ठ, शांत, बलवान और गौरवशाली।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

अब मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद की खुली हवाओं में आजादी की सांस ले रही मैं तारीख और हम सब देशवासी न जाने किन किन शख्सियतों के ऋणी हैं, न जाने कितने ही जीवनों के बलिदान का आभार हमें अभी व्यक्त करना है।
2: अरे तारीख, अभी कार्यक्रम शुरू करना है भाई, और तुम आभार व्यक्त कर रही हो।
1: अरे आप समय पर उपस्थित हो तो जान पाए ना कि मैं क्या कह रही हूँ।
2: देखो भाई, इतिहास का तो अपना एक समय निश्चित होता जाता है।
1: जी हाँ, पर उसकी सारी गवाहियाँ तो तारीख ही देती है।
2: पर तारीख तो बदलती रहती है।
1: अरे इतिहास न श्रोताओं को नमस्कार, न दुआ सलाम, और अपने पथ से भटक कर अपनी बातें करने में लग गए हम लोग।
2: माफ कीजिए श्रोताओं, आप सभी को मेरा और मेरी साथी का नमस्कार। तो तारीख जी, आप अपनी बात जारी रखिए, मैं तैयार हूँ।
1: इतिहास में अपने श्रोताओं से बात करने जा रही थी महाराष्ट्र के सांगली जिले में जन्मे श्री बाबूराव कोकाटे जी के बारे में। सांगली जिले के छोटे से गांव पदवलवाड़ी में जन्मे बाबूराव के पिता का नाम श्री धोंधी कोकाटे था।
2: तारीख, मैं सोचता हूँ कि ये आदिवासी विद्रोहों का असर ही तो रहा होगा ना, जो इतने वर्षों के बाद तक भी इन छोटे छोटे दूर दराज के गाँव में आजादी की अलग बरकरार रही।
1: बिल्कुल इतिहास, देश में चारों ओर से बिना रुके कण कण में जो आजादी के शोले भड़कते रहे, उन्हीं ने तो बड़े बड़े विद्रोहों को जन्म दिया।
2: असल में असंतोष तो आदिवासियों में भी तब से ही पैदा हो गया था, जिसे हम भारत में ब्रिटिश शासन का प्रथम युग यानी कि वाणिज्यिक पूंजी का युग कहते हैं, जो लगभग 1757 से लेकर 1813 तक का रहा।
1: इतिहास, इस युग में जो आदिवासियों में विद्रोह की चिंगारी जली, उसका समय सन 1793 के आसपास का रहा होगा, और जिसका कारण मूल रूप से किसानों में असंतोष रहा। 1794 में भी तो बंगाल में किसानों के हक में देवी चौधरानी जैसे सशक्त आंदोलन उल्लेखनीय हैं, जहां से स्वाधीनता आंदोलनों को ओम वंदे मातरम का नारा मिला।

0: ब्रिटिश शासन का दूसरा युग औद्योगिक पूंजी और तृतीय युग वित्तीय या साम्राज्यवादी पूंजी का युग कहलाता है। तारीख भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना महज एक घटना नहीं थी, बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के औपनिवेशीकरण और धीरे धीरे उस समाज को दबाते रहने की लंबी प्रक्रिया का नतीजा थी।
1: बिल्कुल इतिहास, इस प्रक्रिया ने हर स्तर पर भारतीय समाज में असंतोष और क्षोभ को जन्म दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों को लगातार छिटपुट प्रतिरोधों का सामना भी करना पड़ा। खैर, आदिवासी विद्रोहों की बात को हम थोड़ा विराम देंगे, क्योंकि आज हमें अपने श्रोताओं को सांगली जिले के क्रांतिकारी श्री बाबूराव कोकाटे के बारे में बताना है।
0: बाबूराव कोकाटे का संबंध मूल रूप से अगस्त क्रांति से जुड़ा रहा। बाबूराव ने क्रांति में सक्रिय रहने के लिए इंटर की पढ़ाई को भी तिलांजलि दे दी।
1: बाबूराव जी ने 1942 की आजादी की क्रांति में अपने प्रांत में सक्रिय और महत्वपूर्ण भागीदारी की, परंतु इस क्रांति को कुचल दिया गया, पर बाबूराव के मन में आग अभी भी ज्वलंत थी।
0: 1942 के आंदोलन का दमन हो जाने के बाद भी बाबूराव भूमिगत क्रांतिकारियों से संबंध बनाए हुए थे। वे इन क्रांतिकारियों की यथासंभव सहायता करने के लिए बराबर उनके संपर्क में रहते थे।

0: इन्हीं की तरह हजारों क्रांतिकारी हमारे देश के छोटे से छोटे प्रांत में भी अपना जाल बिछाए हुए थे, ताकि मैदान में खुलकर लड़ने वालों का हौसला कम न हो, उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने में कोई अड़चन न आए।
1: हाँ तारीख, ये तो दुनिया में हुई हर एक क्रांति का सच रहा है। जन सामान्य यानी आम जनता का सहयोग जो क्रांतिकारियों को अपना कार्य सुचारू रूप से करने में मदद करता है, और आंदोलनकारियों में ये एहसास जीवित रहता है कि वो हमारे ही लिए तो ये जंग लड़ रहे हैं।
0: तो हमारे बाबूराव भी क्रांतिकारियों की हर संभव मदद किया करते थे, जिसमें उनकी जान को भी बहुत जोखिम था, पर वे कभी अपने फर्ज से डगमगाए नहीं।
1: क्रांतिकारियों के छिपने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाना, उनको खाने पीने दवा आदि की मदद पहुँचाना, क्रांतिकारियों तक हथियार आदि पहुँचाना, और इस सब के साथ क्रांतिकारियों की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने तक में वे कभी पीछे नहीं हटे।

0: बस अपने काम में पूरी तरह मगन बाबूराव कोकाटे इधर कब अंग्रेजों की नजर में खटक गए उन्हें पता ही नहीं चला। पुलिस ने अब लगातार उन पर नजर रखना और उनका पीछा करना शुरू कर दिया था।
1: और ऐसे ही एक दिन जब बाबूराव रात के अंधेरे में चुपचाप सांगली से बाहर निकल रहा था, एक पुलिस वाले ने उसे ताड़ लिया।
0: इससे पहले के बाबूराव कुछ समझ पाते, पुलिस वाले ने उन पर दनादन गोलियों से वार कर दिया।
1: अपने ऊपर होने वाले आक्रमण से अनजान बाबूराव ने वहीं अपनी अंतिम सांस ली और क्रांति को समर्पित एक और निष्ठावान को देश ने खो दिया।

0: बाबूराव जी को हम सब का नमन है और तारीख हम ये न भूलें कि साथ ही साथ आज हम अपने श्रोताओं के लिए भारत में आदिवासी विद्रोह पर भी कुछ प्रकाश डाल रहे थे।
1: जरूर इतिहास। आदिवासी विद्रोह को हमारे एक इतिहासकार ने तीन हिस्सों में बांटा है, 1795 से 1860, 1860 से 1920 तक का और 1920 से 1947 तक का समय। 19वीं सदी में आदिवासी विद्रोहियों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है जिसका संबंध आदिवासियों की जीवन प्रणाली से जोड़ा जा सकता है।
0: जंगलों से आदिवासियों के गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते थे। खेती करने का उनका अपना तरीका था। जंगल की उपजों पर उनका जीवन आधारित था और इन लघु वनोपजों को इकट्ठा करके उनका जीवन यापन आसान हो जाता था। पर ब्रिटिश शासन ने इन सब पर बंदिशें लगा दी और आगे चलकर इन आदिवासियों को ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के शोषण का शिकार होना पड़ा।
1: मैं आदिवासियों की खास बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी इतिहास, कि विद्रोही आदिवासी सारे बाहरी लोगों को कतई अपना दुश्मन नहीं मानते थे, खासकर ऐसे लोगों को जो उनके यहाँ आकर बस गए हों, गरीब हों और उनके गांवों की अर्थव्यवस्था में जिनकी भूमिका सहायक रही हो।
0: जानती हो तारीख, 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश या सामंती शासन के खिलाफ करीब 75 विद्रोह आम जनता ने किए। इनमें से एक तिहाई से ज्यादा विद्रोह आदिवासियों के थे।
1: आदिवासियों ने अपने अत्यधिक सीमित साधनों के बल पर ही अत्यंत शक्तिशाली और साधन संपन्न ब्रिटिश शासन से कई बार लंबे संघर्ष किए जो दशकों तक चले।
0: तारीख, आज तो हमें बाबूराव जी के योगदान और आदिवासी विद्रोहों की बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा, अब तो श्रोताओं से आज्ञा लेने का वक्त हो गया है।
1: तो श्रोताओं, इतिहास और मैं अब आपसे इजाजत चाहेंगे ताकि कल फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों और उससे जुड़े लोगों की रोचक कथाएं आपके साथ बांट सके। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, फिर आपसे मुलाकात करेंगे।
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूँ मितुल प्रदीप, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो लौट के घर न आए।
3: मैं हूँ हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, वो विषय है नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम। और इस विषय पर बात करने के लिए आज स्टूडियो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं निहारिका जी, जो NIWCYD बचपन के साथ कार्य कर रही हैं इस फील्ड में। उनसे जानेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आई। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत

0: वायलेंस का जब वो सामना करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण नज़र आता है वो है नशा। नशे के कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं, या महिलाओं के साथ में जो हिंसा है इस वजह से होती है, और उसका कारण ये भी है क्योंकि वो आसानी से उस जगह पे उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा कारण जो है मुझे समझ में आया। तो फिर हमने इस पे काम करने की शुरुआत की कि समस्याओं के पीछे की जो वजह है नशा, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उस पे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को समझाना ज़रूरी है कि नशा हमारे जीवन में किस तरीके से परेशानियाँ लेकर आता है।
1: आप इसमें काम कर रही, नशा इतने आसानी से बच्चों को या जो नशा करने वाले उनको बड़े आसानी से मिल रहा है
0: जी
1: बाजार में,
0: हाँ बिल्कुल।
1: इसके पीछे आप क्या मानती, किसकी खामी है और इतने आसानी से कैसे उपलब्ध है जबकि सरकार इस पर रोक लगाती खासी?
0: सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए, खासतौर पे मॉनिटरिंग का जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है वो व्यवस्था में अभी कमी है। हम उसे मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आसानी से अवैध तरीके से जिन जगहों पर बिक रहा है, और स्लम की यदि हम बात करें तो बहुत ही घनी बस्ती क्षेत्र होता है जहाँ पर थोड़ा ढूंढना भी शायद मुश्किल है। तो वहाँ पर बच्चों के लिए जो उपलब्धता है, हमें उस पर मॉनिटरिंग पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, और उन तक जो पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं वो चैनल भी स्ट्रांग होगा। तो यदि हम जो हमारा तंत्र है उसको मजबूत करके ज़मीनी स्तर पर यदि काम करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है, और बहुत ही आसानी से यदि बच्चों को मिल रहा है तो ये हमारे लिए भी कई बार सवाल खड़े करता है।
1: बिल्कुल, ये बात वाजिब। एक बात आती है कि एक तो जब आप इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं तो जो लोग ये नशे का व्यापार कर रहे हैं, क्या वो कोई टारगेट लेके चलते हैं कि वो किन लोगों को नशे में लिप्त करेंगे? बच्चों को ही या युवा वर्ग को या लड़कियों को, ऐसा कुछ आपने स्पेसिफिक देखा, या सभी लोग इसमें लिप्त होते हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये व्यापार कर रहे हैं क्या उनका कोई टारगेटेड ग्रुप है?
0: अधिकांश यदि मैं जिन एरिया में काम करती हूँ वहाँ की बात करूँ, क्योंकि अधिकतर जो जुड़ाव होता है वो बच्चों और युवाओं के साथ में होता है, यदि मैं उनके अनुभवों की बात करूँ तो जो मुझे समझ में आया है कि बच्चे उनके लिए एक बहुत आसान टारगेट है। क्योंकि एक तो बच्चों को प्रभावित करना बहुत आसान होता है, और दूसरा क्योंकि आज जो बच्चे हैं उनकी बहुत ख्वाहिशें सपने हैं, तो कहीं उसका लालच देना और उनको अपने काबू में करना बहुत आसान है। और हम देखें कि बच्चे जो हैं, एक तो उनसे श्रम कराना बहुत आसान होता है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है, और क्योंकि बच्चे का जो जुड़ाव है उनके समुदाय स्तर पर बहुत ज़्यादा होता है, एक विश्वसनीय भी होता है। तो जो मुझे समझ में है कि खासतौर युवा लड़के जो हैं इसमें बहुत शामिल हैं, और वो नशे के आदी भी हैं, तो शायद उन्हें लालच दे के अपने सर में जोड़ना और उनसे काम करवाना, ये उनके लिए बहुत आसान मुझे लगता है जो है। क्योंकि अभी कुछ युवाओं के साथ जब मेरी बातचीत हुआ, तो जब मैंने उनको जिस हालत में देखा तो बहुत ज़्यादा नशा करते हुए, फिर वॉयलेंस करते हुए, तो थोड़ा समय लिया उनसे बात करने का। जब गहरी उनसे बातचीत हुई तो समझ में आया कि घर में क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती हैं, तो कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हम किससे जाके अपनी बात कहें। तो आजकल की जो युवा जनरेशन है, लगता है कि यदि हमको अपने स्ट्रेस को दूर करना है तो नशा एक सुकून देने वाली जगह है, या नशा जो है बहुत हमको आराम देगा। तो वहाँ से बच्चे शुरुआत करते हैं, जुड़ते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसे चैनल से जुड़ते हैं और उनका उपयोग हो रहा है ये वो समझ नहीं पाते हैं। हाल ही में एक बच्चे ने सुसाइड अटैम्प किया, वो नशा मुक्ति केंद्र में ही उसने सुसाइड अटैम्प किया, क्योंकि उसको नशे की बहुत लत थी। जब आपके हाथ में नशा आता है तो आप सोचते हैं कि मैं इसे ट्राई कर लूँ, कोशिश कर लूँ, क्योंकि जिज्ञासु तो बहुत होते हैं युवा साथी। तो उसने शुरुआत जस्ट एक शौक के तौर पर टेस्ट करने के लिए किया, और धीरे धीरे उसकी आदत लगी। जब उसे नहीं मिल पाया तो उसकी लत से फिर उसने सुसाइड अटैम्प किया। तो युवा जो है जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, शौक के तौर पर जुड़ते हैं, फिर स्ट्रेस को रिलीज करना अपना, और फिर धीरे धीरे वो इस चैनल में शामिल हो जाते हैं।
1: दो तीन चीज़ें अभी आपसे जो बातचीत हुई अभी तक की उसमें समझ में आई कि युवा इससे आसानी से जुड़ रहे हैं, एक कारण उनका लालच। तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो किस तरह का लालच ये देते हैं बच्चों को, या सबसे पहली में हमारा जानना उद्देश्य कि पहला क्या उद्देश्य होता होगा या क्या तरीका होता होगा जो लोग बच्चों को इसमें लाते हैं या नशे के लिए आगे लाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि आपने कहा स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस होता है इसलिए नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, या दो बातें कि नशे की तरफ जाते हैं इसलिए भी स्ट्रेस होता है, दोनों बातों को एक बार आप हमें बताएं।
0: तो पहली बात जो आपने कही, जो युवा जुड़ते हैं उद्देश्य क्या होता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, खासतौर पर हम कानून व्यवस्था की करें, तो बच्चों के ऊपर कार्यवाही उस तरीके से नहीं होती है। तो शायद इसलिए वो बच्चे उनका इजी टारगेट रहता होगा कि बच्चों के ऊपर हम कानूनी इस तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकते, तो बच्चों को शामिल करना एक ये उद्देश्य उनका हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि अभी हम जब बात करें, खासतौर पर कोविड के वास्ते, जब हम लोगों को समझ में आया कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, तो यदि हम देखें कि वैसे स्पेसेस नहीं है जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त कर पाए खुलकर, तो कई बार व्यक्ति जो है व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो खुद के लिए उस कमी को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को खोजता है, जिसमें एक जो चीज़ समझ कि नशे के ऊपर वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नशे में हम होश में नहीं रहेंगे तो शायद हमें वो चीज़ें याद नहीं आएंगी, और कई बार जो है नशा नहीं मिलने के कारण भी व्यक्ति में स्ट्रेस होता है। तो दोनों कारण है, एक तो स्ट्रेस होने के कारण आप वहाँ जा रहे हैं, और दूसरा आपको नशा नहीं मिलने का जो स्ट्रेस है, क्योंकि आप जब एडिक्टेड हो जाते हो तो ये भी एक मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी ही है। तो इन दो तरीकों से लोग उसमें जुड़ते हैं।
1: एक चीज और हम आप पे निकल के आती है कि जब आप, चूंकि आप इसमें काम कर रहे हैं, तो ये आप जब निकलते हैं तो ये खुद ब खुद वो इलाकों में आपको बच्चे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चे या लड़कियां या बड़ी उम्र के लोग या पुरुष बड़े या महिला, उम्र को अगर दरकिनार करके बात करें तो हम बात करना चाह रहे हैं उस पर कि जो भी लोग नशे में लिप्त हैं तो किस तरह से वो आप पहले प्रथम दृष्टि आप कैसे उन्हें पहचानते हैं, या आप क्या तरीके अपनाते हैं जिससे ये लोग आपकी पहचान में या आप उन तक पहुंच पाए।
0: हम लोग जब समुदाय में काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग लोगों के साथ रैपो बिल्डिंग करते हैं। अच्छा। लोगों से मिलना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो ऐसे बातचीत के साथ में शुरुआत होती है। तो एक परिवार के साथ में संपर्क होता है, फिर हमारे वहाँ पर बस्तियों में जाके हम जनसंवादों का आयोजन करते हैं ताकि लोग हमसे जुड़ पाए और हमसे बातचीत कर पाए। तो कई बार जनसंवाद तरीका होता है जहाँ पे लोग इन मुद्दों को बताते हैं, कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी वो हमें बताते हैं उनकी बातों के बारे में, समस्याओं के बारे में, तब वहाँ से ये चीज़ें जो है निकल के आती हैं। जैसे कई बार महिलाएं जब आती, क्योंकि मैं काउंसलिंग का भी काम करती हूँ, तो कई बार महिलाएं जब आती हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जब उनसे वजह पूछे जाते हैं तो वो एक नशा एक कारण बताते हैं कि इस वजह से जो है मेरे साथ में ही हुआ। और कई बार ये मैंने जो देखा है कि लाइव बोलते कि नशे में मुझे मारा गया, पीटा गया, कई बार नशे में व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत पावरफुल हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अधिकतर वायलेंस देखने को ज्यादा मिलता है नशे की वजह से। तो इस तरीके की बातें जो है जब संवाद होता है व्यक्तिगत रूप से, जब उनसे मिलते हैं या वो हमसे संपर्क भी करते हैं, तब वो हमें ये जानकारी देते हैं।
1: पहले ये बात करें, फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नशा ये करते हैं, इसमें खासतौर कौन सा नशा ज्यादा करते, जो सबसे ज्यादा नशा आप जो आप देखते हैं, किस चीज का नशा करते हैं ज्यादातर लोग?
0: ज्यादातर जो है शराब का नशा करते हैं, सिगरेट जो है वो यूज करते हैं, गांजा जो है वो यूज करते हैं, कुछ मामलों में ड्रग्स जैसी चीजें समझ, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस पर नहीं निकल के आया कि यही, लेकिन कुछ लोगों ने जिक्र किया कि इस तरीके के नशे उपलब्ध, सलोचन है खास तौर पे। कुछ युवा साथी की हम बात करें तो जो विक्स है या जो मेडिसिन मेडिकल पे मिलते हैं उनका भी वो उपयोग करते हैं।
1: तो जब भी आपको कोई केस आप दिमाग में अगर आपके आए, तो हम चाहेंगे कि आप उसको दिमाग में रखते हुए बिना किसी का नाम बताए हमें ये बताइएगा कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, पहली दफ़ा आपको पता चला कि ये मिस्टर एक्स हैं जो, या जो भी व्यक्ति है वो नशे की आदत में है, तो सबसे पहला कदम आप क्या करते हैं?
0: एक युवा साथी हमको मिले थे जिन्हें बहुत ज़्यादा वो था, हमने पहले उनसे दोस्ती की, थोड़ा उनको जानने की कोशिश किया। तो वो हमसे मिले, हमारे साथ बैठे, हमने उनको जानने की कोशिश, तो एक दोस्ती जैसा माहौल वहाँ पे शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे उनसे जानने की कोशिश किया कि वो उन्हें कब से इस चीज़ का आदत लगा। तो उस बच्चे ने बताया कि क्योंकि उनके परिवार में जो पिताजी हैं वो नशे का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने मंगवाना शुरू किया बच्चे से। तो वो कई बार होता है, जैसे मैंने भी देखा है कि जब हमको सर्दी खांसी होती थी तो हमारे पिताजी एक ढक्कन सिरप हमको दे देते थे कि सर्दी ठीक हो जाए। तो ऐसे ही वो बच्चे ने अपने पिताजी के लिए लाना शुरू किया धीरे धीरे, फिर उसने टेस्ट करना शुरू किया। फिर वो जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ के जो और उसके पीयर्स या हम दोस्त की बात करते हैं, तो दोस्तों के साथ में जुड़ा, तो दोस्तों ने उसे इन्फ्लुएंस किया कि तू लड़का है यार, तू ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, मर्द है, मर्द तो पीते हैं। तो इस तरीके से उसने धीरे धीरे उसने ट्राई करना शुरू किया, फिर वो पीना शुरू हो गया। तो उस व्यक्ति से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया उसने बहुत ज्यादा नशे का उपयोग किया, और वो 10 साल का था तब वो जुड़ा। तो आज वो जो बच्चा है 18 साल का है, तो आप सोचिए कि 8 साल से 18 से 10 साल तक उसने कंटिन्यू वो चीज़ें करी। तो दो तीन जो परेशानियां मुझे निकल के आई कि एक तो जो हमारे दोस्त होते हैं, पीयर्स होते हैं, उनका एक बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ता है। यदि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सवाल खड़े करते हैं। घर का माहौल है, यदि आपकी उपलब्धता में, यदि घर में आप वो चीज़ें देख रहे हैं तो आप उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रथम शिक्षा जो है बच्चों को अपने परिवार से मिलती है, तो परिवार का जो माहौल देखता है वो अडॉप्ट करता है। तो वो चीज़ हमने उसमें देखी। फिर जब इस तरह की चीज़ें निकल के आई तो हमने उनसे पूछा जब आप करते हो तो आपको क्या नुकसान होता है इससे। तो फिर उस व्यक्ति ने खुद बताया कि जब मैं पीता हूँ तो मैं कहीं भी पड़ा हुआ मिलता हूँ, या मुझे होश नहीं रहता है, कई बार मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए शायद, जैसे कई बार छिड़खानी करना हुआ, खुद को नुकसान पहुँचाना हुआ, लड़ाइयाँ करना। तो उन्होंने दोनों चीज़ें बताई। तो फायदे के रूप में भी पूछा उनसे क्या हुआ, तो फायदे के रूप में कुछ समय के लिए शायद मैं कुछ चीज़ें अपनी भूल जाता हूँ, लेकिन उसने नुकसान ज़्यादा उसके बताए। तो ऐसे दोस्ती में उनसे बातचीत किया, तो हमने एक हमारा ग्रुप चलता है उस ग्रुप में उस बच्चे को हमने जोड़ा। तो ग्रुप में हमने बातचीत करना कि हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या है, मान लो हमें कोई परेशानी होती है तो हम और क्या कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं। तो जुड़ाव इस तरीके से होता है। फिर हम काउंसलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, फिर हमें लगता है कि केस में शायद हम नहीं मदद, तो फिर हम रेफरल करते हैं, तो जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं या जो नशा मुक्ति केंद्र हैं तो फिर हम उनकी सहायता लेते हैं। तो इस तरीके से हम उनमें मदद करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की जब उस व्यक्ति से बातचीत हुआ तो उसने वो काउंटिंग करके बता रहा है कि मैंने 3-3.5 लाख रुपए का नशा किया और पैसे ना होने के बाद कई बार चोरियां भी की, तो कई बार लोगों से पैसा भी मांगा और कई बार पिटे भी हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आया कि शायद उनको समझाने वाला एक स्पेस नहीं था, या वो उनमें वो अवेयरनेस नहीं थी, या उनके साथ में दिक्कत चल रही है वो वहीं कहीं शेयर नहीं कर पाए। तो वो एक स्पेस उनको हमसे मिला, उन्होंने शेयरिंग किया, काउंसलिंग हुआ, हमने और ऐसे लोगों से जोड़ा जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी वो जो बच्चा है वो बिल्कुल नशा नहीं करता है, तो ये हमारे लिए बड़ा
1: मतलब इससे बात कह सकते हैं कि जितने भी लोग नशा कर रहे हैं और अभी तक मान लीजिए वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसके आदी हैं, तो अगर वो काउंसलिंग तक पहुंचते हैं या आपसे या आप जैसी अन्य संस्थाओं के संपर्क में आते हैं तो बहुत बड़ा मतलब एक कारण बन सकता है कि वो नशे से दूर हो जाए। जितनी बात आपकी हुई अपनी, जब आप इस तरह के केसेस आपको मिलते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों या युवा हों, तो परिवार का क्या आपको उसमें सपोर्ट मिलता है, या कई बार आपको लगता है कि परिवार भी आप लोगों के अगेंस्ट हो जाए, वो भरोसा कर पाते हैं आप पे जल्दी कि ये हमारे बच्चे को या इंसान का नशा छुड़ाने के लिए आए हैं या उसमें सहायता करेंगे, या अगेंस्ट भी होता है, दोनों बातें बताइएगा।
0: विश्वास एकदम से तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है ये अचानक से कौन सा व्यक्ति आ गया जो हमारे परिवार की इतनी चिंता कर रहा है या हमारे परिवार के बारे में सोच रहा है। तो वो उस विश्वास को बना पाना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन जब लगातार उनसे मुलाकात होती है, कई बार जब हम जिस तरीके के संवाद करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो हम उन्हें इन्वाइट भी करते हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जिस बच्चे की मैंने आपको कहानी इससे पहले बताई, तो उन परिवार का पहले ये था कि वो नहीं भेजते थे, लेकिन उन्होंने जब अवसर दिया, हमने उन्हें जोड़ा, उन्होंने अपने बच्चे में बदलाव देखा, तो उनका विश्वास हमसे बढ़ा, तो फिर उन परिवार ने हमको सहयोग करना शुरू किया, क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत परेशान होता है। जब परिवार को जोड़ा, उन्होंने अपने घर में उस बच्चे के अंदर बदलाव देखा, तो उनमें एक विश्वास बढ़ा और फिर उन्होंने हमें सहयोग किया। तो शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें होती, क्योंकि आप जब किसी के पास जाते हैं तो उन्हें भी लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो आपका सहयोग करने तो आते हैं लेकिन वो सहयोग ना करके आपका उपयोग कर लेते हैं कई बार, तो ये एक चुनौती रहती है। लेकिन आप लगातार काम करते हैं, क्योंकि मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप काम नहीं कर पाओगे और आप सीख नहीं पाओगे। तो ये जो परेशानी आई ये चुनौती थी, लेकिन हमारे लिए सीख भी था कि हमें परिवार से कैसे जुड़ना है, क्योंकि हम सीधे उन्हें समाधान लेकर जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। तो उनकी समस्याओं को समझना, समस्याओं से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जब तक वो इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तो शायद वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक परिवार के रूप में हमारा उनसे जुड़ाव होता है, ना कि एक संस्था या समाजसेवी के रूप में। तो एक परिवार का सदस्य बन के हम उनसे जुड़ते हैं, फिर उनके साथ में काम करते हैं।
1: एक बात और पूछेंगे निहारिका जी, जो जैसे आप इसमें काम कर ही रही हैं और इतने लंबे समय से, अलग अलग आपने बताया लगभग 6 राज्यों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जितने लोग जैसे आप कर रहे हैं ये पर्याप्त है, या अभी काफी और लोगों को या कुछ अन्य संस्थाओं को आने की जरूरत है, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति तो काफी बड़ी हुई है?
0: मुझे लगता है कि बहुत कम है और बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुविधाएं हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस या लोगों तक उसकी जानकारी नहीं है। तो लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों की आवश्यकता है इसमें काम करने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बदलाव करने की भी ज़रूरत है। मैं जो देख पाती हूँ कि बच्चों के लिए उस तरीके की सुविधा नहीं है कि हम पुनर्वास उनका कर पाए, खासतौर पर नशे की उससे। एक दूसरा हमें ये थोड़ा बालश्रम में भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अभी तक यदि हम बालश्रम कानून की बात करें तो नशे में जो बच्चे लगे हुए हैं कहीं ना कहीं हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस और भी देखने की ज़रूरत है कि नशे में कितने जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी देखने की आवश्यकता है। दूसरा, जो हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं अलग अलग, उन पे भी हमें मजबूत और वो कैसे काम कर पाएं, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो एक तो बच्चों के लिए कैसे केंद्र हो,
1: कैसे काम मतलब उनको रोकने के लिए और नशे से दूर करने के
0: बिल्कुल ऐसे कुछ कुछ अभियान चल रहे हैं, लेकिन उस अभियान को और मजबूती और सक्रिय होने की ज़रूरत है। और खासकर ज़मीनी स्तर पर जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे मैं ऐसे केंद्रों की बात कर रही हूँ जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क एक पुनर्वास जो होना चाहिए, एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ से बच्चा निकल पाए, तो वो एक सुविधाओं का गैप नज़र आता है। दूसरा, जो प्रचार प्रसार होना चाहिए योजनाओं का या जानकारियों का, वो एक मुझे कम नज़र में आता है। तो इस तरीके की चीज़ें और होना चाहिए और लोगों तक उसका उपलब्धता होनी चाहिए। तो यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि परिवार में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कई बार परिवार का जो माहौल होता है वो बहुत असर करता है, और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और कई बार मैंने देखा है लोग जागरूक तो होते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे हम देखें कई बार जब नशे के पदार्थ मिलते तो उसमें लिखा होता है कि इसमें कैंसर ये है, हम उपयोग करते हम जानते हैं लेकिन हम उसमें एक्शन नहीं लेते। तो उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, यदि आप जागरूक हैं अवेयर हैं तो, लेकिन उसके लिए कार्यवाही करना बहुत ज़रूरी है।
1: आप जब फील्ड में काम करती हैं, इस पर लंबे समय से काम कर भी रही हैं, तो आपको किस तरह की समस्याएं फेस करने में आती हैं? इतना आसान तो है नहीं कि भाई कोई आपको पता चला या मिले आप उस व्यक्ति से कि ये नशा करता है तो उसके बाद यूं ही तो हो नहीं जाता हो कि उनसे नशा, आपको भी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना होता होगा, तो वो किस तरह की होती है?
0: कई बार जब हम समुदाय में इंटर करते हैं तो बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जो मैं देखती हूँ कि नशे कारण बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ खुला स्पेस या खेलने का मैदान है वहाँ पर लोग ग्रुप में बैठ के नशा करते हैं या उस तरीके की गतिविधियाँ करती हैं, तो एक जो असुरक्षित वाला माहौल है वो मुझे वहाँ नज़र में आता है। दूसरा जो चुनौती कई बार रहता है कि यदि व्यक्ति नशे में है तो हिंसक होता है, वो चीज़ों को उस समय समझ नहीं पाता है, तो वो हिंसक जैसा माहौल जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरा जो है जो खासतौर पर जो महिलाओं के साथ में जो हिंसा है, लड़कियों के साथ में जो छेड़खानी वाले मसले हैं, वो बहुत समुदाय में नज़र आते हैं। जैसे घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण यही है, नशा है। और कई बार जो रिपोर्टिंग भी होना चाहिए वो कई बार नशे के कारण वो रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है, कि व्यक्ति नशे में शायद गलती से हो गया होगा, तो एक जो रिपोर्टिंग है वो भी नहीं हो पाती है। और कई बार व्यक्ति क्योंकि वो नशे में है तो इस चीज को वो टाल देते हैं कि नशे में इसलिए शायद उनसे गलती हो गई होगी। तो इस तरीके की समस्याएं जो है हमें वहां पर नजर में आती है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्ट्रेस वाला बहुत है, क्योंकि यदि आपके परिवार में कोई नशा कर रहा है, माहौल वैसा है, तो आप तनावित महसूस करेंगे और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा ही। तो ऐसे तमाम समस्याएं जो हैं वो नज़र में। कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे वो स्कूल से बाहर ड्रॉप आउट भी इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि घर में यदि कोई बीमार है या नशे के लिप्त है तो वहाँ पे जिम्मेदारी फिर जो है बच्चों को निभानी पड़ती है।
1: सॉल्यूशन जो ये समस्याएं आपको लगती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके सॉल्यूशंस हैं ताकि ये समस्याएं लगभग कम और ख़त्म हों और इस पर काम और बेहतर करा जाए? जैसे आपने समस्याएं गिनाई तो ये समस्याएं ना आए आप, इसके लिए कोई आपको लगता है क्या तरीके हैं?
0: मुझे लगता है एक तो हमें अवेयरनेस पे जागरूकता पे काम करना चाहिए, जो मुझे लगता है खासतौर पे जहाँ पर अवैध तरीके से जो नशे के पदार्थ उपलब्ध हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ज़मीनी स्तर पे हमें उन जगहों को चयनित करना और उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और खासतौर पे जो लोग नशे में लिप्त हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम जो प्रक्रियाएं चला सकते हैं वो प्रक्रियाओं की सुविधाएं हमें उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे वो एक परामर्श देना हो, चाहे वो उनके पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की जरूरत हो। ऐसे कुछ अभियान जो मैंने देखा है, जैसे पुलिस विभाग का अभियान में, तो उन्होंने बहुत से सामाजिक संस्थाओं के साथ में, युवाओं के साथ मिलकर, कॉलेजेस के साथ में मिलकर चलाया, जो बहुत प्रभावी रहा है। तो यदि हम सब मिलकर उसमें काम करेंगे तो एक बहुत बेहतर रिजल्ट हम उसमें देख पाएंगे। तो सब साथ में मिलकर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है।
1: शुरू में भी एक एग्जाम्पल दिया था, कोई बच्चा था 10 साल की उम्र से ही नशे में आ गया था, कोई और दूसरा भी हो सकता है 12 साल की, एक उनकी किसी उम्र हो सकती है। तो जो भी होते हैं जब ये नशे से मुक्त हो जाते हैं तो इनको दोबारा सामान्य जीवन में लाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या होता है कि कैसे क्या आ पाते हैं और आते हैं तो फिर वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं? आपने ऐसे लोग एग्जाम्पल होंगे आपके सामने?
0: काफ़ी सारे युवा साथी हम जुड़े हैं, तो कई बार होता है कि जो प्रीवियस लाइफ है उनकी, तो कई बार लोग जज भी करना शुरू कर देते हैं, तो जब वो उस दूर लाइफ से बाहर आता है लेकिन लोग कमेंट्स उसको कई बार करते हैं, तो एक स्टिग्मा भी होता है कई बार, तो वो एक चुनौती होता है। तो वो माहौल को निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक चुनौती है उन लोगों के लिए। तो इस पे हम लोग जो काम करते हैं, खासतौर पर हम लोग सिर्फ उस परिवार के साथ साथ उस समुदाय में भी काम करते हैं, ताकि ऐसा वातावरण मिल पाए ताकि व्यक्ति सहज महसूस करे वहाँ पर। तो लोगों को हम जागरूक करते हैं कि यदि व्यक्ति बाहर आया है उस चीज़ से तो हम कैसे मिलकर उन्हें सहयोग कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में हमारे जो संवाद होते हैं, परिवारों के साथ में संवाद होते हैं, कई बार हम लोग ऐसी गतिविधियों का भी, समावेशी गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं कि हर व्यक्ति उसमें जुड़ पाए। तो इस तरीके के मुद्दों पर हम बात करते हैं, और खासतौर पर लोगों की भूमिका उसमें करते हैं कि आपके समुदाय में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो आपका परिवार का हिस्सा है, वो आपका हिस्सा है, तो हम उस व्यक्ति को बेहतर रहने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो समुदाय के साथ में हम लोग जब काम करते हैं तो ऐसा माहौल देने की प्रयास करते हैं, और कई बार देखा भी है जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ सहज महसूस करे, और जो पूर्व में जो उसके साथ में घटनाएं हुई हैं, जो हुआ है वो सामने।
1: एक चीज़ तो चलते चलते समय की भी एक सीमा होती है। एक प्रश्न आएगा, अभी आपने शुरुआत कही थी कि स्लम एरियाज में जाना पड़ता है आपको, हाँ ये सत्यता है और आप इस पे काम करती, तो ये मोहर इस बात की कि स्लम एरियाज में इस तरह के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, संभ्रांत घरों के हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशे में लिप्त हो रहे हैं?
0: बिल्कुल है।
1: इस पर एक बार आप बताइए, उसमें कितने केसेस आपने देखे, या मतलब उसको ध्यान में रखते हुए बताइए।
0: बिल्कुल, कोविड के समय हम लोगों ने हमारा एक ब्रोशर तैयार किया था काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पर हमारे पास कई बार केसेस आए और वो ऐसे हाई प्रोफाइल सोसाइटी के ही लोगों के आए थे। तो क्योंकि स्लम एरिया में हमारा एक्सेस है, वहाँ लोग दिखते हैं, जुड़ते हैं, तो वहाँ पता चल जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आइसोलेटेड हैं, जो रहते हैं, वहाँ पर भी समस्या है। कई बार जब मैं बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ जो बच्चे पीजीज में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, या जो तमाम दुकानें हमें नजर आती है, वहाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट क्राउड हमें नजर आता है। तो हर वर्ग का व्यक्ति इससे परेशान है और जुड़ा हुआ है।
1: इनका क्या प्रमुख कारण होता है? ये तो सब तरह से सुविधाएं इनके पास, टारगेटेड हैं, अच्छा खासा माहौल है, ये नशे की लत में क्यों पड़ जाते हैं?
0: माहौल का मतलब सिर्फ अच्छी शिक्षा देना नहीं होता है। माहौल जो है कि आपका बच्चा जो है वो किन गतिविधियों में जा रहा है, उसे क्या समस्या है, वो एक स्पेस वहाँ पर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स का भी जो डायलॉग है वो बच्चों के साथ निरंतर नहीं होता है, और कई बार बच्चा जो बाहर गतिविधि करता है उसका भी ऑब्जर्वेशन कई बार नहीं रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर, कई बार बच्चे बाहर रहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है, या फिर वो दोस्तों के साथ में जुड़ के जो चीज़ें कर रहा है। और कई बार जो है, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लोगों को जो मुझे जो देखा है कई बार, उनके लिए एक पैटर्न है अपनी लाइफ को इंजॉय करने का, तो वो इंजॉयमेंट के जो के रूप में वो इसको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि उन पे भी और बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम उन्हें बना देते कि आपको सुविधाएं, आपको जरूरत नहीं है परेशानी, तो वो उसी माहौल में डरते कि हमें शायद किसी से गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, या फिर हम जो कर रहे हैं वो सब ओके है।
1: मतलब
0: तो,
1: इस बात से निकल के ये आता है कि एक जो केवल हम गरीबी या स्लम में रहने वाले बच्चों पे केवल आरोप नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो वास्तविकता पे बात कर रहे हैं कि हमें वहां भी वो बच्चे मिलते हैं, और जो नशे का उपयोग है वो केवल गरीबी ही नहीं, वो तो एक टारगेटेड है ही, लेकिन एक समाज जो पूरी तरह से संभ्रांत है, उसके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशा कर रही है, उसके नशे करने के अपने अलग कारण हैं, है ना, ये बात हम कह सकते हैं। निहारिका जी, आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, और एक बहुत ही अच्छे कार्य में आप लगी हैं, इसके लिए हम आपका पुनः धन्यवाद करेंगे हमारी और हमारे रेडियो की टीम की ओर से। प्रयास बहुत ज़रूरी है कि इस नशे को ख़त्म करा जाए, ताकि देश एक अच्छी दिशा में बढ़े।
0: बिल्कुल,
1: तो आपका ही जो आप साधुवाद हम आपका देंगे, जो आप कार्य कर रहे हैं। तो ये था कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसपे हमने आज बात करी नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विषय पर। और ये जो कार्यक्रम था, इसका मार्गदर्शन हमें दिया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ जी की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग है सतीश बाथम का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। निहारिका जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: सुनकर

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
3: मैं हूं मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद विभिन्न देशों में विभिन्न अवसरों पर श्रोताओं के सम्मुख अपना वक्तव्य रखते थे। उनके अनुयायियों ने उन भाषणों को लिख लिया था जो बाद में प्रकाशित हुए। हमारे कर्तव्यों के बारे में स्वामी जी ने जो भी कहा था उसमें से कुछ अंशों की जानकारी आज हम देंगे। एक भाषण में उन्होंने कहा,
1: सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, ना कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, क्या ये तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता। 99% लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल होता है दुख। ये सब कार्य स्वार्थ पर होते हैं। मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता। दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं। यदि तुम भी गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों से बांधकर उससे अपने लिए कार्य कराओ, तो वो कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य करेगा अवश्य, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं तो इसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसलिए वो सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं, यहां तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है।
2: स्वामी जी ने समझाया कि कर्म कर्म में भेद होता है, हमें सप्रेम कर्म करना चाहिए।
1: स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है, और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान ये है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फल स्वरूप शांति और आनंद ना आए। प्रकृत सत्ता, प्रकृत ज्ञान तथा प्रकृत प्रेम, ये तीनों चिरकाल के लिए परस्पर संबद्ध हैं। असल में ये एक में ही तीन हैं। जहां एक रहता है वहां शेष दो भी अवश्य रहते हैं।
0: प्रेम मनुष्य को दास नहीं बनाता, मुक्त रहने में ही सच्चा प्रेम है।
1: उदाहरणार्थ मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है। वो चाहता है कि स्त्री केवल उसी के पास रहे। अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्रेक होता है। वो चाहता है कि वो स्त्री उसी के पास बैठे, उसी के पास खड़ी रहे और उसी की इच्छानुसार खाए पिए और चले फिरे। वो स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है कि स्त्री भी उसकी गुलाम रहे। ये तो प्रेम नहीं है, ये तो गुलामी का एक प्रकार का विकृत भाव है जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखाई देता है। ये प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लेशदायक है। यदि वो उस मनुष्य की इच्छानुसार ना चले तो उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं, उससे तो केवल आनंद ही होता है। और यदि उससे ऐसा ना होता हो तो समझ लेना चाहिए कि वो प्रेम नहीं है, बल्कि वो और ही कोई चीज है जिसे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी स्त्री, अपने बच्चों, यहां तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सकोगे कि उससे किसी भी प्रकार दुख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल तभी तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे।
2: वे श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण देकर कहते हैं,
1: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाए। मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं। मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूं, फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूं? इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है।
0: दान करते समय प्रतिदान की चिंता नहीं करनी चाहिए, स्वामी जी कहते हैं।
1: जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज देते हो तो क्या उसके बदले में उनसे कुछ मांगते हो? ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो, और बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है। इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर अथवा देश के लिए तुम जो कुछ करो उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो। उनसे किसी प्रकार के बदले की आशा न रखो। यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो, जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी आती है जब हम बदले की आशा रखते हैं।
0: भाषण देते समय स्वामी जी अक्सर सटीक उदाहरण देने के लिए कहानी सुनाया करते थे। ऐसी ही एक कहानी कहते हुए उन्होंने महाभारत की कथा सुनाई।
1: कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा दान दिया गया। सभी लोगों ने उस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। यज्ञ के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया। नेवले का शरीर आधा सुनहरा था और शेष आधा भूरा। वो नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा, तुम सब झूठे हो, ये कोई यज्ञ नहीं है। लोगों ने कहा, क्या तुम कहते क्या हो, ये कोई यज्ञ ही नहीं है। तुम जानते हो इस यज्ञ में कितना खर्च हुआ है, गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए जिससे वे सब के सब धनी एवं खुशहाल हो गए हैं। ये तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो। परंतु नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटे से गांव में एक निर्धन द्विज रहता था, साथ ही उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधु। वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता उसी पर उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गांव में 3 साल तक अकाल पड़ा, जिससे उस बेचारे के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई। एक बार तो सारे कुटुंब को 5 दिन तक उपवास करना पड़ा। 6ठे दिन वो द्विज भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उस आटे के 4 भाग किए गए। उन्होंने उसकी रोटी बनाई और जो ही वे उसे खाने बैठे कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाजा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पवित्र माना जाता है। वो तो उस समय के लिए नारायण ही समझा जाता है और उसके साथ तद्रूप व्यवहार भी किया जाता है। अतएव उस गरीब ने कहा, महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। अतिथि उसे जल्द खा गया और बोला, अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन का भूखा हूं और भोजन के इस छोटे से टुकड़े ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भी भाग दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, वो बेचारा गरीब भूखा है, हमारे यहां आया है। गृहस्थ की हैसियत से हमारा धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं। ये देखकर कि आप उसे अधिक भोजन नहीं दे सकते, पत्नी के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भी भाग दे दूं। ऐसा कह उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वो भी खा लिया और कहा, मैं तो अभी भी भूख से जल रहा हूं। तब लड़के ने कहा, आप मेरा भी भाग लीजिए, क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उन्हें सहायता दे। अतिथि ने वो भी खा लिया, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अतएव बहू ने भी उसे अपना भाग दे दिया। अब वो पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद दे विदा ली। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गए। उस आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उन पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया, जैसा कि तुम अभी देख ही रहे हो। उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूं और चाहता हूं कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले, परंतु वैसा यज्ञ मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मेरा आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहरा ना हो सका, इसलिए तो कहता हूं कि ये कोई यज्ञ ही नहीं है।
0: दान की महिमा सुनाते हुए उन्होंने कहा,
1: त्याग का ये भाव भारत वर्ष से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानुभाव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब बचपन में मैंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया था, उस समय मैंने अंग्रेजी की एक पुस्तक पढ़ी जिसमें एक ऐसे कर्तव्य परायण बालक का वर्णन था जिसने काम करके जो कुछ उपार्जन किया था उसका कुछ अपनी वृद्ध माता को दे दिया था। उस बालक के इस कृत्य की प्रशंसा पुस्तक के 3-4 पृष्ठों में गाई गई थी, परंतु इसमें कौन सा असाधारण तत्व है? कोई भी हिंदू बालक उस कहानी की नीति शिक्षा को नहीं समझ सकता, और मुझे भी उसका महत्व आज ही समझ में आ रहा है जब मैं इस पश्चिमी रिवाज को सुनता तथा देखता हूं कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लिए ही जीता है। इस देश में ऐसे भी लोग अनेक हैं जो सब कुछ अपने लिए ही रख लेते हैं, उनके पिता माता स्त्री और बच्चों की फिर चाहे जैसी दशा क्यों ना हो। एक गृहस्थ का ऐसा आदर्श तो कदापि ना होना चाहिए।
2: स्वामी जी ने कर्मयोग को समझाया और कर्तव्य शब्द को परिभाषित किया।
1: कर्मयोग का तत्व समझने के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि कोई मुझे काम करना है तो पहले मुझे ये जान लेना चाहिए कि वो मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूं। विभिन्न जातियों में विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। एक व्यक्ति कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक अन्य कहता है कि जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें स्पष्ट दिख पड़ता है कि जीवन में अवस्था काल एवं जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी बहुविध होती हैं। अन्यान्य सार्वभौमिक भाव सूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द की भी ठीक ठीक व्याख्या करना दुरूह है। व्यवहारिक जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों द्वारा ही हमें उसके संबंध में कुछ धारणा हो सकती है।
0: प्रतीकों का बहुत महत्व है। साधारण लोग प्रतीकों को ही ईश्वर ज्ञान से पूजते हैं।
1: अत्यंत प्राचीन समय से ही प्रतीकों का प्रयोग प्रत्येक धर्म में होता रहा है। एक दृष्टि से यदि कहा जाए कि हम प्रतीक के बिना किसी बात को सोच ही नहीं सकते तो ठीक ही है। शब्द भी तो हमारे विचार के प्रतीक ही हैं। दूसरी दृष्टि से कहा जा सकता है कि संसार की प्रत्येक चीज प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। सारा संसार ही प्रतीक है और उसके पीछे मूल तत्व रूप में ईश्वर विराजमान है। इस प्रकार का प्रतीक केवल मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया हुआ ही नहीं है, और ना ऐसी ही बात है कि एक धर्म के कुछ अनुयायी एक साथ बैठ गए और बस उन्होंने कुछ प्रतीकों की कल्पना कर डाली। धर्म के प्रतीक की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। नहीं तो ऐसा क्यों है कि प्रायः सभी मनुष्यों के मन में कुछ प्रतीक तो सभी जगह पाए जाते हैं। तुम में से अनेकों की यह धारणा है कि क्रॉस का चिन्ह सर्वप्रथम ईसाई धर्म के साथ प्रचलित हुआ, परंतु वास्तव में तो वो ईसाई धर्म के बहुत पहले से, मूसा के भी जन्म के पहले से, वेदों के आविर्भाव के भी पहले, यहां तक कि मानवीय कार्यकलापों का किसी प्रकार का इतिहास लिपिबद्ध होने के पहले से विद्यमान है।
2: प्रतीक ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, कई लोगों के शताब्दियों पर्यंत प्रयास के कारण वे स्थापित होते हैं।
1: एजटेक्स तथा फिनिशियंस जातियों में भी इसकी मौजूदगी का प्रमाण मिलता है। प्रायः प्रत्येक जाति में इसका अस्तित्व था। इतना नहीं बल्कि ऐसा भी होता है कि क्रॉस पर लटके हुए महापुरुष का प्रतीक लगभग प्रत्येक जाति में प्रचलित था। इसी प्रकार सारे संसार में व्रत भी एक उत्कृष्ट प्रतीक माना गया है। फिर इसके अतिरिक्त सारे संसार में सबसे अधिक प्रचलित स्वास्तिक भी एक प्रतीक रहा है। एक समय ऐसी धारणा थी कि बौद्ध इसे अपने साथ साथ सारे संसार भर में ले गए, परंतु पता चलता है कि बौद्ध धर्म के सदियों पहले कई जातियों में इसका प्रचार था। प्राचीन बेबीलोन तथा मिश्र देश में भी यह पाया जाता था। इस सब से क्या प्रकट होता है? यही कि ये सब प्रतीक केवल काल्पनिक या स्वेच्छाकृत ही नहीं थे, इनका कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा। उनमें तथा मानवीय मन में कोई स्वाभाविक संबंध रहा होगा।
2: कर्म निष्काम हो तो अच्छा है, कर्म करके अहम पालना नहीं चाहिए, स्वामी जी ने कहा।
1: दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न उठता है कि संसार का भला क्यों करें? वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें। एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था, वो इस प्रकार था। ये सुंदर संसार बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है। ऊपर से तो ये भाव सचमुच सुंदर है, परंतु ये कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्या घोर ईश्वर निंदा नहीं है? संसार ना तो अच्छा है ना बुरा, बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है। यदि एक अंधा संसार के बारे में सोचने लगे तो वो उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा, अथवा शीत या उष्ण। हम सुख या दुख की समष्टि मात्र हैं। ये हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है। बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं और वृद्ध निराशावादी। तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है, परंतु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया। कितनी ही अपूर्ण इच्छाएं उसके हृदय में मचलती रहती हैं, जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं। परंतु हैं दोनों ही मूर्ख। हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें ये संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। स्वयं ये ना तो भला है न बुरा। अग्नि स्वयं ना अच्छी है न बुरी। जब ये हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं ये कितनी सुंदर है, परंतु जब इससे हमारी उंगली जल जाती है तो इसे हम दोष देते हैं। परंतु फिर भी स्वयं न तो ये अच्छी है न बुरी, जैसा हम इसका उपयोग करते हैं तदनुरूप ये अच्छी या बुरी बन जाती है। यही हाल इस संसार का भी है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण होने का अर्थ ये है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है। हमें ये निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी ये संसार बड़े मजे से चलता जाएगा। हमें उसकी सहायता करने के लिए माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं।
0: स्वामी जी ने फिर एक लंबी कहानी सुनाई।
1: एक गरीब आदमी को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी। उसे कहीं से ये मालूम हो गया कि यदि वो किसी भूत को अपने वश में कर ले तो वो उससे जो चाहे मंगवा सकता है। निदान उसे एक भूत ढूंढने की सूझी। वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जिससे उसे एक भूत मिल जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक साधु मिले। इन साधु के पास बड़ी शक्तियां थीं और उसने उनसे सहायता की याचना की। साधु ने उससे पूछा, तुम भूत का क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, महाराज मैं भूत इसलिए चाहता हूं कि वो मेरा काम कर दे। कृपा कर मुझे उसको प्राप्त करने का ढंग बता दीजिए, मुझे उसकी बड़ी जरूरत है। साधु बोले, देखो तुम इस झमेले में मत पड़ो, अपने घर लौट जाओ। दूसरे दिन वो आदमी साधु के पास फिर गया और बहुत रोने गाने लगा। उसने कहा, महाराज मुझे एक भूत दे ही दीजिए ना, मुझे बड़ी आवश्यकता है। अंत में साधु कुछ चिढ़ से गए और उन्होंने कहा, अच्छा लो ये मंत्र लो, इसका जप करने से एक भूत प्रकट होगा और फिर उससे जो काम कहोगे वही करेगा। परंतु देखो होशियार रहना, ये बड़े भयंकर प्राणी होते हैं, उसे निरंतर काम में लगाए रखना। यदि कभी वो खाली रहा तो तुम्हारी जान ही ले लेगा। तब उस मनुष्य ने कहा, ये कौन कठिन बात है, मैं तो उसे इतना काम दे दूं कि उसके जीवन भर खत्म ना हो। उसके बाद वो आदमी एक वन में चला गया और मंत्र का जप करने लगा। कुछ देर तक जप करने के बाद उसके सामने विकराल दांतों वाला एक बड़ा भयंकर भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, देखो मैं भूत हूं, तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है, परंतु देखो तुम्हें मुझको निरंतर काम में लगाए रखना होगा, क्योंकि जो ही मुझे थोड़ा सा भी अवकाश मिला कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आदमी बोला, ठीक है, जाओ मेरे लिए एक महल तैयार करो। भूत ने जवाब दिया, लो हो गया, महल तैयार है। आदमी ने कहा, जाओ मेरे लिए धन ले आओ। भूत बोला, लो धन भी तैयार है। फिर आदमी ने कहा, ये जंगल काट डालो और यहां एक शहर बसा दो। भूत बोला, लो ये भी हो गया, अब और क्या करूं बतलाओ। अब तो ये आदमी बड़ा घबराने लगा। उसने मन में सोचा, अब तो मेरे पास कोई काम नहीं जो मैं इसे करने को कहूं, ये तो प्रत्येक काम क्षण भर में ही कर डालता है। भूत इधर गरज कर बोला, देखो मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारा आदमी अब कोई काम सोच ही ना सका और मारे भय के थर थर कांपने लगा। अब तो वो बेतहाशा भागा और भागते भागते उन्हीं साधु के पास पहुंचा और वहां जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाइए। साधु ने पूछा, कहो क्या हुआ। मनुष्य ने उत्तर दिया, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास उस भूत को देने के लिए कोई भी काम शेष नहीं है। मैं उससे जो कुछ भी करने को कहता हूं वो क्षण भर में कर डालता है और अब उसके पास कोई काम ही नहीं रह जाता, तो मुझे खा डालने की धमकी देता है। इतने में ही वो भूत वहां पहुंचा और कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और सचमुच वो उसे खा जाता। आदमी डर के मारे कांपने लगा और उसने साधु से अपने प्राणों की रक्षा की भिक्षा मांगी। साधु ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। देखो उस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, अपनी तलवार निकालो और ये पूंछ काटकर इस भूत को दे दो और उससे कहो कि इसे सीधी कर दे। आदमी ने झट से कुत्ते की पूंछ काट दी और उसे भूत को देकर कहा, लो इसे सीधी करके मुझे दो। भूत ने पूंछ ले ली और उसे बड़ी सावधानी से सीधी की, पर जो ही उसने उसको सीधी करके छोड़ दिया त्यों ही वो फिर से टेढ़ी हो गई। भूत ने दोबारा कोशिश की, परंतु जो ही उसने छोड़ दी त्यों ही वो फिर टेढ़ी हो गई। उसने तीसरी बार फिर प्रयत्न किया, परंतु वो फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई। इस प्रकार वो कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा, यहां तक कि वो थक गया और बोला, मुझे ऐसा कष्ट तो अपने जीवन भर में कभी नहीं हुआ। मैं एक बड़ा पुराना भूत हूं, ऐसी मुसीबत में मैं कभी नहीं पड़ा। अब तो वो भूत उस आदमी से कहने लगा, आओ भाई हम तुम समझौता कर ले, तुम मुझे छोड़ दो और मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया है वो सब अपने ही पास रखे रहो। मैं वादा करता हूं कि अब आगे तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न दूंगा। ये सुनकर वो आदमी बड़ा खुश हुआ और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। हमारा संसार भी बस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के ही समान है। सैकड़ों वर्ष से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रही हैं, परंतु ज्यों ही वे इसे छोड़ देते हैं त्यों ही ये फिर से टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है।
0: कैसी लगी कहानी? अंत में स्वामी जी कहते हैं,
1: आज के व्याख्यान का सारांश ये है कि सर्वप्रथम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं। यही तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार में कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। संसार की सहायता करने से हम वास्तव में स्वयं का ही कल्याण करते हैं।
2: कर्मयोग और परोपकार के बारे में समझाकर स्वामी जी ने कहा है कि हमें निरासक्त होकर कर्म करते जाना चाहिए, अच्छे कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाता है। स्वामी जी इन शब्दों के साथ भाषण समाप्त करते हैं।
1: तुमने देखा कर्म योग का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ पर मुंह से एक बात ना निकालो, और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की ही आशा रखो, बल्कि उल्टे तुम ही उसके कृतज्ञ हो ये सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है। अतएव स्पष्ट है कि एक आदर्श सन्यासी होने की अपेक्षा एक आदर्श गृहस्थ होना अधिक कठिन।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक, युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: कि मैं हूं मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आज का प्रसारण बस यहीं तक, आज का सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल प्रातः 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती को दीजिए अनुमति। जय हिंद।